मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026 प्रातः के 5:57:42 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत में सुनते हैं मातृ वंदना।

साथियों, ये देशगान आपने सुना समूह स्वर में। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए नितिन मुकेश के स्वर में अगला ये भजन।

साथियों, ये भजन आपने सुना नितिन मुकेश के स्वर में। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में अगला ये भजन।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए हरिओम शरण के स्वर में अगला ये भजन।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। लीजिए आखिर में सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

0: साथियों, इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख है डॉक्टर ए के रॉय का और वाचक हैं सुनील केश देवधर।
1: 19वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय विचारक ये मानने लगे थे कि मनुष्य की प्रतिष्ठा इस तथ्य में सन्निहित है कि वो वैज्ञानिक प्रगति से प्रकृति को अपने वश में कर ले। कदाचित ये दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति पर विजय दर्ज करने की होड़ लग चुकी है। इसका प्रतिफल ये हुआ है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मनुष्य प्रकृति के प्रति निर्मम बनता जा रहा है। समकालीन भारतीय विचारक इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण से कतई सहमत नहीं है। गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेहरू प्रभृति विचारक प्रकृति से मनुष्य के सहकार के समर्थक हैं। इनमें भी कवि और कलाकार होने के नाते रवीन्द्रनाथ ठाकुर पश्चिम के प्रकृति विरोधी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए ये स्वीकार करते हैं कि प्रकृति से पृथक रहकर मनुष्य अपने जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति अपनी सार्थकता के लिए मनुष्य पर आश्रित है। दोनों एक ही धुन में बंधे हुए हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर मूलतः एक आध्यात्मवादी विचारक थे, जो परम सत्ता के रूप में एक परम पुरुष को स्वीकार करते थे। वे उस असीम अथवा परम पुरुष को जीवन देवता के नाम से पुकारते थे। ये जीवन देवता एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति ये समस्त संसार है। आत्मा और अनात्मा, पुरुष और प्रकृति अथवा चेतन और जड़ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु उस एक ही परम सत्ता, परम तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। रवीन्द्रनाथ की ये मान्यता है कि जब तक हम सृष्टि के इस रहस्य को समझ नहीं पाते, तब तक हमारे लिए ये विश्व विभाजित रहता है। जैसे ही हम इस रहस्य को समझ जाते हैं, वैसे ही समस्त कठोरता और बेसुरापन पिघलकर

0: मधुर सामंजस्य में परिणित हो जाता है। ये सही है कि ये समग्र सृष्टि उस परम पुरुष जीवन देवता की अभिव्यक्ति है, लेकिन इस संसार में मनुष्य असीम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। रवींद्रनाथ ठाकुर के अनुसार सृष्टि के रूप में मनुष्य सृष्टा का प्रतिनिधि है और समस्त प्राणियों में वही इस जगत को समझने में सफल हो सका है। इससे स्पष्ट है कि इस जगत में परमात्मा की समूची अभिव्यक्ति समान नहीं है। इसीलिए रवींद्रनाथ कहते हैं कि ईश्वर की वीणा में अनेक तार हैं, कुछ लोहे के हैं, कुछ तांबे के हैं, किंतु सोने का तार अकेला मनुष्य ही है। स्पष्ट है कि रवींद्रनाथ ठाकुर पश्चिमी विचारकों के दृष्टिकोण से सहमति न रखते हुए मनुष्य को प्रकृति से पृथक किए बिना ही उसे प्रकृति से श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति पर विजय प्राप्ति का अभियान छेड़ने का इरादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे प्रकृति विनाश की संभावना को बल मिलता है। वस्तुतः मानवीय गरिमा प्रकृति से दूर रहकर नहीं, अपितु उससे सामंजस्य करके ही स्थापित की जा सकती है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था डॉक्टर ए के रॉय का और वाचक थे सुनील केश देवधर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। बछड़ों में सफेद दस्त, कारण और बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सुहन सिंह।
1: किसान भाइयों, गाय भैंस के नवजात बछड़ों में छूतदार एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जो बी कोलाई या कभी कभी साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलती है, जिसे सफेद दस्त कहते हैं। यह रोग 3 सप्ताह की आयु में बछड़ों में अधिक पाया जाता है। पैदा होने पर बछड़ों की अवस्थाएं समान होती हैं। पैदा होने के कुछ घंटों पश्चात ही सफेद दस्त आने आरंभ हो जाते हैं, जबकि कुछ बछड़ों में जन्म के समय ही बीमारी लग जाती हैं। दूसरे प्रकार की बीमारियां ब्याने के समय बछड़ों को हो जाती हैं। दस्तों का रंग पीला अथवा भूरा सफेद होता है। अधिक रोग की तीव्रता में खून भी आने लगता है। रोग लगते ही बछड़े दूध पीना छोड़कर सुस्त हो जाते हैं। तापक्रम अधिक होने के कारण बेचैनी होती है। बछड़े खड़े नहीं हो पाते हैं। आंखें अंदर की ओर सिर में धस जाती हैं। कान लटके हुए मालूम पड़ते हैं। घुटनों और टखनों में सूजन आ जाती है। बछड़ों की रीढ़ झुक जाती है। चर्म सूखकर बहुत ही खुरदरी हो जाती है, जो मांसपेशियों के ऊपर स्वतंत्रता से नहीं चलती है। आरंभ में तापक्रम अधिक रहता है, लेकिन जब बछड़ों में कमजोरी आने लगती है तो यह तापक्रम सामान्य तापक्रम से कम हो जाता है। सफ़ेद दस्त की बीमारी प्राय वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर स्वच्छता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, जिसके कारण रोग के जीवाणु मुंह द्वारा अतड़ियों में प्रवेश पाकर रोग फैलाने में सहायक होते हैं। कभी कभी यह रोग बछड़ों को खींच न मिलने अथवा अपच और ठंड लगने के कारण भी हो जाता है। इस रोग से बछड़ों के बचाव के लिए पशुशाला से मल मूत्र को हमेशा हटाते रहना चाहिए। पशु के चारे दाने में अकस्मात परिवर्तन नहीं करना चाहिए। पशुओं को फफूंदी लगा हुआ चारा नहीं खिलाना चाहिए। पशुओं के प्रयोग में लाए जाने वाला चारा साफ स्वच्छ होना चाहिए। गाय भैंस के आयन अथवा काचर को साफ रखना चाहिए। बछड़ा पैदा होते ही उनकी नाक साफ करनी चाहिए। साफ तौलिया से पोंछ कर सुखाना चाहिए। बछड़ों को हर हाल में नमी, गीलेपन और ठंड से बचाव करते रहना चाहिए। बछड़ों को पर्याप्त मात्रा में खीस पिलानी चाहिए। खीस में गामा ग्लोबिनियम होते हैं, जो बछड़ों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदाय करने में सहायक होते हैं। जन्म से लेकर 24 घंटों तक बछड़ों की आंतें इनका अवशोषण करने में सक्षम होती हैं। बछड़ों को आधा घंटे के बाद खीस पिलाना आरंभ कर देना चाहिए।

0: दूध की अपेक्षा घी में अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो पेट से मलमूत्र की सफाई हेतु लाभकारी होते हैं। रोशनी हवा का उचित प्रबंध होना चाहिए। गाय भैंस जब साफ स्वच्छ सूखे हवादार स्थानों पर बछड़ों को जन्म देती हैं, जब यह बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर सभी सावधानी बरतते हुए भी बछड़ों में यह रोग हो जाता है तो सबसे पहले 20-30 मिलीलीटर रेडी का तेल पिलाना चाहिए, जिससे बछड़ों का पेट अच्छी तरह साफ हो जाए। पानी न पिलाकर नमक डालकर चावल का माड़ पिलाना चाहिए। बछड़ों को दूध न पिलाकर चूने के पानी में ग्लूकोज मिलाकर 4-4 घंटे के अंतराल पर पिलाते रहना चाहिए। रोगी बछड़ों को टाट या कंबल ओढ़ाकर गर्म रखना चाहिए। पैरों टखनों पर सूजन होने की स्थिति में लिनिमेंट अमोनिया की मालिश करनी चाहिए। बछड़ों को रोग का टीका लगवाना चाहिए। अगर गोबर में रक्त भी आ रहा है तो मेक्साफार्म की एक गोली और सल्फाग्वानाडीन की दो गोली दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगर यह उपलब्ध न हो तो डिपेंडाल की गोली देनी चाहिए, जिससे बछड़ों को लाभ मिलता है। बछड़ों को साफ स्वच्छ हवादार स्थान पर रखना चाहिए, जिससे बछड़े स्वस्थ रहेंगे और कोई भी रोग फैलने की संभावना नहीं रहेगी।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। बछड़ों में सफेद दस्त कारण और बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। साथियों, अब हमारे भारतीय रेलवे ने अपनी पारंपरिक कछुआ चाल को अलविदा कहकर डिजिटल और हाई स्पीड युग में कदम रख दिया है। झांसी हेतमपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू होने से ट्रेनों के संचालन का पूरा गणित बदल गया है। लगभग 155 किलोमीटर लंबे इस व्यस्त रूट पर अब ट्रैक के हर एक किलोमीटर पर रेलवे को 30 आंख तैनात है। पहले जहां इस दूरी में केवल 34 सिग्नल थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 162 कर दी गई है। इस बदलाव से न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को स्टेशन के बाहर आउटर पर बेवजह खड़े रहने की झंझट से भी मुक्ति मिल पाएगी। साथियों, इसमें जो नई तकनीक है उसमें ट्रैक को छोटे छोटे ब्लॉक करीब 1-1 किलोमीटर में बांट दिया गया है। आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए ट्रेन की लोकेशन बदलते ही सिग्नल का रंग अपने आप बदल जाता है। अब एक ही ट्रैक पर सुरक्षित दूरी बनाकर एक के पीछे दूसरी ट्रेनें आसानी से दौड़ सकेंगी। इससे ट्रैक की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इसके साथ ही अब लोको पायलट को काफ़ी पहले ही आगे के सिग्नल का सटीक स्थिति का पता चल जाता है। खराब मौसम या धुंध में भी ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रेन की रफ्तार बनाए रख सकते हैं। पहले आउटर पर हरी झंडी ना मिलने के कारण ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया जाता था। अब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के कारण ट्रेनें एक दूसरे के पीछे चलती रहेंगी, जिससे स्टेशन मास्टर को भी मैन्युअली सिग्नल ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक के हर किलोमीटर पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे ट्रैक की कैपेसिटी और ट्रेनों की स्पीड दोनों बढ़ती हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रेनों को अब किसी स्टेशन या आउटर पर बेवजह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। झांसी मंडल में यह काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही साथियों, यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने ग्वालियर और बरौनी जंक्शन के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह समर स्पेशल ट्रेन मई से जुलाई तक संचालित होंगी और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराएंगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04137 ग्वालियर बरौनी समर स्पेशल 19 मई 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को कुल 17 फेरों में चलेगी। वहीं वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04138 बरौनी ग्वालियर समर स्पेशल 20 मई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को कुल 17 फेरों में संचालित होंगी। साथियों, इसी के साथ ये स्टेशन कवर करेंगी। ग्वालियर स्टेशन से दोपहर 2:15 से रवाना होकर सनीचरा, मालनपुर, गोहद, सोनी, भिंड, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कैंट, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेंगी। ट्रेन अगले दिन दोपहर 12:15 पर बरौनी जंक्शन पहुँचेगी। इसी तरह वापसी ट्रेन बरौनी जंक्शन से दोपहर 1:45 से रवाना होगी। ये ट्रेन शाहपुर, पटोरी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा और भिंड होते हुए अगले दिन दोपहर 12:20 पर ग्वालियर पहुंचेगी। इसी के साथ सूचना परक कार्यक्रम दर्पण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ज्योतिरादित्यस्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहिष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतोवा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन् नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल् मार्शल् इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एलपीजी आपूर्ति

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब वक्त हुआ है आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का। साथियों, सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे वार्ता अन्वेषण और प्रयोग के कवि अघे। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट अनियमित रक्तचाप, लक्षण, सावधानियां और उपचार। इसमें डॉक्टर सुखदेव मखीजा, जो कि पूर्व वरिष्ठ चिकित्सक हैं, से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत आप सुन सकेंगे। सुबह 8:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी, जिसे आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे सेहत की बात तरानों के साथ, विषय रहेगा तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। डॉक्टर अतुल अग्रवाल से तुलिका शर्मा की बातचीत आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:50 पर। सुबह 11:00 आप सुनेंगे बात आपकी गीत हमारे, जिसे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2:00। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन सकेंगे। दोपहर 3:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए दैनिक कार्यक्रम युवाणी। शाम 5:33 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 6:00। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा नादेप कंपोस्ट से बनाए खेतों की उर्वरता, स्वच्छ भारत मिशन। फूल बगिया में चर्चा रहेगी पुस्तकें जीवन का आधार। वार्ता आज रहेगी बाल जीवन और अनुशासन, डॉक्टर वीर प्रकाश सिंह। साथियों, रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। रात्रि 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका चित्र भारती। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत, बोले ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बागदेवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंग

0: टोंक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा है कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां वाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
1: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वागदेवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गाँव में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में दो दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है।

कल केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvspujain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरिया महोत्सव पर हजारों श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए वार्ता। अन्वेषण और प्रयोग के कवि अगे वार्ताकार हैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय।
1: अगे हिंदी में अन्वेषण एवं प्रयोग के अग्रणी कवि रहे हैं। उनके काव्य में परंपरा से हटकर कुछ नई विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। अज्ञेय ने लिखा है, मैंने कविता का उपयोग करना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने नहीं माना कि मेरे उपयोग करने से वह उपयोगी होती है। मैं मानता हूँ वह तब तक उपयोगी होती है जब मैं स्वयं उपयोगी हूँ। उसमें जीवन की पूर्णता तब है जब मैंने पूर्ण जीवन के प्रति अपने को समर्पित किया है। दुहाई देने से कविता नहीं निकलती और प्यार के बदले अपनी भूख का दुखड़ा रोने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। केवल श्रोता के लिए वह दुखड़ा और भी कम प्रीतिकर हो जाता है। वस्तुतः प्रेम, व्यक्तिवाद, यौन वासना, पाश्चात्य, भारतीय संस्कृति, रूढ़ी और परंपरा इत्यादि प्रायः सभी विषयों पर अज्ञेय के मतों में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के मूल में जितना हाथ उनके सजग चिंतनशील व्यक्तित्व का है, उतना ही आत्मविश्लेषण एवं अन्वेषण का भी है। अज्ञेय की प्रारंभिक कविताओं में तीखा आत्मगौरव या दर्प का भाव मिलता है। अज्ञेय को अपने कवि व्यक्तित्व पर नाज है। विश्व की कृतज्ञता के प्रति शिकायत का प्रबल भाव भी है। कहीं संसार या समाज से समायोजन ना होते देखकर कवि अनुभव करता है कि मैं वह धुन हूँ जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई है। कवि में भविष्य के प्रति संदेह भी है और विषाद का भाव भी। कभी थकान का अनुभव करता है और भीतर के देवता से प्रार्थना भी करता है। अनचेती ही रहे बांसुरी, सांस फूंक दो चाहे उन्मन, मेरे सूखे प्राण दीप में एक बूंद तो रस बरसा दो। आज थका ही हारिल मेरा, कविता में भी कभी प्रेसी को छोड़कर शेष दुनिया से कटा हुआ

और कहीं याद की तीखी किरण से कवि का हृदय भिंद भी गया है तो कभी अपने को पराजित समझता है। कवि के इस अहम का मूल कारण उसकी प्रतिभा है। उड़चल हारिल कविता में कवि अनुभव करता है कि वह अकेला है और उसे अकेले ही मार तय करना है, परंतु हारिल के हाथों में तिनका है जो उसकी अमरता का साधन है। हारिल कवि का प्रतीक है, तिनका उसकी प्रतिभा का। अज्ञेय को अपनी सृजन शक्ति में अपार विश्वास है और अपनी प्रतिभा में। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि अपनी स्थिति को प्रकाशित करता हुआ अपनी सृजन शक्ति से कहता है, कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। जीवन के प्रति आकर्षण, सृजन शक्ति में आस्था एवं जबरदस्त आत्मविश्वास की परिचायक यह कविता उड़चल हारिल अज्ञेय के प्रारंभिक कवि कृतित्व की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कवि का प्रारंभिक भाव बोध धीरे धीरे जीवन के चिंतन एवं आत्मान्वेषण से परिवर्तित हो गया। जन्मदिवस अज्ञेय की विशिष्ट व्यंग्यात्मक कविता है जो व्यंग्य के गंभीर प्रयोग का उदाहरण है। मनुष्य का जन्म वैसे एक संयोग है और किसी को जन्म देने में गौरव का भाव निरर्थक ही नहीं वंचनापूर्ण भी है, परंतु जन्म लेने की व्यवस्था को स्वीकार करने के उपरांत जब कोई उसके साथ निर्विकल्प खेलता है, प्रत्येक क्षण को सार्थकता देता हुआ पंच तत्वों से बनी इस काया को शून्य में बिखेर देता है, तभी वो दाता भी है और सुखी होकर मरता है। यह सार्थकता प्रत्येक क्षण को जीवन के प्रति विस्मित होकर आनंद भोग करने से प्राप्त होती है। कवि सृष्टि के उन सभी उपादानों के प्रति कृतज्ञ है जिनके कारण उसे सौंदर्य की अनुभूति मिलती है। आगे हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह के बाद ही प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न कवि के रूप में उपस्थित हुए। कवि जीवन को स्वीकार करता है, उसके प्रति उसमें ऐसी आस्था है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होती। प्यार चुक जाए, आशा धुंधली हो जाए, परंतु कवि की आस्था जीवन के प्रति जब तक है तब तक कभी हारने को तैयार नहीं है। जीवन के प्रति आस्था अज्ञेय के व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता है। जीवन की अंतहीन तपस्या है और मृत्यु को भी शिवत्व एवं सौंदर्य प्रदान करने की संभावना में कवि आश्वस्त है। वह कहता है, क्रमशः मृत्यु मृत्यु भी सत्य ही है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, शिवता सुंदरता हम उसे दे सकते हैं अभी, किंतु जीवन अंतहीन तपस्या जिससे हम मुँह मोड़ नहीं सकते, यह संबंध शाश्वत है क्योंकि इसे हम चाहे जिस अर्थ में ले सकते हैं। सब कुछ मरण धर्म है, परंतु इस कारण उसे निरर्थक नहीं माना जा सकता, ना विरक्ति की ओर जाने की आवश्यकता है। फूल को प्यार करो, पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रफ लो देह मन आत्मा की रफना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। यहाँ दृष्टव्य जीवन के प्रति यह उन्मुखता एवं आकर्षण अज्ञेय के लिए आसक्ति नहीं है, आनंद है। कवि के सम्यक जीवन दृष्टिकोण को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता है देना जीवन। यह आलोचना का दुर्भाग्य है कि हम नदी के द्वीप हैं जैसी कविता की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया गया और देना जीवन और यही एक अमृत है जैसी मार्मिक प्रभु विष्णु रचनाओं की विशेष चर्चा ही नहीं हुई है। अज्ञेय की वर्तमान में आस्था है। कवि के विचार प्यार के लिए अलग हैं। वह कहते हैं कि प्यार की स्वीकार से दर्द का भार भी हल्का हो जाता है। जीवन के सभी दुखों और विरूपताओं का सामना इसी एक प्यार के बल पर किया जा सकता है। उनका कहना है, क्या कहीं प्यार से इतर ठौर है कोई जो इतना दर्द संभालेगा। पर मैं कहता हूँ, अरे आज पा गया प्यार में वैसा दर्द नहीं अब तुझको सालेगा। ब्रह्म मुहूर्त स्वस्ति वचन में कवि का अहभाव है, जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, उस दुख में नहीं जिसे बेझिझक मैंने पिया है। अंत में कवि कहता है, सागर के किनारे तक तुम्हें पहुंचाने का उदार उद्यम ही मेरा हो, फिर वहाँ जो लहर हो, तारा हो, सौंतरी हो, अरुण सवेरा हो, वैसा वो मेरा वर्ण तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो। आगे की कविता में आत्मान्वेषण के धरातल पर दो व्यक्तियों के बीच एक संवाद सा दिखाई देता है। एक व्यक्तित्व है सामान्य व्यक्ति का, दूसरा उनके आदर्श कवि व्यक्तित्व का, जिसकी अनवरत खोज उनके मन में चलती रहती है। प्रयोगवाद के लिए कवि कहते हैं कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुआ है उनमें आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया है या जिन्हें अवैध मान लिया गया है। 1943 में अज्ञेय जी ने अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। यद्य

0: भी नई धारा के अन्य सभी कवियों ने अपने अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए हैं और वे परस्पर मेल भी नहीं खाए हैं। इसके लिए अज्ञेय ने कहा है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। उनमें मतेक नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में समाज धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के छंद और तुक्के कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयं सिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों के समाजीकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई अथवा कानन बाला और सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। तथापि इतनी विपरीतता के होते हुए भी काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। इस प्रकार अज्ञेय जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रणयानुभूति, रहस्यानुभूति, जीवन दर्शन, भोगवाद, निराशा एवं वेदना, बौद्धिकता, विषयगत नवीनता, भाषा, छंद, विधान सभी नए प्रयोगों की अभिव्यक्ति है। अंत में मैं श्री विश्वनाथ गौड़ के शब्दों में कहना चाहूँगी, अज्ञेय का कवि अपने में सर्वथा नूतन शब्द, शिल्प, भावभूमि और मान्यताएं लेकर चलता है, इसीलिए वह अपनी जगत के साथ भी उतना ही मजबूत दिखता है जितना अकेले में प्रारंभिक नकार से अंतिम लीक तक काव्य क्षेत्र में अज्ञेय का मार्ग कटा हुआ नहीं लगता। निरंतरता और सृजन निरंतरता स्थापित करने में मदद करती है। कभी लोक की स्वच्छंद प्रक्रियाओं में जीवन जीते हुए आचार लोक की मान्यताओं और पुरानी मान्यताओं पर आमूल परिवर्तन के लिए चोट करने में अज्ञेय ही अपने साथी कवियों में सबसे आगे रहे हैं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता अन्वेषण और प्रयोग के कवि अज्ञेय। वार्ताकार थी डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म शर्मिली से, आवाज़ थी किशोर कुमार की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म राजा से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, बोल समीर के थे और संगीत दिया था नदीम शर्वन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत, लीजिए सुनिए फिल्म कामचोर से अगला ये गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म कामचोर से। आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। बोल इंदिवर के थे और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साथियों, ये गीत आपने सुना हो फिल्म क्रिमिनल से। बोल इंदिवर और श्यामलाल बाबू रॉय के थे। संगीत था M.M. किरावनी का, आवाज थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। आवाज़ है कुमार साहिल और कविता कृष्णमूर्ति की। बोल समीर के हैं और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट अनियमित रक्तचाप लक्षण सावधानियां और उपचार। डॉक्टर सुखदेव माखीजा वरिष्ठ पूर्व चिकित्सक सेवानिवृत्त गजरा राजा चिकित्सालय ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हम बातचीत कर रहे हैं उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के बारे में। इसे चुपके से बढ़ने वाली बीमारी माना जाता है और अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बिना विशेष लक्षण के ये आपके शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। इस विषय पे हमसे बात करने के लिए आज जुड़े हुए हैं एक बेहद अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर सुखदेव माखीजा जी, जो IMA कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स में ऑनररी प्रोफेसर हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा लंबा अनुभव भी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ बातचीत। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: शुरुआती सवाल के तौर पर मैं पूछूंगी, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन क्या कंडीशन होती है और सामान्य रक्तचाप की रेंज क्या मानी जानी चाहिए?
2: उच्च रक्तचाप जो एक सामान्य व्यक्ति के जनरल चेकअप या जनरल परीक्षण के जो पैरामीटर्स होते हैं, रक्तचाप उनका एक मुख्य पैरामीटर है। ये लगभग हर लक्षण के लिए जब भी कोई भी रोगी आता है चिकित्सक के पास, तो इसकी रिकॉर्डिंग लगभग होती ही होती है। जब ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इससे संबंधित इसका इंसिडेंस क्योंकि बहुत बढ़ गया है, इसलिए आजकल इसकी अवेयरनेस ज़्यादा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और ये जागरूकता के कारण बहुत ज़रूरी भी है। इसका महत्व इसके इंसिडेंस से पता कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो विभिन्न आंकड़े हैं उनके हिसाब, विश्व में लगभग 33% वयस्कों को ये बीमारी होती है। भारत में इसका इंसिडेंस थोड़ा कम है क्योंकि ये विकासशील देश है, विकसित में ज़्यादा होती है। भारत में लगभग 28% है वयस्क जनसंख्या में। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में, नगरी क्षेत्रों में, मेट्रो में इसका ज़्यादा इंसिडेंस है और ग्रामीण में बहुत कम है। इसके नॉर्मल रेंज जो मानक हैं उसके हिसाब से दो इसके पैरामीटर्स हैं, एक सिस्टोलिक, दो रीडिंग होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, उसको हाई रीडिंग वाले भी बोलते हैं। वो नॉर्मल रेंज वयस्कों में 120 और 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। डायस्टोलिक रेंज 60 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होनी चाहिए। प्लस माइनस 5 का वेरिएशन हो सकता है।
1: क्या लक्षण दिखने पर एक आम आदमी को डॉक्टर के पास रक्तचाप की जाँच के लिए जाना चाहिए?
2: जैसा कि आपने अपने शुरुआत में बताया कि इसको साइलेंट किलर कहते हैं। इसको अगर एक अंग्रेजी में शब्द है, एसिम्प्टोमेटिक या लक्षणहीन भी होता है। ये तब पता चलता है जब किसी कारणवश किसी वजह से ब्लड प्रेशर का परीक्षण किया गया, अधिकतर शिविरों में या किसी ऑपरेशन इत्यादि के या महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान एक प्रिवेंशन के रूप में जब इसका परीक्षण करते हैं तब पता चलता है कि ये, अधिकतर लोगों को तब पता चलता है जब या तो कोई जटिलता होती है। लेकिन शुरुआती लक्षण जो इसके होते हैं वो हैं सिर दर्द। ये एक लोग उसको ये मान के चलते हैं।

0: हैं कि थकावट से हो गया, अधिक काम से हो गया, लेकिन ये लक्षण एक इस बीमारी का एक विशेष संकेत हो सकता है। इसको अगर मानकर गंभीरता से लिया जाए तो इस रोग की जटिलताओं से बचाया जा सकता है। हेडेक सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है। सिर दर्द, इसके अलावा चक्कर आना, अचानक से धक धक बढ़ना, रूटीन काम थोड़ा सा ही काम करने से सांस फूलना, ये इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जनरल लक्षण कहते हैं इनको, जो और बीमारियों में भी हो सकता है लेकिन इसके प्रारंभिक अवस्था के ये लक्षण हैं।
1: अगर लगातार हो रहा है तो
0: लगातार हो रहा है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और सबसे पहले इसका परीक्षण करा के उसके अंदर निदान की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर होना चाहिए।
1: सिरदर्द जैसी चीज़ है ये तो बहुत सामान्य, आपने खुद ही बताया, बहुत सामान्य रूप से भी हो जाती है। कभी बहुत पढ़ाई कर ली या कोई फोकस्ड होकर बहुत लंबे समय तक आपने काम कर लिया तो भी सिरदर्द, कुछ सिरदर्द में भी कुछ विशेष तरह के लक्षण दिखाई देते हैं क्या?
0: फ्रंटल हेडेक मतलब सिर के जो
1: फोरहेड,
0: फोरहेड जिसको कहते हैं, और वर्टेक्स टेंशन, वो टेंशन हेडेक। तो ये फोरहेड वास्कुलर हेडेक होता है और थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक्स होता है। तो ये एक सामान्य मतलब एक जनरल प्रकार का हेडेक है जो प्रारंभिक अवस्था में किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है
1: जी
0: तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ब्लड प्रेशर का इस कारण माना जाना चाहिए और उसका परीक्षण तदनुसार होना चाहिए। अगर हेडेक के साथ चक्कर भी आ रहे हैं तो ये उस गंभीरता को बढ़ा, धक धक होना और सांस फूलना बार बार अगर हो रहा है तो, और थोड़ा सा काम करने पर भी, क्योंकि ये लक्षण सांस फूलना और धक धक होना किसी सामान्य व्यक्ति को जब परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं तब भी हो सकता है, एकदम से सीढ़ियां चढ़ने तब भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़े से स्टेप चढ़ने पे हो जाए तो।
1: आपने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक,
0: एसिम्प्टोम ये इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि कईयों को बिना लक्षण के ही ये अगर एकदम से इसकी रीडिंग अंदर ही अंदर बढ़ जाती है तो पेशेंट जो जटिलता से आते हैं, इसलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक मतलब बिना लक्षण के तब आते हैं, शुरुआती बिना लक्षण होते हैं लेकिन बाद में जटिलताओं के लक्षणों के साथ इसका प्रेजेंटेशन होता है।
1: लेकिन अगर लक्षण ही नहीं है तो सामान्य व्यक्ति को क्या ही पता है कि,
0: सामान्य व्यक्ति को अगर अगर लक्षण नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में पारिवारिक हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, तो उनके सामान्य लक्षण कोई भी ना होने के बावजूद भी एडोलेसेंट होने के साथ साथ ही आजकल अगर 30 वर्ष की वयस्क हो चुकी है तो उसको एक बेसलाइन ब्लड प्रेशर का चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए और नियमित कराते रहना चाहिए। अगर परिवार में माता पिता को ये हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की बीमारी घोषित है और उसका इलाज ले रहे हैं, तो ऐसी व्यक्तियों को इस बीमारी, इस लक्षण होने के पहले ही इसका पता चल जाना उनके हित में होगा। लगभग साल में एक बार तो जरूरी है, लेकिन जब भी कोई अवसर मिले, विशेषकर आजकल शासन की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से शिविरों का आयोजन होता है, उन शिविरों में जाके अब जरूर ये इसका परीक्षण कराना। ये जो कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर पहले पता चल जाएगा तो जटिलताओं को रोका जा सकता।
1: सामान्य व्यक्तियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाना कोई बड़ा सुखद तैयारी नहीं होती है। वर्ष में एक बार कराएं तभी भी सुरक्षित।
0: नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आजकल पैकेजेस जिस शासन की तरफ से जो स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र खोले गए हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्थाएं हैं। कम से कम एक जिसको अंग्रेजी कहते हैं आम बोलचाल में कि कैजुअल चेकअप कराते रहना चाहिए। कैजुअल मतलब जब उसको अवसर मिले तो विभिन्न परिस्थितियों में कराए, क्योंकि कई बार क्या होता है सामान्य परिस्थिति में उसका वो नॉर्मल निकलेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में हो सकता है वो हाई भी। जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कोई परिवार टेंशन की स्थिति आ गई या कोई अधिक बोझ आ गया, तो ऐसे कंडीशन में अवसर मिले तो कराते रहना चाहिए।
1: हमें बताएं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं या क्या क्या कारण हो सकते हैं।
0: दो समूहों में इनको विभाजित करते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में कोई विशेष कारण नहीं होता लेकिन कारक होते हैं, फैक्टर्स कहते हैं उनको। उनमें एक कारक है जेनेटिक्स, हेरिडिटी, पारिवारिक अनुवांशिक बीमारी इसको मानी जाती है। अगर परिवार में है तो आगे भी हो सकती। दूसरा इंक्रीजिंग एज, आयु के साथ जो सिस्टोलिक का ब्लड प्रेशर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उसमें कोई लक्षण नहीं होते, वो एक सामान्य उसका लेवल भी कह सकते हैं। दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी, ये एक प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा है सीडेंट्री हैबिट मतलब जिसको कहते हैं आलस, लगातार बैठे बैठे रहना, ये मजबूरी भी हो सकती है कि काम ही ऐसा है कि दिन भर बैठे रहना
1: जी,
0: है,
1: सीटिंग जॉब्स हैं,
0: सीटिंग जॉब्स हैं उनमें, लेकिन अगर वैसी व्यवसाय की वजह से भी है और या आदत है तो सीडेंट्री हैबिट भी एक कारण हो सकता है। अगला है व्यसन, विशेषकर धूम्रपान, टोबैको हैबिट्स, ये भी आगे चल के एक कारक हो सकता है। वर्किंग है जो कार्यशैली है वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ऐसे में भी अगर किसी को पारिवारिक हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो अगर परिवार में माता पिता को ये 60 वर्ष की आयु में आया है तो हो सकता है बच्चों को या उनके जो पीढ़ी अगली पीढ़ी है उसको 50 वर्ष में आ जाए, उसके बाद हो सकता है 40 में ही आ जाए। इसलिए जितना अगर फैमिली है तो 30 वर्ष होते ही इसका परीक्षण कराना जरूरी है। दूसरा, सेकेंडरी में कोई ना कोई विशेष कारण होता है और विशेष कारणों में से प्रमुख कारण है किडनी डिजीज, गुर्दा रोग। गुर्दे रोगों में ये भी धीरे धीरे जब लगभग 50% गुर्दा डैमेज होता है तब पता चलता है। इसमें भी प्रारंभिक जांच में अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके कारणों में गुर्दे रोग का पता करना जरूरी है जिससे किडनी फेलियर से बचा जा सके। अगला है एंडोक्राइन डिसीज, अपने शरीर में कई ग्रंथियां होती हैं जैसे थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है
1: जी।
0: सारे आजकल बड़ा कॉमन माना जाता है, तो जब हाई थायराइड लेवल्स होती हैं तो उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं उनमें हो सकता है। किडनी के पास एक एडिनल ग्लैंड होती है उसकी ओवर एक्टिविटी से हो सकता है। महिलाओं में विशेषकर गर्भवती महिलाओं में कुछ महिलाओं में कंडीशन होती है उसको कहते हैं एक्लेम्सिया, उसमें पैरों में सूजन आती है तो उनका जब बीपी हाई निकलता है तो उनको भी ये सेकेंडरी कॉज हो सकता है। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड, औषधियों के अनकंट्रोल अनियंत्रित सेवन, आजकल ये एक्सरसाइज व्यायाम जिम वगैरह में लोग जाते हैं तो उसमें विशेषकर से स्टेरॉइड दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का उच्च रक्तचाप का एक मुख्य कारण हो सकता है। उसमें जटिलताएं बहुत होती हैं, अधिकतर आप लोग समाचार माध्यम से सुनते रहते हैं। इसके अलावा जो अस्थमा के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी हाई ब्लड प्रेशर होता है अगर वो उनका टॉक्सिटी हो गई या साइड इफ़ेक्ट हो गया तो। इसके अलावा इसमें भी व्यसन आ जाता है, एडिक्शंस, नारकोटिक ड्रग्स, अधिकतर अगर ये एडिक्शंस हो जाएं तो इनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को इसको मानते हुए इसका अर्ली डिटेक्शन, बहुत जल्दी इसका निदान हो जाए तो जटिलताओं से बचाया जा सकता है।
1: स्टीरॉइड्स आपने कहा, वो जाहिर तौर पे खतरनाक है।
0: स्टेरॉइड मजबूरी में एक तो किसी रोग की वजह से खा रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट्स को लेना पड़ता है, लेकिन अगर जिम वगैरह में खा रहे हैं, मसल मास बढ़ाने के लिए खा रहे हैं तो वो बहुत ही खतरनाक।
1: प्रोटीन शेक के बारे में कुछ?
0: प्रोटीन शेक, अगर प्रोटीन अगर दो सोर्सेस होते हैं, एक प्लांट सोर्स और एक बायोलॉजिकल सोर्स जो अगर मीट एक्सट्रैक्ट से है, तो जो प्लांट सोर्स हैं उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित होते हैं। लेकिन प्रोटीन पाउडर्स में अगर प्रिजर्वेटिव डाले गए तो वो किडनी डैमेज के द्वारा उच्च रक्तचाप कर सकती हैं। ये निर्भर करता है कि किस तरह का प्रोटीन है, तो उसमें भी सावधानी खरीदते समय उस पर इंग्रेडिएंट्स पे कंपोजिशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
1: कोई भी डिब्बा बंद प्रोटीन शेक अगर परचेज कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट ही कर लें, बेहतर तो यही है।
0: अब देखा जाए तो आपने बड़ा अच्छा इसमें ये इंडिकेट किया, अभी बताया कि डब्बा, तो ये प्रोसेस फूड जो है जिसको जंक फूड कहते हैं आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से, इसको भी एक कारक माना जाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो अगर उसकी आदत है नहीं जा रहे हैं तो वो अर्ली एज हाइपरटेंशन हो सकता है, उसको कहते हैं एडोलेसेंट हाइपरटेंशन। और एडोलेसेंट हाइपरटेंशन वयस्क हाइपरटेंशन से ज़्यादा गंभीर होता है,
1: टीनेजर्स में भी,
0: टीनेजर्स में इसको, इसलिए एडोलेसेंट है। इसके और भी कारक हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर लाइफ स्टाइल एडोलेसेंट एज से मतलब किशोरावस्था से लाइफ स्टाइल को नियंत्रित किया जाए, आजकल विद्यालयों में शासन की तरफ से इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि योगा अपन एडोलेसेंट हाइपरटेंशन अगर प्राइमरी है तो उसको डिले कर सकते हैं या रोक
1: तो।
0: उनको जंक फूड से अगर उनको परे रखें तो ये केमिकल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। अगर उनमें एक अगर एडोलेसेंट को कोई साइलेंट कारक उसकी बॉडी में ऑलरेडी है जो पता नहीं चला है तो ये फैक्टर्स उसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं,
1: एग्रीवेट
0: कर सकते हैं और या उसको उसकी जटिलता बढ़ा सकते।
1: मतलब अगर परिवार में भी इतिहास है और आप जंक फूड भी बहुत खा रहे हैं
0: एक और भी है,

0: वो है हाई फैट डाइट
1: जी,
0: ये कारकों में ओबेसिटी से लिंक है। तो हाई वाई फैट अधिकतर दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली फैट है ना, सेचूरेटेड फैट वो अनफ्रेंडली फैट में माने जाते हैं। सेचूरेटेड फैट्स जितना हो सके अवॉइड होना चाहिए एक आयु के बाद से, किशोरावस्था में उनमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई ऐसा वो तो खाना ही चाहिए उनको, विकास के लिए ज़रूरी है, बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से खाना खाते रहना चाहिए। लेकिन वयस्कों को ये सेचूरेटेड फैट्स और हाई फैट डाइट से दूर रहना चाहिए।
1: और आपने बात बोली थी जो थोड़ी सी चिंता जगा सकती है हमारे श्रोताओं के अंदर, मेडिसिन इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर। तो मेडिसिन्स तो जो लेते हैं मरीज डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मिलता है, फिर ये मेडिसिन ही अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर आपके अंदर ला रही हैं तो उससे बचने का उपाय क्या है? अगर कोई बीमारी है, दवाएं तो आपको लेनी है,
0: वो दवाइयाँ अगर एक बार चिकित्सक ने लिखी हैं तो नियमित रूप से चिकित्सक के परामर्श से उसको आगे लेते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है लोग लेते ही रहते हैं, अच्छा ठीक हो गए हैं तो कुछ दिन और ले, अगली बार फिर हुआ तो फिर ले लें।
1: जो हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति है हमेशा बड़ा पजल्ड रहता है कि वो क्या खाए क्या ना खाए, आप हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि जीवन शैली में कौन कौन से छोटे बदलाव करें, जैसे नमक कहा जाता है कि खतरनाक है, तेल, स्मोकिंग, क्या जीवन में चेंजेस करने चाहिए?
0: इस संबंध में विशेष जानकारी देना जरूरी है। उच्चत चाप के शरीर में कुछ टारगेट ऑर्गन्स होते हैं और ये टारगेट ऑर्गन्स हैं ब्रेन, हार्ट, किडनी, वाइटल ऑर्गन्स हैं जो उच्च रक्तचाप के टारगेट ऑर्गन्स हैं। उच्च रक्तचाप अगर अनियंत्रित है इन तीनों को डैमेज कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी जो जटिलताएं होंगी वो लगभग उनका उपचार संभव नहीं है, पर आयु पर्यंत तक उनका इलाज देते रहना पड़ता है। ब्रेन में जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ये उसकी जटिलता है, अगर ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए तो वो आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत है, एकदम से अपन किसी हार्ट के लिए जिसको आप लोग सामान्य भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, वो अगर ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया तो अटैक्स हो सकता है, नहीं तो धीरे धीरे उसको हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज करके होने लगती है, धीरे धीरे सांस फूलने लगती है और उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहती है, उनकी वजह से फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है। तीसरा किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर वजह से जो गुर्दे को रक्त संचार करने वाली जो प्रणाली होती है वो सिकुड़ जाती है, उसके सिकुड़ने की वजह से गुर्दे धीरे धीरे फेल होने लगते हैं और उसको आगे चल के जिसको आप लोग क्रॉनिक किडनी फेलियर कह के माना जाता है, उसमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इन जटिलताओं को रोकने के लिए जितना शीघ्रता से समय पर अगर इसका निदान, परीक्षण और उपचार शुरू किया जाए तो इन जटिलताओं से बड़ा सकता है। अब आपका जो प्रश्न है उससे नियंत्रित करने के लिए दो तरह के उपाय हैं, एक सामान्य उपाय जो जीवन शैली से संबंधित है और दूसरा रक्तचाप के औषधियाँ विशेष उपाय। सामान्य उपायों में कारक के अनुसार एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए, नियंत्रित जीवनपान, आहार, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, उसमें जो वसा है, फैट है, उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, नियमित थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत 10-15 मिनट घूम ही लें, टहल ही लें, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है, व्यसन से दूर रहें। हाई सॉल्ट डाइट, सोडियम की अधिकता अगर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, जो एक आदत होती है ये प्रोसेस्ड सॉल्ट खाने की, उनसे दूर रहना चाहिए, जितना भोजन में खाने योग्य नमक की आवश्यकता है बस उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा अधिकतर जिसको आजकल आप लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट, टेबल पर रखा हुआ सॉल्ट का उपयोग न करें तो अच्छा,
1: ऊपर से
0: जिनका आपको पैलेटेबिलिटी मतलब टेस्ट, ओबेसिटी को मतलब मोटापेपन से बचने के लिए अपने को जो भी साधारण उपाय करते रहना चाहिए, मानसिक तनाव को योगा द्वारा और जीवन शैली बदल के भी अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो हो गए एक सामान्य तरह के व्यवस्था जिसको अपन अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं। सेकेंडरी में जो कारण है किसी रोग का उसका भी इलाज लेते रहना पड़ेगा, अगर कारण गुर्दा डिसीज है तो साथ में गुर्दे का इलाज करना पड़ेगा, अगर एंडोक्राइन थायराइड की डिसीज है तो साथ में ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ साथ थायराइड की दवाई भी लेती रहनी पड़ेगी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। गर्भवती महिलाओं को शासन की तरफ से आजकल नियमित उनके परीक्षण के लिए व्यवस्था की गई, जिसको एक टर्म है आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उससे बचा जा सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी रोकने के लिए विशेष अभियान आजकल चला जा रहा है, ये स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी से

0: या शासन की यहाँ जो चिकित्सालय है वहाँ हर केंद्र पर उपलब्ध है, इसको रोकने व्यसन मुक्ति बहुत जरूरी है। कारक को हटाना मतलब उच्च रक्तचाप को नियंत्रित।
1: व्यसन में एक तो आप जो कह रहे हैं जैसे धूम्रपान है या दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, टोबैको नहीं लेना चाहिए, चाय कॉफी को भी,
0: कॉफी विशेषकर कोका ड्रिंक्स, वो भी अगर कोई बहुत ज्यादा पी रहा है। आजकल कई ये जो आपने बताया है कि कुछ व्यवसाय ऐसे हो गए हैं वहाँ पे कॉफी का मग पड़ा ही रहता है उनके पास, वो कॉफी पीते पीते करते रहते हैं, तो वो आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, लेकिन उनको विशेषकर करेगा जिनके परिवार में पहले से ही अनुवांशिक है, उनको प्रेसिपिटेट करेगा। कॉफी नियंत्रित मात्रा लेने से उसको उच्च रक्तचाप नहीं होगा, लेकिन उसका अधिकता विशेषकर उस कंदर्ची में जबकि पहले से ही परिवार में है और उसके साथ सीडेंट्री हैबिट है, विलासिता का जीवन है, उसके साथ अनियंत्रित वजन है, तो ये एक एडेड कारण जिसको कहते हैं, एक अतिरिक्त कारण माना जाएगा। कॉफ़ी से, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हृदय गति अनियंत्रित हो जाती है, वो भी एक जटिलता आ जाती है, इसलिए उस दृष्टि से कॉफ़ी और चाय भी, नियमित चाय सुबह शाम में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन बहुत गर्म गर्म कॉफ़ी पीना भी वो उसमें बढ़ सकता है, अगर बीपी पहले से ही है तो उसकी लेवल बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा नहीं पी। चाय पे चर्चा की जा सकती है,
1: चाय की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या दवाएं शुरू होने के बाद ये करना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवा बंद कर दीजिए या डोज अपने आप से घटा लीजिए या बढ़ा लीजिए अपनी स्थिति के देख के, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये कितना रिस्क है?
0: चिकित्सक के आने से पहले आजकल रोगी पहले से ही पढ़ के आते हैं सोशल मीडिया से, ऐसे लोगों से जो जिनको कहते हैं रायचंद, उनकी राय से,
1: असंबद्ध लोग हैं जो
0: लोगों से, उसकी वजह से भी ये एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें क्या न करें। उच्च रक्तचाप के लिए जो औषधि एक बार शुरू हो गई, नियमित रूप से उसका लेना आवश्यक है, साइड इफेक्ट्स आ जाए तो चिकित्सक की परामर्श से उनको उनकी डोज को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एकदम से बंद करना उचित नहीं। उच्च रक्तचाप की दवाइयाँ औषधियाँ एकदम से बंद कर दी गई तो उसका एक टर्म है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं रिबाउंड फेनोमेन। अब की बार जो बीपी बढ़ेगा, जो आपका नियंत्रित हो चुका वो फिर डबल होगा, इसलिए रिबाउंड फेनोमेन से बचने के लिए एकदम से बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, उच्च रक्तचाप नॉर्मल भी आ गया तो जब तक लाइफ स्टाइल उसको नियंत्रित करे तब तक उसको उन औषधियों को चिकित्सक के परामर्श से डोज को कम करके लेते रहना चाहिए जब तक चिकित्सक कहे, एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। अगर पहले से ही प्रारंभिक लक्षण है उच्च रक्तचाप, उसके अलावा कोई अतिरिक्त लक्षण आ गया तो हो सकता है उस औषधि का साइड इफेक्ट हो, तो उसके लिए एकदम से परामर्श केंद्र पे जाके चिकित्सक से सलाह लेके उसका निदान कराना उचित हो।
1: डॉक्टर मखीजा, एक ये भी मिथ है कि अगर एक बार शुरू हो गई हैं दवाइयाँ तो फिर बंद नहीं होंगी, क्या ऐसा हुआ है कि रक्तचाप की दवा बंद हुई है किसी की?
0: हाँ, अगर कारक का निदान करके
1: जी
0: और जीवन शैली बदल के धीरे धीरे दवाइयाँ कर अगर कम करते जाएं तो ऐसी इस अवस्था भी आ सकती है कि बिना औषधियों से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त यही है कि कोई प्रेसिपिटेटिंग कारण मतलब उसको उत्तेजित करने वाले कारण और नहीं होने चाहिए, अगर वो वातावरण वो आपका सही चल रहा है, बाकी शर्तें आप लागू कर रहे हैं अपने जीवन में, तो बिना दवाइयों के भी बिना औषधियों के भी बाकी को इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, अगर कारक को नियंत्रित किया जाए तो कारण को नियंत्रित, तो
1: ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक आपने बात।
0: बाकी ये मिथ गलत है कि एक बार शुरू की तो
1: खत्म ही नहीं होगी,
0: छूट नहीं पाएंगे, वो एक इसमें तो नहीं वो कहते हैं वो दमे के लिए कि दमा दम के साथ, वो अब नहीं रहा, किसी जमाने में कहते थे दमा दम के साथ जाता है।
1: अच्छा,
0: अब इतनी औषधियाँ आई, लाइफ स्टाइल हो गई है, तो इसलिए वो अब कहावती है, अब दमे को नियंत्रित किया जा सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर अनियंत्रित दमे की वजह से भी होता है, अगर अनकंट्रोल अस्थमा है तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर रहते हैं, लेकिन आजकल अच्छे उपाय आ गए हैं तो, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उच्च रक्तचाप को भी अपन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा काफ़ी कुछ उसका स्तर कम कर सकते हैं, 5-10% उसको कम कर सकते हैं, ऐसा करने से दवाइयों का जो हाई डोज है वो कम हो, डोज कम होगा तो साइड इफेक्ट कम होगा।
1: हम आप पहुँचे हैं उस पड़ाव पर जहाँ हमें श्रोताओं से अनुमति लेनी है विदाई की, लेकिन जाने से पहले जो श्रोता हमें सुन रहे हैं आप एक अनुभवी चिकित्सक के रूप में जिसने अपने जीवन में सैकड़ों मरीज देखे हैं उच्च रक्तचाप वाले, उनमें से बहुत सारे ठीक हुए हैं, दवाइयां भी बंद हुई हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जीवन परिचर्या, और एक कहावत हमारे परिवार के वरिष्ठ जन कहते थे, जो मार्गदर्शक हैं समाज में, वो भी अब कहते हैं, हमारे शिक्षक कहा करते थे, सादा जीवन उच्च विचार।
1: बिल्कुल,
0: उससे आधुनिक जीवन शैली के बहुत सारे कारकों को नियंत्रित कर सकते हैं। कम से कम ये कहना कि चिंता नहीं कीजिए, चिंता मत करो, ये पूर्ण रूप से तो सही नहीं है,
1: संभव नहीं है,
0: क्योंकि जीवन है तो चिंतन तो करना पड़ेगा
1: जी।
0: चिंतन अगर सकारात्मक हो तो बहुत कुछ समस्याएं हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उनमें सामाजिक समस्याएं भी हैं और अपने शारीरिक रोग भी हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का पंक्तियां हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा
1: जी।
0: ये तीन कितने रोगों का उन्होंने क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं वर्गीकरण, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इसमें तापा मतलब रोग। तो ये तभी संभव है जब अपन इन सद्विचारों को अपने जीवन में और समाज में स्वयं से शुरू करें। तो
1: स्वयं से ही शुरू करना चाहिए, आप राम राज्य की प्रतीक्षा में ना बैठी रहिए। आकाशवाणी आपकी इस सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में पूरी सहायता कर रहा है। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि डॉक्टर बाखीजा के बताए हुए इस सूत्र को जरूर अपनाए अपने जीवन में और सुनते रहिए आकाशवाणी। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, अपनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट अनियमित रक्तचाप, लक्षण, सावधानियां और उपचार। डॉक्टर सुखदेव माखीजा, वरिष्ठ पूर्व चिकित्सक सेवानिवृत्त, गजरा राजा चिकित्सालय ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को है, सॉरी 8:58 होने को है। कुछ ही पलों में आप इस घंटे की खास खबरें भोपाल केंद्र से सुन सकेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद पीएम स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को माँ वाग्देवी की आराधना स्थली माना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी माँ वाग्देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में

0: की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ और 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: या आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी अर्चना समाध्या। साथियों, अभी जो गर्मी है ना, वो वाकई में अपने चरम पर है और इस बढ़ती गर्मी में हमें अपने तन को, अपने मन को ठंडा रखने की ज़रूरत है। जी हाँ साथियों, हम गर्मी में अपने रूम टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए कूलर, पंखे, एसी का उपयोग करते हैं। शरीर को ठंडा रखने के लिए पेयजल जैसे छाछ, लस्सी, ORS घोल, कैरी पना और भी ठंडी तासीर वाली चीज़ों का अपने खान पान में शामिल करते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी सही और शांत रखने के लिए ध्यान और योग की अपने जीवन रूटीन में, अपने दैनिक रूटीन में अपनाने की, शामिल करने की बेहद ज़रूरत है। साथियों, हम मानसिक स्तर पर भी ठंडा, शांत और सुकून को अनुभव कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत योग और ध्यान के साथ करें। ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं, चाहे हम मार्केट जाएं या अपने घर से बाहर जब भी जाते हैं, चाहे हम जॉब पर जाएं या किसी भी काम के लिए घर से निकलें, तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने फ़ोन का कि वो चार्ज है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ते में फ़ोन बंद हो जाए और हमारे कुछ काम ना हो सके। रखते हैं ना? बिल्कुल, मैं भी रखती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, हमें ज़रूरत है अपने मन को, अपने शरीर को भी चार्ज करने की। और उसको चार्ज करने के लिए ज़रूरत है हमें सुबह सुबह, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ वक्त खुद के लिए देने की। और जब वो वक्त हम खुद को देना शुरू कर देंगे, अपने आप को रिचार्ज करना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा रूटीन बनाने में वक्त लगे, या फिर हमें, जो लोग देर रात तक सोते हैं उनको सुबह उठने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन एक बार यदि रूटीन बन जाएगा तो डेफिनेटली सारा दिन बहुत ही खूबसूरत जाएगा। और भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, हम बात कर रहे थे योग और ध्यान की। ये तो सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि योग और ध्यान जो ना कर पाए या ज़्यादा वक्त ना दे पाए इसके लिए, तो कम से कम इतना तो ज़रूर करे कि जितने भी उसके डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, खास करके फ़ोन, स्मार्टफोन, उससे थोड़ी सी दूरी वो अपनी ज़रूर बनाए। जब वो घर पर हो या घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, उस समय पर वो कोशिश करे कि फ़ोन उसके आसपास ना हो। क्योंकि साथियों, एक निश्चित समय के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी सभी डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल हम यदि बंद कर दें या कुछ टाइम के लिए हम फिक्स कर दें कि इसमें हम कम करेंगे या उपयोग नहीं करेंगे, इससे भी सीधे सीधे असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम मेंटली यदि देखें तो इससे हम अपने आप को शांत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमें नींद नहीं आती और उसका कारण होता है कि हम सोते टाइम भी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपडेट देख रहे होते हैं। दूसरा, इसमें हमें फोकस की कमी, हम इसको महसूस कर सकते हैं, चाहे फिर वो काम में हो या अपने घर परिवार को संभालने में हो। एक सबका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हर दो मिनट में फ़ोन ज़रूर चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इम्पॉर्टेंट आया हो, कुछ हमसे छूट जाए, कुछ हम ना देख पाएँ, कुछ हम अपडेट ना चेक कर पाएँ। तो इस तरह की आदत से हमें बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आदत हमें परेशान करती है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथियों, हमें कोशिश ये करना है कि हम जैसे फास्ट रखते हैं, ऐसे डिजिटल फास्टिंग एक दिन के लिए ज़रूर करें, चाहे फिर वो दिन में दो घंटे के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी शुरुआत हम कम टाइम से शुरू कर सकते हैं कि हमें आज एक घंटे फ़ोन नहीं चेक करना है, आज हमें दो घंटे फ़ोन नहीं चेक करना है, और ख़ास करके इसको हम संडे वाले दिन तो कर ही सकते हैं। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, अपने नेचर को सही रखने के लिए, क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं होती तो हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जब ज़्यादा जुड़ते हैं तो बाहरी जो वर्चुअल लाइफ हमें जो दिखती है, वर्चुअल वर्ल्ड जो हमें दिखता है, उसमें हम अपने आप को तनाव में ले लेते हैं कि अरे ऐसा हमारे साथ नहीं हो पा रहा है या हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब से हम बच सकते हैं। साथियों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको, फ़ोन को हमें चलाना चाहिए, फ़ोन हमें ना चला ले पाए। हमें ये कोशिश करना है कि हम फ़ोन का यूज़ करें, ऐसा ना हो कि फ़ोन के जो कंटेंट हैं वो हमें यूज़ करने लग जाए। तो अपने इमोशंस को संभाल के रखें और फ़ोन का उपयोग सोच समझ कर और समय सीमा में करें। तो साथियों, ये तो बात हुई, हमने डिजिटल डिटॉक्स पर बात की, अब हम बात करते हैं कल के हुए अहम फैसले के बारे में। 1934 से चल रहे भोजशाला विवाद में 92 साल बाद शुक्रवार को बड़ा न्यायिक फैसला आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार भोजशाला परिसर के विवादित हिस्से को मंदिर माना है। जस्टिस विजय शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने 242 पेज के फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की सर्वे रिपोर्ट, पुरातत्व साक्ष्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके साथ ही साथियों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG की 3 मई की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सरकार ने नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगली परीक्षा 21 जून को होगी, जिसके लिए 14 जून तक विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। खास बात यह है कि अगले साल से नीट परीक्षा में OMR शीट बंद कर दी जाएगी, इसकी जगह कंप्यूटर बेस्ड कर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। ये राधाकृष्णन समिति की सिफारिश थी जिसे केंद्र सरकार लागू नहीं कर पाई थी, पर इस पेपर लीक के बाद इसे अगले साल से ही लागू करना तय कर लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान करते हुए दावा किया है कि परीक्षा को फुल प्रूफ तरीके से कराया जाएगा, इसकी सभी कमियों को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही खास बात साथियों, परीक्षा में OMR शीट भरने में विद्यार्थियों को काफ़ी समय लगा था। इस बार निर्णय लिया है कि OMR शीट भरने की अतिरिक्त 15 मिनट मिलेंगे। परीक्षा समय 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई है, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने सूचना जारी की है। साथियों, सभी शासकीय और अशासकीय संगीत व कला महाविद्यालयों और अध्ययनशाला विभागों में स्नातक स्तर की प्रति कक्षा प्रति विषय 40 सीट और स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा प्रति विषय 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। महाविद्यालयों और अध्ययनशाला विभागों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अतिरिक्त सीट का प्रावधान है। साथ ही संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्कूल स्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रति विषय 40 सीट निर्धारित की गई हैं। ये एडमिशन विश्वविद्यालय की सभी अध्ययनशालाओं और विश्वविद्यालय में संबद्ध सभी महाविद्यालयों के स्कूल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में नियमित छात्रों के प्रवेश के लिए है। इसके साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय निःशुल्क मोटापा रोग निवारण शिविर की शुरुआत शनिवार से होगी, जो कि 21 मई तक चलेगा। यह शिविर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक साधना केंद्र में होगा, जिसमें बढ़ते मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिविर प्रभारी प्रोफेसर सुशील कुमार गुप्ता ने बताया है कि आयोजन विश्वविद्यालय एवं भारतीय योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य करेंगे। साथियों, शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय में समर कैंप की शुरुआत शुक्रवार को हुई है, जिसमें 56 पंजीकृत बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कौशालय अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा है, ऐसे शिविर बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ उनके मानसिक और सामाजिक विकास में भी सहायक होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, कैंप के समापन समारोह में कौशालय की ओर से भी सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक अरविंद सिंह ने कहा, समर कैंप बच्चों के बौद्धिक सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, बच्चों के अवकाश के समय का सदुपयोग कर नई गतिविधियों और कौशलों को सीखने के प्रति उनको प्रेरित किया गया है। कैंप में आगे बच्चों के लिए हुला हूप, आर्ट एंड क्राफ्ट, बोर्ड गेम्स, पहेलियाँ, ट्रेजर हंट, विज्ञान प्रयोग जैसी कई विभिन्न गतिविधियाँ होंगी। इस अवसर पर पुस्तकालय प्रबंधक विवेक कुमार सोनी, क्षेत्रीय ग्रंथपाल राकेश कुमार और समस्त उनके सहायक उपस्थित रहे।

0: साथियों, अब हम बात करते हैं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। साथियों, भारत में प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में डेंगू बुखार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रसार को रोकना है। साथियों, इसके लिए आम जनता को डेंगू के लक्षणों और उसके बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। इसका जो उद्देश्य है मुख्य, वो ये है कि पानी को जमा होने से रोकने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को प्रेरित करना है। लोगों को समय पर डॉक्टर से सलाह लेने और सही इलाज कराने के महत्व को समझना है, क्योंकि जब हम ये अपनाएंगे तभी हम डेंगू से मुक्त हो पाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ आज यानी 16 मई को 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। इस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हर साल आज ही के दिन सिक्किम में राज्य स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ साथ साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में ये तारीख चुनी गई थी। ये दिन विज्ञान, संस्कृति, कला, चिकित्सा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का रेखांकित करता है। इसके साथ ही साथियों, आज ही के दिन शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस दुनिया भर में शांति, एकजुटता, सहिष्णुता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में मतभेदों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान और सामंजस्य स्थापित करता है। साथियों, शांति से रहने की बात से की शुरुआत तो हम अपने घर से ही कर सकते हैं, क्योंकि घर में भी रोज़ छोटी छोटी बातें होती हैं और जिससे कहीं ना कहीं हमारे मन में अशांति हो जाती है। तो इसकी शुरुआत हमें, इस दिन की शुरुआत हमें अपने घर से ही करना है। छोटी छोटी बातों को जो कि हमें अशांत करती हैं साथियों, उनको हमें अपने दिमाग से गायब करना होगा। हम उनको इग्नोर करते जाएंगे, हमारी लाइफ में हमें शांति ही शांति दिखेगी, क्योंकि दिक्कत आती है जब हम उन पर फोकस डालते हैं। और वही फोकस यदि हमारा सही डायरेक्शन में होगा तो हमारे सारे काम जो हमें इतने मुश्किल से नज़र आते हैं वो बड़े आसान से हो जाएंगे। और फिर हम अपना जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आर

साथियों, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज है शनिचरा अमावस्या। साथियों, आज न्याय के देवता भगवान शनि देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष में शनिचरा पर बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया गया है। आज के दिन उनकी पूजा अर्चना और दान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही साथियों, आज बट सावित्री व्रत भी है। सुहागिन महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद पावन है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए बरगद बट के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। इसके साथ साथ आज ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है, जिसे धार्मिक कार्यों, स्नान, पितृ तर्पण के लिए बहुत ही फलदायी मनाया जाता है। और साथियों, एक और अच्छी और ख़ास बात कि अब रेलवे में जमीन ही नहीं, आसमान से भी होगी चौकसी। जी हाँ, जैसे शनिचरी अमावस्या, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जैसे बड़े आयोजनों के दौरान ग्वालियर से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में भीड़ नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। RPF के जवान और अधिकारी ड्रोन के जरिए उन स्थानों पर भी पैनी नज़र रखेंगे जहां सुरक्षा कर्मियों के लिए निगरानी करना कठिन होता है। आगामी त्योहारों और मेलों के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ड्रोन के साथ तैयार होगा। सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता बनाने के लिए ग्वालियर RPF को आधुनिक ड्रोन तकनीक से लैस किया गया है। इसके साथ ही साथियों, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय और स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, प्राध्यापकों, लाइब्रेरियन और तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है। इसका उद्देश्य कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। प्राचार्यों को एकेडमिक लीडरशिप, संस्थान विकास योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। लाइब्रेरियन को मॉडर्न लाइब्रेरी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जुड़ी जानकारी दी जाएगी, जबकि तकनीकी कर्मचारियों को लैब मैनेजमेंट का प्रशिक्षण मिलेगा। MPPSC से चयनित बैच 2019-2022 के सहायक प्राध्यापकों को कोर टीचिंग स्किल्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रभावी अध्यापन, कक्षा प्रबंधन और छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धतियों पर फोकस रहेगा। साथियों, हम और भी बात आपसे करें, और भी सूचनाएं आप तक पहुंचाएं, पर ये जो हमारी स्टूडियो की घड़ी है ना, ये हमें इससे ज़्यादा आपसे जुड़ने की अनुमति नहीं देती।

पर इसी वादे के साथ कि हम मिलेंगे फिर आपसे। दीजिए अपनी खास अपनी रेडियो साथी अर्चना समाधिया को अनुमति। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर से नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं पंडित रामनारायण। सारंगी पर राग है गुर्जरी तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना सारंगी वादन। कलाकार थे पंडित राम नारायण, राग था गुर्जरी तोड़ी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरे को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबित 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले के कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस से यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दावदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर-18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंडकों और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में।
0: ये आकाशवाणी ग्वालियर है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सेहत की बात तरानों के साथ, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्टर अतुल अग्रवाल से तुलिका शर्मा की बातचीत।

0: श्रोता साथियों नमस्कार। जीवन की आपाधापी में हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते और ख़ास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ही हमने ये कार्यक्रम आरंभ किया है जिसका नाम है सेहत की बात तरानों के साथ। आपके तन के साथ साथ आपके मन का भी हमें ख्याल रहता है, उसकी भी चिंता रहती है, यानी आज आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात होगी। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे डॉक्टर अतुल अग्रवाल से। आप सह प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हैं मनोचिकित्सा विभाग जीआर मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब। मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं आप और क्या समझाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत अवेयर हैं लोग, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है।
1: मैडम, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानसिक स्वास्थ्य है तब हम कह सकते हैं जब व्यक्ति वैचारिक भावनात्मक रूप से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ कार्य करे एवं एक स्वस्थ रिलेशन समाज के साथ स्थापित कर सके, तो उसको हम कहेंगे कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। समाज में पूरी कार्य क्षमता के साथ काम करना
0: करे।
1: एक सुख का अनुभव करना, ये मानसिक स्वास्थ्य है।
0: हम कभी कभी देखते हैं कि अनमनापन किसी के ऊपर हावी है, काम में मन नहीं लग रहा, काम करने की इच्छा नहीं है और ऐसा लंबे समय तक चलता है, एक चेंज की आवश्यकता होती है, तो क्या इसे हम माने ये कि उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे ख़राब हो रहा है?
1: निश्चित रूप से यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लग रहा है या नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन होता है, ध्यान में या कंसंट्रेशन में कमी है या काम करने की इच्छा ही नहीं होती, रोने का बार बार मन करता है, और ये यदि लक्षण यदि कुछ सप्ताह तक लगातार बने रहते हैं और अधिकतर समय रहते ही हैं, तो इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये अवसाद के लक्षण है या मानसिक तनाव के लक्षण है।
0: ऐसा लोग मान नहीं पाते कि ये तनाव के लक्षण हैं और अपने इस तनाव को या इस अवसाद को धीरे धीरे और बढ़ाते जाते हैं। किस स्टेज पर आकर ये मान लेना चाहिए कि यहाँ आकर हमें ये अवसाद आरम्भ हो चुका है?
1: देखिए, तनाव तो हर किसी व्यक्ति को है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि आज के युग में कह सके कि वो तनाव से रहित है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के युग को हम यदि तनाव का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कई बार हम इससे बड़े अनजान रहते हैं कि हमारे जीवन में तनाव है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर हो सकता है कि जो हमारी परिस्थितियाँ और तनाव हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगे, हमारा चैन छिन जाए, हम अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ काम ना कर पाए, हमारे रिलेशंस में अलगाव होने लगे, तनाव उनको प्रभावित करने लगे, तो हमें निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि हम तनाव से ग्रसित हैं और हमें इसे कम करने की आवश्यकता है।
0: तनाव पर अब हम आइए बात करते हैं कि तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, लेकिन कितने लेवल तक वो हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है और कब जाकर के वो हमारी कार्यक्षमता को कम करना आरंभ कर देता है? क्योंकि अक्सर हमने सुना है लोगों को कि परीक्षार्थियों में या कोई भी एग्ज़ाम देने बच्चा जा रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस का होना आवश्यक है, तनाव का होना आवश्यक है, बिल्कुल निश्चिंत हो कि यदि कोई जाता है तो कहते हैं अरे इसे तो कोई टेंशन ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, तनाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम जब भी किसी आंतरिक और बाहरी समस्या से निपटते हैं, सामना करते हैं, तो शरीर एक प्रतिक्रिया देता है।

0: ये प्रतिक्रिया शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षणों के रूप में सामने आती है। किसी भी कठिनाई से लड़ते समय तनाव होता है, नेचुरल प्रोसेस है, और इस तनाव से व्यक्ति कार्य करने के प्रति प्रेरित होता है, उसमें शक्ति आती है और उस काम को वो जल्दी से जल्दी कर लेता है। तो कुछ ना कुछ तनाव का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि तनाव नहीं होगा तो विद्यार्थी पढ़ाई की तैयारी नहीं करेगा, कोई कर्मचारी ऑफिस टाइम से नहीं जाएगा, गृहणियाँ गृह का कार्य टाइम से नहीं करेगी, हम लोग टाइम से ऑफिस नहीं जा पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो तनाव आवश्यक है जीवन में जीने के लिए। लेकिन जब तनाव एक सीमा से अधिक हो जाता है, अनावश्यक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तनाव के कारण कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षण उभरते हैं जो धीरे धीरे हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगते हैं। इस प्रकार का जो तनाव होता है उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं।
1: डिस्ट्रेस
0: जो कम मात्रा का तनाव होता है, जो कि हमें किसी कार्य के प्रति प्रेरित करता है, एनर्जाइज करता है, फोकस करता है, उसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं, अच्छा तनाव। तो यूस्ट्रेस अच्छा है, जरूरी है, होना भी चाहिए, डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन वही है कि जब तनाव एक सीमा से अधिक हो जाता है, अनावश्यक होता है और हम परेशान हो जाते हैं, कार्य क्षमता हमारी कम हो जाती है, तब ये डिस्ट्रेस है और इसका हमें संज्ञान लेना चाहिए और कम करने का प्रयास करना चाहिए।
1: इसे श्रोता साथियों इस तरह से समझा जा सकता है कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है और उसमें यदि आपने थोड़ा सा और खिंचाव दिया, तनाव दिया, तो वो आपके तीर को दूर तक फेंकने में सहायक होता है, और यदि थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, तनाव थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो धनुष आपका टूट भी सकता है, प्रत्यंचा भी टूट सकती है या आपको चोट भी लग सकती है। तो जब चीज़ें नेगेटिव होने लगें, खराब होने लगें, टूटन की स्थिति आने लगे, तो मान लेना चाहिए कि ये तनाव डिस्ट्रेस है।
0: और आम भाषा में तनाव शब्द का प्रयोग इसी डिस्ट्रेस के लिए किया जाता है।
1: अच्छा,
0: इसी डिस्ट्रेस के लिए तनाव प्रबंधन, मतलब इसी डिस्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना है, कम करना है, हमें प्रयास करना चाहिए कि इस डिस्ट्रेस को समझें और समय रहते इसको कम करें।
1: हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि जो जिन डॉक्टर साहब से हम तनाव की इतनी बातें कर रहे हैं, वो उनके तनाव को कौन सा गीत सुना करके कम करेंगे।
0: तो सबसे पहले हम लगान फिल्म का बहुत ही अच्छा प्यारा भजन है, ओ पालनहारे
1: निर्गुण और न्यारे। ये तो गीत ही ऐसा है कि आंख बंद करके अगर आप सुनेंगे ना
0: तो तनाव कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब चलिए अपने श्रोताओं का भी और अपना भी थोड़ा सा तनाव इस गीत को सुन करके कम करते हैं।

0: बहुत खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो तनाव है, जो जिस डिस्ट्रेस की बात आपने की है, उस डिस्ट्रेस के लक्षण क्या हैं? कब हमें ये पता चले कि ये हमारा तनाव जो है वो ख़राब वाला शुरू हो गया?
1: तनाव के कई लक्षण हो सकते हैं। इसके लक्षण शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक लक्षणों के रूप में सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करें शारीरिक लक्षणों की। तनाव के कारण सिर में दर्द होना, चक्कर आना, मुंह सूखना, छाती में जकड़न होना, अपच या दस्त होना, बार बार पेशाब का जाना, शरीर में थकान महसूस करना, पसीने आना, कमर दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, बहुत सारे शारीरिक लक्षण होते हैं जो कि मानसिक तनाव को बताते हैं, उनकी तरफ संकेत करते हैं। तो इन लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: मतलब बिना कारण यदि ये लक्षण
1: बिना कारण हो रहे हैं और इसका कोई यदि मेडिकल रीज़न नहीं है, जैसे कि छाती में जो दर्द होता है वो किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपका चेकअप करते हैं और बताते हैं आपके लंग्स ठीक हैं, हार्ट्स अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फिर भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो अवश्य ही ये तनाव के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों का हमें जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर इनके निवारण और रोकथाम का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक लक्षणों के बाद बात आती है मानसिक लक्षणों की। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कई सारे मानसिक लक्षण महसूस करता है, जैसे कि याददाश्त व ध्यान की कमी होना, अनिश्चय की स्थिति रहना, आत्मविश्वास की कमी रहना, मन में नकारात्मक विचार आना, जैसे कि सब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती, दुनिया बहुत बुरी है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं इस परिस्थिति से उबर नहीं पाऊँगा, इस तरह के विचार आना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना, निराशावादी दृष्टिकोण रहना, नींद की कमी होना एवं कभी कभार रोने या चिल्लाने की इच्छा करना, ये सारे मानसिक लक्षण तनाव की तरफ इंगित करते हैं। मानसिक लक्षणों के बाद यदि हम व्यावहारिक लक्षण देखें तो तनाव व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करता
0: कर देता है। जी।
1: जैसे कि कुछ लोग तनाव होने के कारण नशे की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, अधिक से अधिक सिगरेट पीना या फिर अल्कोहल का सेवन करना या दूसरी खतरनाक दवाइयों का सेवन करना, इस तरफ भी वो चले जाते हैं, जो कि तनाव को कम करने का सबसे बुरा तरीका है। इसके अलावा व्यक्ति की खान पान की आदतों में परिवर्तन हो जाता है।
0: अच्छा।
1: कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोगों की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, नींद में बहुत परिवर्तन आ जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं सो पाते। इसके अलावा काम पर जाने की इच्छा नहीं करती है, बिजनेस पे दुकान पर जाना बंद कर देते हैं, या फिर जो ऑफिस में कर्मचारी हैं वो छुट्टी लेना शुरू कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लगते हैं, कई बार बिना बात के बहस करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तनाव हमारे शरीर, मन एवं व्यवहार तीनों को प्रभावित करता है।
0: डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि बात बात पर रोना या चिड़चिड़ाना, इस तरह के लक्षण भी पैदा होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है कि अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाती, कहने से पहले ही रोने लगती हैं। तो क्या ये अलार्मिंग स्टेज है उनके लिए? यदि ऐसे लक्षण महिलाओं में घर में दिख रहे हैं किसी को, तो क्या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है?
1: बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लक्षण डिप्रेशन के हैं। जब मानसिक तनाव बहुत लंबे समय तक रहता है, व्यक्ति इसका प्रबंधन नहीं कर पाता, तो व्यक्ति कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, जिसमें से एक डिप्रेशन भी एक प्रमुख बीमारी है। बात बात पर रोने की इच्छा करना, अपनी बात नहीं कह पाना, दूसरों से बोलने चालने की भी इच्छा ना करना, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करना, ये सारे लक्षण डिप्रेशन की ओर इंगित करते हैं। और ऐसे किसी भी परिजन को या किसी भी हमारे घर के सदस्य को तत्काल ही हमें मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उनके द्वारा बताई गई सलाह पर अमल करना चाहिए।
0: ये सलाह किस तरह की होती है? क्या वो किसी तरह की दवाइयों से कम होता है या जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसकी, उनमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता होती है?
1: यदि हमें डिप्रेशन को ट्रीट करना है, इलाज करना है, तो उसका इलाज हमें कई स्तर पर करना पड़ेगा।
0: जी,
1: ऐसे मरीज को हमें कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जो कि उसके तनाव को, उसके अवसाद को कम करती हैं। इसके साथ साथ उसकी दिनचर्या में, जीवन शैली में भी बदलाव की सलाह दी जाती है और सामाजिक परिवेश को भी बदलने की सलाह दी जाती है। बहुत सारी कंडीशन में सामाजिक परिवेश को बदला नहीं जा
0: नहीं
1: सकता
0: जा
1: हम
0: सकता।
1: अपने घर को नहीं बदल सकते,
0: परिजनों
1: को
0: नहीं
1: बदल
0: सकते।
1: सो तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने अंदर एक स्वीकार भाव भी लाना पड़ता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है।
0: डॉक्टर साहब, तनाव पर आप इतने अधिकार के साथ बात कर रहे हैं, आपको भी निश्चित तौर पर अपने जीवन में तनाव का सामना करना पड़ता होगा, तो इस तनाव को किस तरह से आप दूर करते हैं?
1: देखिए, तनाव को दूर करने के जो बहुत सारे साधन हैं, उसमें से जो साधन मेरे द्वारा यूज़ किए जाते हैं उसमें एक तो संगीत प्रमुख है
0: जी,
1: रीडिंग प्रमुख है
0: जी,
1: हमारे जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, गीता हैं, तो बहुत अच्छे तनाव को दूर करने के इनमें नियम दिए हुए हैं और इन चीज़ों को पढ़कर, इन चीज़ों पे अमल करकर हम अपने जीवन के बहुत सारे तनाव को कम कर सकते हैं।
0: और संगीत की आपने बात की थी, हम संगीत की तरफ ही आपको वापस लाना चाह रहे थे। असल में संगीत निश्चित तौर पर हमारे जीवन में बहुत बड़े स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। क्या आप भी गाने सुन करके, किसी तरह का म्यूज़िक सुन करके अपने तनाव को रोज़ाना मैनेज करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: किस तरह के गीत आपको अमूमन सुनना पसंद है?
1: संगीत अच्छा हो पसंद आता ही है, भले ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड ये कहते हैं, कव्वाली संगीत हो, लोक संगीत हो, भजन हो या नया संगीत हो, अच्छा संगीत किसी भी दौर का हो पसंद आता ही है।
0: कभी गाना गाने की कोशिश की है?
1: नहीं, वो कोशिश नहीं की।
0: अच्छा, अब हमें बताइए कि हमारे श्रोताओं को अगला गीत आप कौन सा सुनवा रहे हैं?
1: तो एक पुराना गीत सुन लिया जाए। एक पुरानी फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, इसका एक बहुत ही अच्छा गीत है, अजीब दास्तां है ये,
0: कहां शुरू कहां खत्म, बहुत ही खूबसूरत गीत है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं और हम भी साथ साथ में सुन रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल, मनोचिकित्सक। हम आपसे बात कर रहे हैं तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि महिलाओं की जो आम तौर पर शारीरिक समस्याएं होती हैं, अरे कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही बहाना कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। क्या ऐसा होता है? किसी महिला को लगातार कमर दर्द होता है, लगातार घुटनों में दर्द होता है, या लगातार सिर दर्द होता रहता है, डॉक्टर को भी दिखा लिया जाता है, लेकिन कोई मर्ज उन्हें समझ नहीं आता डॉक्टर्स को, और फिर हार कर उन्हें घर में उसी तरह से उन्हीं परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। यदि घर में कोई ऐसी महिला है हमारे श्रोताओं या उनके घर के आसपास, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा, ऐसे समय में वो जो अपने चारों तरफ का माहौल रहता है, दबाव है, उसको अंदर ही अंदर वो सहती

0: रहती हैं और धीरे धीरे ये तनाव इकट्ठा होकर मानसिक बीमारियों का रूप लेने लगता है। चूँकि हमारे देश में लोगों में मानसिक शब्दावली का अभाव है
1: जी।
0: वो कभी ये नहीं कहते कि मेरा मन उदास है या मेरा मन खराब है, वो हमेशा शारीरिक लक्षणों के रूप में ही अपने मानसिक तनाव को प्रकट करते हैं।
1: तबीयत थोड़ी ढीली है,
0: ढीली है, मन नहीं कर रहा,
1: हाँ।
0: जी अच्छा नहीं,
1: जी
0: है,
1: अच्छा नहीं है,
0: या सिर दुख रहा है, खाने की इच्छा नहीं है, तो कई प्रकार के शारीरिक लक्षणों के रूप में वो अपना तनाव प्रकट करते हैं। यदि किसी महिला को बहुत ही लंबे समय तक ऐसे शारीरिक लक्षण रहते हैं जिनका कोई चिकित्सकीय कारण नहीं मिल रहा है या दूसरे डॉक्टर्स की दवाइयों से कोई भी आराम नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण तनाव से संबंधित हैं। ऐसी परिस्थिति में उस महिला को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बहाने कर रही हैं। ऐसी महिला को मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए एवं उचित उपचार से इन लक्षणों का प्रभावी इलाज किया जा सकता है। तनाव सभी वर्गों के लोगों को होता है, अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री हो, तनाव के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं,
1: उनसे निपटने का तरीका अलग
0: तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यदि हम यदि संक्षेप में कारणों की बात करें तो तनाव बाहरी कारणों की वजह से भी हो सकता है और आंतरिक कारणों की वजह से भी हो सकता है। बाहरी कारणों में प्रमुख होते हैं वातावरणीय कंडीशंस कैसी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, प्रदूषण। इसके अलावा भीड़ भाड़ के माहौल में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है,
1: जहाँ शोर ज़्यादा होता है वहाँ
0: शोर ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि हमारे देश में गर्मियों के मौसम में रोड रेस की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, लोग छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा एक्सट्रीम रेस्पॉन्स देते हैं। तो वातावरणीय कंडीशंस भी तनाव का एक कारण हो सकती हैं। इसके अलावा जो तनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है वो सामाजिक होता है। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य के जो रिश्ते होते हैं मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं
1: जी।
0: यदि किसी वजह से यदि परिवार में रिश्तों में मनमुटाव है या कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ या अधिकारियों के साथ तालमेल सही नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस का हो सकता है। इसके अलावा जैसा आपने कहा आर्थिक समस्याएं स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार बहुत अत्यधिक रूप से व्यस्त रहना, समय नहीं निकाल पाना स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक जो स्ट्रेस का कारण हमारे जीवन में होता है वो जीवन की गंभीर परिस्थितियाँ होती हैं, गंभीर बदलाव होते हैं, इनको अपन कह सकते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई गंभीर परिस्थितियां आती हैं, जैसे कि जीवन साथी की मृत्यु हो जाना, तलाक या अलगाव होना, तबादला हो जाना, स्वयं को किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना। इसके बाद कुछ जो अच्छी घटनाएं भी होती हैं जैसे शादी होना, किसी स्त्री का प्रेग्नेंट होना, घर में बच्चे का आगमन होना, ये सारी घटनाएं भी स्ट्रेस से संबंधित होती हैं। कोई भी बदलाव हो, चेंज हो, तनाव पैदा करता है।
1: नजरिए का फर्क होता है, हमारे देखने का फर्क होता है। शादी जैसी स्थिति जो आपने बताई, बच्चे का पैदा होना बताया, ये कभी कभी तनाव भी उत्पन्न करता है और कभी हमारे लिए बहुत सारी खुशियां भी लेकर आता है। तो जिंदगी को हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रबंधन की बात आप बार बार कर रहे हैं, न सिर्फ घर में बल्कि हमारे कार्यक्षेत्र में भी तनाव के प्रबंधन का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये तनाव का प्रबंधन जो है वो कितना आवश्यक है हमारे लिए, और यदि हम ना प्रबंधन करें इनका तो?
0: तनाव तो जीवन में है, अब ये हमारा चुनाव है कि हम इसके प्रति जागरूक हों और इसको कम करने का प्रयास करें या ना करें। प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन और अधिक सुखमय और शांतिमय हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब ने एक बात कही, यहाँ मैं रोक करके आपको एक चीज अपने श्रोताओं को बार बार याद दिलाऊंगी कि डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि तनाव तो हमारे जीवन में है, तो आपको ये चीज मान लेनी चाहिए कि आप तनाव से ग्रसित हैं। कम या ज्यादा ये आपको देखना है और समझना है, और डॉक्टर साहब की बात यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो कितना तनाव का लेवल आपके अंदर है आप थोड़ा बहुत तो खुद ही समझ जाएंगे। बाकी चीज़ें यदि आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो खुद समझ में आ जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए कि तनाव का प्रबंधन यदि हम ना करें तो क्या हो।
0: यदि तनाव बहुत अधिक लंबे समय तक रहता है तो ये कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों को या तो पैदा करता है या शारीरिक बीमारियों की गंभीरता को बढ़ाता है। जैसे आजकल कहा जाता है कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कई सारी बीमारियां हैं उनका संबंध तनाव से है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अपच, उदर के रोग, इसके अलावा सिर दर्द, कमर दर्द, अल्सर, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका संबंध तनाव से होता है। या तो ये बीमारियां तनाव के द्वारा पैदा होती हैं या तनाव इन बीमारियों की गंभीरता को बढ़ाता है। तो तनाव मानसिक बीमारियों को ही नहीं शारीरिक बीमारियों को भी पैदा करता है। शारीरिक बीमारियों के अलावा बहुत लंबे समय तक यदि तनाव रहे तो मानसिक बीमारियों जैसे कि चिंता रोग, जिसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, अवसाद, डिप्रेशन, फोबिया, डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और इसी तरीके के कई प्रकार के मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं। तो आवश्यक है कि अपने जीवन में तनाव के प्रति जागरूक हुआ जाए, ये समझ विकसित की जाए कि तनाव को झेलना जरूरी नहीं है, इस तनाव को हम कम कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कर सकते हैं।
1: प्रबंधन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करते हैं और ये जो समय है एक गीत के लिए ब्रेक लेने का है। तो हमारे डॉक्टर साहब से हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि अगला गीत जो हमारे डॉक्टर साहब हमें सुनाना चाहते हैं वो कौन सा है।
0: देवानंद साहब की एक पुरानी फिल्म है तेरे घर के सामने, उसका एक गीत है एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल, मनोचिकित्सक, और हम बात कर रहे हैं तनाव के प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि

0: हमारा जो समाज है, सामाजिक कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तनाव को देने के लिए भी और तनाव के प्रबंधन के लिए भी। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि तनाव के प्रबंधन के बहुत सारे प्रबंध उसमें किए गए हैं। हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, मिलता भी है तनाव हमें वहाँ से, लेकिन बहुत सारा तनाव वहाँ से रिलीज भी होता है। तो ये रिश्ते जो हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं तनाव को प्रबंधन करने में?
1: रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और ये देखा जाता है कि जिन देशों में परिवारों का विघटन होता जा रहा है या एकल परिवार व्यवस्था है, वहाँ व्यक्ति के अंदर तनाव की मात्रा अधिक होती है। और भारतीय समाजों में भी हम देखें तो जो एकल फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि तनाव ज़्यादा मिलता है। तो हमारा जो संयुक्त परिवार है हमारे समाज की, हमारे देश की ताकत है।
0: बिल्कुल।
1: और एक तरह से शॉक एब्जर्वर की तरह काम करता है, क्योंकि कई बार जैसे एकल फैमिलीज में बच्चे होते हैं अपनी बात को सीधे पेरेंट्स से नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि पेरेंट्स को अनुशासन भी देना है, तो कई बार वो फ्रेंड की तरह व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन एक संयुक्त परिवार में दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, ताऊ ताई भी होते हैं, कजिन ब्रदर्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो संयुक्त परिवार तनाव को कम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: साथ में यहाँ मित्रों की भूमिका पर भी मैं थोड़ा सा आपसे प्रकाश डलवाना चाहूंगी। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के मित्रों की संख्या कम होने लगे तो थोड़ा सा अलार्मिंग यहाँ हो जाता है, क्यों ये भी बताएं।
1: देखिए, मित्रता एक ऐसा रिलेशन है जिसका चुनाव हम जीवन में स्वयं करते हैं। बाकी रिश्ते तो हमें भगवान की ओर से मिलते हैं, चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव हम करते हैं। और मित्र सुख के समय और दुख के समय दोनों ही वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दुख को यदि हम बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो वो कम हो जाएगा, सुख को हम शेयर करेंगे तो वो बढ़ जाएगा,
0: दुगनी हो जाएंगे।
1: तो शेयर तो हम मित्रों के साथ ही करेंगे। तनाव प्रबंधन में एक प्रमुख कारक ये है कि हम यदि कोई हमें परेशानी है, समस्या है, उसको अपने मन में ना रखें, उसको हम शेयर करें। जो यदि हम परिवारजनों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स नहीं है, परिवारजन के साथ भी शेयर नहीं कर सकते तो आप किसी काउंसलर के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई नहीं है तो किसी मनोचिकित्सक से शेयर कर सकते हैं। शेयर करना बहुत जरूरी है, इससे मन का बोझ कम होता है और तनाव का स्तर भी कम होता है।
0: आपने काउंसलर और मनोचिकित्सक की बात की, जिसको हमारे भारतीय समाज में बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली हुई है, तो खुद भी काउंसलर की भूमिका अदा यदि करनी है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए?
1: यदि हमें अपने तनाव का प्रबंधन स्वयं ही करना है और यदि हम किसी काउंसलर के पास नहीं जा सकते,
0: किसी दूसरे के भी तनाव का हमें प्रबंधन करना हो,
1: तो सबसे प्रथम चरण तो यही है कि हम अपने अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करें कि तनाव क्या होता है, उसके कारण क्या हैं और जीवन में तनाव है या नहीं है। यदि तनाव है तो उसका कारण जानकर हमें उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। तनाव प्रबंधन में एक दूसरा स्टेप ये आता है कि बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हम तनाव के कारण को हटा सकते हैं। अधिकतर समय हम तनाव के कारण को हटा नहीं सकते, केवल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें, यदि किसी का जॉब ऐसा है जिसमें कि नाइट शिफ्ट है, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, और यदि वह व्यक्ति अपने जॉब को चेंज कर सकता है और यदि करता है तो उसका तनाव कम हो ही जाएगा, लेकिन अधिकतर समय यह पॉसिबल नहीं होता। तो प्रथम चरण ये मान सकते हैं कि जागरूकता के बाद हम अपने तनाव को हटाने की कोशिश करें, अधिकतर चूंकि ये संभव नहीं हो पाता, फिर इसके फलस्वरूप हमें तनाव के कारण को जानकर उसको कम करना चाहिए। हमारी बहुत सारी समस्याएं और तनाव जीवन शैली से संबंधित होता है। हम टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से खाते नहीं हैं, किसी भी समय कुछ भी करने लगते हैं, ये चीज तनाव का बहुत बड़ा कारण है। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज का बड़ा महत्व है, तो योग को हम अपनाकर, प्राणायाम को अपनाकर और एक्सरसाइज को अपनाकर हम अपने शारीरिक एवं मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें परिजनों के लिए समय निकालना चाहिए, मित्रों के लिए समय निकालना चाहिए, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, इससे भी तनाव बहुत कम हो जाएगा। यदि कोई कठिन परिस्थिति आती है तो कभी भी उसको

0: टालना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: टालने से वो चीज कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी।
1: अभी टल जाएगी, दो दिन बाद फिर आएगी,
0: फिर और विकट रूप में आएगी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो टालने के बजाय उसका जो समुचित समाधान हो सकता है वो हमें ढूंढना चाहिए। विपरीत परिस्थिति आने पर हमें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि भगवान ने कोई मुश्किल दी है तो कहीं ना कहीं उसका हल भी दिया है। हमें अपने नजरिए में बदलाव करके प्रयास करना चाहिए, और इससे संभवतः तनाव बहुत हद तक कम भी हो जाएगा और समस्या का हल भी निकल आएगा। एक और चीज, हास्य से तनाव की बहुत ही अचूक दवा है। आज के जीवन में हास्य से बहुत कम,
1: कम हो गया है।
0: तो हमें ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें कि हमें हंसी के कुछ पल मिल जाएं।
1: जी बिल्कुल,
0: जितना हम हास्य से जुड़ेंगे हमारा तनाव उतना ही कम होता जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा तनाव प्रबंधन का सूत्र है कि हम प्रकृति से नजदीकी बढ़ाएं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हमने तनाव के कारणों में एक बात की थी कि अत्यधिक शोर शराबा, भीड़ भाड़ तनाव को बढ़ाता है। इसके विपरीत यदि हम शांत माहौल में, प्राकृतिक माहौल में जाएं, उसमें अपना समय व्यतीत करें, हमारा तनाव बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि जब लोगों को छुट्टियां मनानी होती है या तो पहाड़ी स्थलों की तरफ चले जाते हैं या जो शीशोर होते हैं समुद्र के स्थल होते हैं वहां चले जाते हैं। इससे भी हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव को कम करने की एक बहुत ही अच्छी कीमिया यह भी है कि हम अपने सोच को बदलें। यदि हम तनाव के आंतरिक कारणों की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है हमारा निराशावादी दृष्टिकोण। ऐसा रिसर्च में देखने में आया है कि जो व्यक्ति जितना अधिक निराशावादी दृष्टिकोण रखता है उसके जीवन में तनाव की उतनी ही अधिकता होती है। हम दृष्टिकोण अपना बदलें, क्योंकि कहा भी जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया चेंज करने से नजारे बदल सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो हमारी सोच का प्रभाव हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। एक किसी समस्या के कई पहलू होते हैं, उसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं। हेल्थ का एक प्रमुख डायमेंशन आध्यात्मिक भी है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये चार स्तंभ हैं स्वास्थ्य के। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, ये भी हमारे तनाव को बहुत कम करता है। इसके लिए हम ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन में जगह दे सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है कर्म फलवाद का सिद्धांत। यदि हम अपना ध्यान कर्म की ओर रखेंगे, फल की ओर नहीं ले जाएंगे, या उतना चिंता नहीं करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि हमारा तनाव अपने आप ही कम हो जाएगा। देखिए, जीवन में कार्य तो करना ही है। हमारे पास ये चुनाव है कि हम चिंता मुक्त कार्य करें या चिंता युक्त कार्य करें। चिंता मुक्त कार्य करेंगे, तनाव कम रहेगा, परिणाम भी अच्छा रहेगा। चिंता युक्त कार्य करेंगे, चिंता के साथ कार्य करेंगे, तनाव में रहेंगे और परिणाम भी उतना अपेक्षित नहीं मिलेगा।
1: आजकल की जो हमने शुरू में ही बोला कि आपाधापी की जिंदगी है, सभी लोग दौड़ रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम भी दौड़ लगाएं और चीज़ जो भी सामने दिखे उसे हासिल कर लें। अक्सर अदृश्य की ओर भागते हैं हम, कुछ सामने होता नहीं है, किसी अदृश्य लक्ष्य की तरफ हम भागते जाते हैं और उसमें हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। तो यदि इसे छोड़ करके आपने आध्यात्म की तरफ अपने आप को ले जाने की बात कही है, तो ये जीवन शैली में हमें अपने बदलाव लाने होंगे तो हम इन तनाव से दूर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तनाव और उसके प्रबंधन के बारे में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें विस्तार से बताया, हमारे श्रोताओं तक बहुत अच्छी और बहुत सारगर्भित जानकारी पहुंची है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सेहत की बात तरानों के साथ, जिसमें आपने सुना तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर अतुल अग्रवाल से तुलिका शर्मा की बातचीत। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:58 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप इस घंटे की खास खबरें भोपाल केंद्र से सुन सकेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश। ये दिन प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हम बात करेंगे जिंदगी की किताब के उन पन्नों की जो भरे हुए हैं जज्बातों के रंग से, जिनमें शामिल होता है प्यार का रंग, मस्ती का रंग, खुशी का रंग, नाराजगी, दुख, दर्द, दूरी और दोस्ती का रंग भी। और इन रंगों पर कहीं गाढ़ी स्याही ढुलक जाती है तो कभी रोशनी का रंग बिखरता है, मगर हम नहीं रुकते और ना ही जिंदगी रुकती है। अपनी रफ्तार से जीने के लिए चलती चली जाती है और हम भी चलते रहते हैं उसी के साथ। तो आज इन रंगों के एहसास को आप बांटेंगे, बयां करेंगे मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा, आपके साथ कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, देर किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और साझा कीजिए इन एहसासों से जुड़े कुछ किस्सों को, बातों को हमारे साथ। हमारा फ़ोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता कॉलर से। हेलो जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: जी जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारी। जी बोले,
1: तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी ज़िंदगी की जो किताब होती है वो कई तरह के रंगों से भरी होती है। उसके हर पन्ने पे एक अलग ही रंग होता है, जिसमें प्यार का रंग होता है, मस्ती का रंग होता है, खुशी, दुख, दर्द, जुनून, दोस्ती का रंग भी उसमें शामिल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने जज्बात के इनमें से किसी भी रंग के एक एहसास के साथ जुड़ा अगर कोई आपका किस्सा है तो वो हमसे साझा कीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
2: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, दीदी मनोज नामदेव।
1: मनोज जी, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: बस दीदी बढ़िया है, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहते हैं। बिल्कुल दीदी, और कहें कि आकाशवाणी भोपाल से तो हमारे श्रोता अपार प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बताया अब कैसे बता दूं मैं आपको।
1: वो हम आपके जज्बात समझते हैं, इसीलिए तो आज का विषय यही है कि अपने जज्बात के रंग का कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा या उससे जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर कीजिए।
2: बिल्कुल दीदी, आपको मैं छोटा सा वाक्य बता दूं
1: जी।
2: कि दीदी जब मैं कहें कि छोटा था
1: जी,
2: तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैं अपने जो पापा जी के साथ बैठा करता था, मेरे पापा जी क्या करते हैं, सिलाई वाली जो मशीन चलाते हैं दीदी
1: जी,
2: तो आपका जो रेडियो स्टेशन है वो सुनते रहते थे। तो पहले भोपाल भी आता था और हमारे पास में शिवपुरी है वो भी आता था, और हमारे पास में झांसी भी है वो भी सुनते थे। तो मैं सुनता रहा, बहुत दिन सुनता रहा, पर मेरे मन में एक कहें कि एक जिज्ञासा जगी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें बढ़िया तो समय समय पर गीत आते हैं और समय समय पर इसमें कहीं की समाचार भी आते हैं, और आज दिख रहे हैं तो आज इसमें मैच भी आ रहा है
1: जी।
2: तो मैं सोचता रहा, अब मेरे मन में एक जुनून सा पैदा उस दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अब मन में ठान ली, या आपका क्या कहें कि कसम खा ली, कुछ भी मान लो, तो उस दिन से जुनून ऐसा पैदा हो गया, ऐसा जुनून सवार हो गया मेरे ऊपर कि जब तक मैं सुबह से शाम तक रेडियो, अगर मैं अपने शॉप पर हूँ तो सुनता ही हूँ, अगर शॉप पर भी नहीं हूँ तो कहीं भी हूँ, रेडियो बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताएं कि ये जो जुनून वाला एहसास है ये एक ख्वाहिश होती है कि आपने ये बना लिया है कि हाँ मुझे रेडियो सुनना है, और ये ख्वाहिश, ये जुनून बारिश की उन बूंदों की तरह होती है मनोज जी, कि जिसे पाने की चाहत में हम तो भीग ही जाते हैं और वो जो प्यास है वो बरकरार रहती है, या ये कहें कि बढ़ जाती है। अब आपको भी वो प्यास रहती होगी कि अब हमें सुनना है कि अब हमारे रेडियो में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है।
2: बिल्कुल दीदी, और बताना चाहती कि अगर मैं रेडियो से नहीं जुड़ता तो काश अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता। आधे से ज्यादा तो भूमिका रेडियो की है कि आज मैं यहाँ तक हूँ,

0: कहीं की इतने श्रोता है, मेरे इतने श्रोता है कि अगर मैं चाहकर भी श्रोताओं से अगर मिलता या उनसे बात करता तो मेरा कहीं की जिंदगी निकल जाती, लेकिन श्रोताओं से कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मेरे जिंदगी में रेडियो का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
1: वो हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है मनोज जी, आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है रेडियो से, और हम चाहते हैं कि आपका ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अगर आपका आकाशवाणी भोपाल की जितनी भी अनाउंसर हैं, अगर सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, तो आखिरी सांस तक रेडियो में छोड़ूंगा ही नहीं।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं कि आप छोड़ें हमारा साथ, लेकिन आशीर्वाद हमारा नहीं, ईश्वर का रहता है, हमारा तो साथ है आपके साथ,
0: बिल्कुल
1: ना, जो हमेशा बना रहेगा।
0: बिल्कुल
1: मनोज जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, इतनी अच्छी बात हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, आपको भी, सभी टीम को
1: जी।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, परिचय दीजिए अपना।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की। हमारे जीवन के जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, कभी प्यार का, कभी खुशी का, कभी हमें दुख होता है, कभी दर्द होता है, तो आज हम जानना चाहते हैं आपके एहसासों से जुड़ा कोई वाक्या, कोई किस्सा या कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं।
1: ये देखिए, अगर जीवन में जज्बात नहीं है
0: जी
1: तो जीवन का मतलब भी नहीं रहेगा। जज्बात तो होना चाहिए किसी बात का भी।
0: जी बिल्कुल सही
1: तो
0: बात है ये।
1: जज्बातों से जीवन में एक ऊर्जा मिलती है,
0: जी
1: तो हमें जज्बात को रखना चाहिए। और रह गए मुझे जज्बात जो है अपने देशभक्ति के लिए, ईमानदारी के लिए है। मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ दीदी, मैं दुकानदार हूँ।
0: जी
1: तो मुझे ये जज्बात है ईमानदारी का।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ,
0: ये
1: मैं अपने ग्राहकों से हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ। उनके प्रति मैं बहुत मतलब प्रेम रखता हूँ, चाहे वो कुछ भी रहे, मतलब मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये मेरा जज्बात है कि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ और इसी बात से वो मुझसे खुश भी रहते हैं।
0: जी तो यहाँ ये खुशी का एहसास है आपका, आपकी ईमानदारी में छुपा हुआ।
1: जी, कभी मैं बार्गेनिंग किसी बात में नहीं करता हूँ। सामान मांगा है तो बोल देता हूँ भाई मांगा है,
0: जी
1: अब आपकी इच्छा लो ना लो, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता हूँ
0: जी
1: कि कुछ ही कम दे दूँ, कुछ कुछ किसी को बार्गेनिंग कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ईमानदारी मेरा जज्बात है।
0: जी और इस ईमानदारी के जज्बात से आपको खुशी मिलती है।
1: जी जी जी बहुत खुश रहता हूँ। मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, मैं ईमानदार हूँ
0: जी
1: तो मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या किया था क्या नहीं किया था।
0: जी तो ये जो खुशी है ना बाबू यादव जी, ये बहुत बड़ा रंग है, बहुत महत्वपूर्ण रंग है हमारे जीवन का।
1: जी जी जी बिल्कुल, मैं उसी तो नाम से जाना जाता हूँ,
0: जी
1: मोगरा ईमानदार है।
0: और ये ऐसा जज्बात है, इसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है, और
1: जी
0: अगर
1: जी जी
0: इसको हम
1: बिल्कुल
0: सही ढंग से ढूंढेंगे ना तो ये हमें हर कहीं मिल जाएगी।
1: जी।
0: बस हमारे नज़रिए का फर्क होता है और उस पर निर्भर
1: हाँ हाँ
0: करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, सबका अपना अपना नजरिया है।
0: जी तो आपने अपना ये ईमानदारी वाला एहसास हमसे बांटा, इसके लिए बाबू यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडियो सोता था बस स्टैंड बंडा बेले चले।

0: चाय वाले बोला दीदी काफी पी लो।
1: आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉफी ऑफर की। जी आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
0: लक्ष्मण रेखवार, हमने कही है वेदी दी है काफी पीते हैं, आप तो चाय पी लो।
1: हम चाय कॉफी सब पी लेंगे, आप इतने प्रेम से हमें पूछ रहे हैं तो हम भला ना कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी।
0: हाँ
1: जी तो आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और
0: हाँ
1: इसका विषय हम आपको बता देते हैं। आज इस कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बात के रंग, हमारे जीवन से जुड़े हर एक जज्बात का एहसास, जो प्यार का हो सकता है, खुशी, दर्द, आपको कभी किसी ने तकलीफ दी हो तो उससे जुड़ा हम कोई किस्सा या कोई बात अगर आप हमसे बताना चाहते हैं उसे साझा कीजिए।
0: हाँ ये तो सही है। क्या हमारा छोटा भाई है जो मंझला भाई, वो बिलर गया था थोड़ा, अब तो सही हो गया भगवान जी, बहुत परेशानी गई है। हाँ तो उसमें दिक्कत भाई है बहुत ज्यादा।
1: तो आप उस समय तकलीफ में रहे होंगे।
0: हाँ बहुत ज्यादा तकलीफ में, 1-2 साल, अब
1: जी
0: तो सही लेन पे आ गया है। एक दुकान बंद भी करना पड़ी थी उसके पीछे ना,
1: अच्छा,
0: 3 दुकानें थी तो ये अब 2 बच्ची हैं।
1: तो जब परिवार को देखना होता है उसमें कहीं कुछ परेशानी होती है तो अपने ही तो साथ देते हैं लक्ष्मण जी,
0: हाँ ये तो सही है
1: है ना?
0: दीदी।
1: और आप लोगों की लगन और मेहनत रही होगी उनको ठीक करने में कि वो आज ठीक हो गए हैं,
0: हाँ
1: है ना? तो
0: हाँ
1: ये
0: दीदी,
1: देखिए जीवन है तो सुख दुख सब कुछ लगा हुआ रहता है हमारे साथ।
0: हाँ सुख दुख आया जाएगा और जाएगा, चलता रहता है।
1: जी क्योंकि ये
0: पहले
1: जो
0: बहुत हमने भी क्या है बहुत तकलीफ में रहे, पटी पेंट पे रही, सब पे रही, दूसरे के काम भी किया, मगर अब भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया है।
1: बहुत
0: अच्छा करोगे काम तो भगवान भी देगा साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जीवन की जो किताब है ना उसमें अगर एक तरफ खुशी रहती है तो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ से भी हमारा सामना होता ही है, और
0: हाँ
1: उस ये पल हमें मिलते हैं कि हम कैसे उससे बाहर निकलते हैं, कैसे
0: हाँ
1: उनको संभाल पाते हैं हम। जी और आपने संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात साझा की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण
0: ठीक है
1: जी।
0: दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं हमारी बात किससे हो रही है?
1: बिल्कुल जान सकते हैं। मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, मैं हूं आकांक्षा
1: अच्छा, आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया
0: जी।
1: बढ़िया। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के एहसास की। हमारे जीवन में जो भी जज्बात हैं, प्यार का, दुख दर्द, खुशी, दोस्ती, जुनून, इन सब से जुड़ा अगर आपका कोई किस्सा है या कोई बात आप हमसे बताना चाहते हैं, वो हमसे साझा कीजिए।
1: तो बताइए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोलने की। क्या बताया आपने? जी
0: देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें
1: जी
0: कई तरह के रंग होते हैं। रंग मतलब
1: जी
0: एहसासों के रंग, जिसमें
1: जी
0: शामिल होते हैं प्यार का रंग, खुशी का रंग। कई बार
1: जी
0: हम पहली बार कुछ काम करते हैं या कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिससे मिलके हमें बहुत खुशी होती है, तो वो हो
1: जी
0: गया
1: जी जी
0: खुशी का रंग। तो
1: जी
0: ऐसा कोई रंग आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ तो वो बताइए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बढ़िया आपने विषय रखा है। और जो विषय रखा है ये बिल्कुल हमारे आपसे ही लिमिटेड है, जो है जैसे हमारा आपका आकाशवाणी का नाता है। हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको भी नहीं जानते थे, तो
0: जी
1: एक आकाशवाणी के माध्यम से जो है हम आपको जानते हैं और जितने श्रोता हैं उनको भी हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और ये जान परिचय जो है केवल हमारी आकाशवाणी की ही देन है और उसी आकाशवाणी की वजह से ही हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं।
0: ये तो हो गई आकाशवाणी की बात कि आकाशवाणी से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे आपको प्यार है, उससे बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं उसके ज़रिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के एहसास का रंग। कभी
1: अच्छा
0: कोई ऐसी खुशी आपको मिली है या कभी किसी ने ऐसा चोट पहुंचाई है कि आप अंदर से टूट गए हों, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तकलीफ है? क्योंकि जीवन में तो ये सब लगा हुआ रहता है ना।
1: हाँ हाँ जी, बात सही है बिल्कुल। बिल्कुल मुझे जो खुशी मिली है जीवन में वो शायद आप कहेंगे तो वो रेडियो से ही मिली है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और मुझे जितनी खुशी और जितना आनंद रेडियो सुन के आता है वो शायद कहीं नहीं आता है।
0: जी, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोता ऐसे हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। मुझे बहुत आनंद आता है रेडियो के माध्यम से। जब मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो के बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मुझे रेडियो से ही मिलता है।
0: जी, फूलचंद पाल जी, देखिए,
1: जी
0: ये जो खुशी हमें मिलती है ना, तो ये ऐसी खुशी होती है मानो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही है।
1: जी
0: और
1: जी
0: वैसे भी ज़िंदगी में आवाज़ देने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर हम
1: जी
0: ठहरते वहीं हैं जहाँ अपनेपन और खुशी का एहसास होता है ना।
1: क्या बात है,
0: और
1: बहुत अच्छी बात।
0: मुझे आपसे बात करके यही लग रहा है कि आपकी वो खुशी, आपका वो एहसास आकाशवाणी ही है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: मैं बता दूं, जो मैं आकाशवाणी से लगभग लगभग जो है बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा जो मेरी मन में जो खुशी है, मेरे मन में जो आनंद है वो आज भी निकम हुआ है, बहुत ज्यादा है।
0: और हम चाहेंगे ये कभी कम ना हो। आपका ये आनंद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप हमसे जुड़े, हमसे

0: मैं मनोज विश्वकर्मा ग्राम पनारी तहसील देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: मनोज विश्वकर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: जी
1: आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बात के खूबसूरत एहसास की, वो जज्बात जिनसे हमारी जीवन की किताब का हर एक पन्ना भरा हुआ है। जी उसमें आप जानते ही हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी उसमें दोस्ती का रंग शामिल होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा एहसास या कोई ऐसी बात हमसे साझा कीजिए जो आपके मन को छू गई हो या आपको कभी कुछ ठीक ना लगा हो, किसी भी तरह की बात।
0: मुझे तो ऐसा है जैसे कहीं जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से किसी से मिलते हैं अजनबी व्यक्ति से
1: जी,
0: तो कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से इतना खास या ऐसे जुड़ जाता है
1: जी,
0: जैसा अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि इस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा कभी।
1: जी तो आपसे कभी ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई है?
0: हाँ, ऐसा हमारे एक मित्र है बिहार का, एक तो उससे हमारी ऐसी पहली दफा मुलाकात हुई थी और एकदम मुझे इतना वो हमारा करीबी बन गया
1: जी,
0: अपने परिवार जैसा हो गया।
1: मतलब वो अजनबी थे और फिर आपके
0: अजनबी
1: करीबी हो गए, तो इस एहसास से आपको दोस्ती का रंग मिला,
0: जी,
1: खुशी मिली। तो हालांकि वो आपसे बहुत दूर हैं, बिहार के आपके दोस्त हैं, तो हैं तो दूरी बनी हुई है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है।
0: बिल्कुल
1: जी, आपने हमसे इतना अच्छा एहसास साझा किया, उसके लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, मेरी बात कैसे हुई मैडम?
1: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
0: जी, आकांक्षा
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी जी जी
0: हम जानना चाहेंगे हमारी बात किनसे हो रही है।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, शिमला से
1: जी
0: बहुत
1: जी जी
0: दूर से आपने हमें फोन लगाया है।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा आकाशवाणी भोपाल का मुझे फोन करके सुने उतना पसंद है, तो जितना ये जो है बात आपकी गीत हमारे, ये पसंद क्यों होता है, इस पे जो है अपने विचार रखने का अवसर मिल जाता है, तो इस पे मैं ज्यादा जुड़ता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो विषय है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बातों के रंग।
1: जी
0: जज्बात जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, तो आप अपना कोई भी एक एहसास हमसे साझा कर सकते हैं, उस बारे में बता सकते हैं।
1: जी जज्बातों के जी जी जी बिल्कुल।
0: जी
1: तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जज्बातों के जो रंग होते हैं
0: जी
1: इस, क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो अपने जीवन का मेरा एहसास ये है कि मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा कि कभी जज्बातों पे मैंने अपने हावी अपने पर हावी नहीं बन गया। कैसे हावी नहीं बन गया कि जैसे कि कई लोग मेरे से मित्र मिले हैं,
0: जी
1: तो उनने मेरे को ऐसी बात कही जो वो बात टूटने वाली थी,
0: हाँ, मतलब आपको तकलीफ पहुंचाई बातों से।
1: मतलब कैसी तकलीफ, उनका कहने का मतलब था कि भाई अभी तो शायद आपके जो है माता पिता है, अभी आपको सब आपके कर लेंगे कोई सेवा पानी, जब माता पिता नहीं होगी फिर क्या होगा, तो ऐसा क्या बोला गया था। तो मैं सुनता रहा
0: जी
1: इस चीज को,
0: जी
1: तो मैंने इस चीज को गौर से सुना, तो मैंने क्या किया कि मैं इनको जो है बोलने दो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, हमें अपने लक्ष्य पे खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले क्या नहीं बोलेगी, तो मैं इस चीज पे कभी, तो मैंने इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत बात को
1: गलत
0: अगर
1: बात
0: हम
1: को
0: अपने ऊपर हावी होने देंगे तो नुकसान हमारा ही होता है।
1: क्योंकि ऐसा क्यों बोलते लोग, देखो अब देखो लोग अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, कि ऐसा बोलना चाहिए कि चलो हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे हम कुछ आपके लिए कर सके, तो आपको इच्छा होगी जानने की कि ऐसा क्या हुआ आपका जो ऐसा लोग बोल रहे हैं।
0: अगर आप बताना चाहते हैं तो
1: तो
0: बताइए।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो बचपन से ब्लाइंड तो लोग जब मैं जब कोई भी आते थे अरे पूछते थे कि भाई इनको कब से दिखाई देता, मैं कहा बचपन से, तो लोग बोलते हे भगवान ऐसा क्यों किया, और बाकी तो चलो ठीक है अभी तो आप लोग करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, तो मैंने सोचा कि बाद में जो होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन हम बाद के लिए हम अपने आज आज को जीना है, ना कि कल के लिए, कल के बारे में सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल जो भी होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम जो आज में जी रहे हैं तो हम बड़ी खुशी से जी रहा हूँ मैं, बढ़िया से आज आकाशवाणी केंद्र से आपके माध्यम से लोगों से दोस्तों से बात हो रही है, और अपने विचार बांटने का अवसर हमें मिल रहा है
0: राकेश जी,
1: कि
0: आपकी ये बहुत अच्छी सोच है कि हमें आज में जीना है, आगे जो होगा देखी जाएगी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी को बोलता हूँ जितने मेरे ब्लाइंड साथी है, कई बार आकाशवाणी लखनऊ पे है भोपाल में कहते रहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, मैं ये कह रहता था कि आप ऐसा मत बोलो कि मैं घर पे पड़ा रहता हूँ,
0: जी
1: जो भी है अब आज आज में जियो कि कल की, अब ये मत सोचो कि भगवान ऐसा क्यों किया, जो भी किया है, कहते ना कि भगवान एक चीज अगर छीनता है तो दूसरी चीज देते हैं, लेकिन हम जो भी है आज में जियो, और अपने ऊपर कभी कोई भी चीज हावी मत होने
0: बिल्कुल,
1: देना
0: ये
1: चाहिए।
0: अपनी, देखिए हर इंसान में कमियां होती हैं, अपनी
1: जी जी
0: कमी
1: जी
0: को भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
1: हावी नहीं होने देना
0: जी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखिए जीवन है, कभी धूप कभी छांव तो होती है, और हम सोच भी
1: ना
0: नहीं सकते कि जीवन में क्या-क्या होना होता
1: क्या
0: है।
1: क्या होता है, एक गाना है ना कि जैसे कि कविता कृष्णमूर्ति ने गाया कि थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, दुख में तो सुख है, तो
0: हाँ,
1: ये
0: आगे
1: थोड़ा थोड़ा
0: सुख तो
1: हमें
0: पीछे
1: ये
0: दुख
1: तरह है
0: है।
1: कि हमेशा नहीं कि हमें सुख मिले, अगर हम आपको सुख मिलेगा तो हम दुख दुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे,
0: बिल्कुल, और दुख
1: ये तो
0: दुख
1: एक
0: नहीं आएगा तो हम सुख को कैसे पहचान पाएंगे,
1: कैसे
0: सुख
1: पाएंगे,
0: का अनुभव कैसे
1: क्योंकि
0: करेंगे।
1: अगर मानो कि हमें सुख की अनुभव तो तब होगी ना, पहले हमें दुख सहना करना पड़ेगा फिर हम सुख की कदर कर पाएंगे कि सुख क्या है,
0: जी
1: लेकिन हाँ अगर हम सुख की सुख मिलेगा शुरू से लेकर अब तक, तो फिर हमें सुख का अनुभव होगा तो फिर हम किसी की मजाक उड़ा सकते, किसी का दिल भी दुखा सकते। तो जब हमें दुख मिलेगा तो फिर हम दुख, तभी तो हम दुख तकलीफ को समझ पाएंगे। अगर हम सुख में जीते हैं तो हम दुख को तकलीफ के, हम तो दुख को फिर मजाक उड़ा पाएंगे। इसलिए कि थोड़ा थोड़ा दुख भी है, अगर थोड़ा दुख अगर होगा तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और हम समझ भी सकेंगे, तभी तो हम दूसरों को समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल, दूसरों को समझ पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे।
1: जी जी जी जी
0: ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपने अपना एक अलग ही रंग हमसे साझा किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: वो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन में ऐसे फसाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने

0: हेलो,
1: नमस्ते कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
0: गोविंद जलोदिया खातेगांव। बस
1: गोविंद जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे
1: जी गर्मी तो है, मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी।
0: पर बहुत ज्यादा ही मतलब है।
1: देखिए हम इंसान क्या होते हैं ना, ठंड होती है तो कहते भगवान कितनी ठंड है, अभी गर्मी है तो गर्मी में भी हम परेशान हैं। अच्छा, आज कार्यक्रम चल रहा है बात आपकी गीत हमारे,
0: हाँ
1: इसमें हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की।
0: हाँ
1: हम आपसे कोई एक ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जिसने कभी आपको बहुत खुशी दी हुई हो, या दिल को छू गई हो, या कभी किसी की बात से आपको बुरा लगा हो जिससे आप कह भी नहीं पाए। ऐसी अगर कोई बात है तो वो हमसे साझा कीजिए गोविंद
0: तो
1: जी।
0: जो है मेरे को अभी तक याददाश्त ये है कि मेरी शादी हुई थी और मैंने वो पिक्चर है नी चुपके चुपके देखी थी। मतलब चोरी चोरी पिक्चर थी वो, तो
1: जी
0: पर चुपके किसी को मालूम नहीं पड़े, मतलब ऐसा।
1: अच्छा, चुपके चुपके आपने चोरी चोरी मूवी देखी थी।
0: हाँ,
1: अच्छा, आपकी
0: तो
1: शादी
0: उसमें फिर
1: वाले
0: वो
1: दिन।
0: गाना भी था मन भावन के घर जाए।
1: तो ये था आपके जीवन का एक खुशी वाला किस्सा
0: हाँ
1: जो जुनून से भरा हुआ था।
0: हाँ
1: ठीक है, आपने इतना
0: जिन
1: अच्छा।
0: किसी से भी अपन बात करते हैं नहीं तो उनको बड़ा वो रहता है कि यार वो बड़ा सिनेमा का बड़ा वो। मैं वैसे दीदी, मैं सिनेमा में नौकरी करता था, था।
1: अच्छा, बहुत अच्छा
0: खातेगांव में भी मैनेजर रहा मैं, ताकि में।
1: जी। ठीक है गोविंद जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 11:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और आधुनिक तकनीक की मदद दी जाएगी। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने आज उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन में दर्शन लाभ लिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12:00 हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का पहला गीत ये रहा। फरमाइशी नाम और बाकी की जानकारियाँ गीत के बाद।

अमर अकबर एंथोनी फंक का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश का गाया हुआ। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी साथियों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, इनकी चिट्ठी आई है। और अगला ख़त लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब पोतरा, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, साथ में हैं गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने पूरी की और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सिहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता और कीसु तासु भगत, डोंगरगांव ज़िला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहा है।

0: that made them key feelings black?
1: ऐ दिल है मुश्किल, इस फिल्म का गीत आपने सुना। धुन बनाई थी प्रीतम ने, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, आवाज़ें थी अरिजीत सिंह, बादशाह जोनिता गांधी और नक्श अजीज की। और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रॉबिन राणा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता जी का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत को रचा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है विशाल ने, फिल्म का नाम सत्या।

सुनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्म का वो नगमा जिसे गाया है भूपेंद्र सिंह ने, खयाम के संगीत निर्देशन में बोल हैं निदा फाजली के, और सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले ने इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित आर्य ने ये चिट्ठी लिख भेजी है गोल बाज़ार बक्सर से। इन दोस्तों की फरमाइश ये रही।

0: वक्त के। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से दोपहर के 12:25 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। बारह बजकर 30 मिनट हुए हैं, ये समय है संग्रहालय से का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित विष्णु शर्मा की मूल अमर कृति पंचतंत्र पर आधारित कहानियाँ। आज इसकी तीसरी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
2: ओह, मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
3: पानी, पानी, पानी।
2: ये लो पानी, लो लो। आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
3: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
2: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
3: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
3: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
2: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूं कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
3: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
2: ओ,
3: मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
2: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
3: क्या क्या कह रहे हो रत्कार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
2: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
0: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
2: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
0: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
4: कौन कौन है वहां झरोके पर?
5: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
4: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, आप पवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
5: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहाँ चला आया।
4: यदि यही बात है तो भगवान चलिए, हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
5: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
4: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
0: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया, और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातःकाल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
6: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
7: अरे अरे, तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था, अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
6: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतःपुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
7: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए, वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
6: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं, चलो अब विलंब करना व्यर्थ है।
7: महारानी की जय हो।
8: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
7: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
8: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
6: बात ये है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है। आपकी आज्ञा क्या है?
8: ये क्या कह रही हो? ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
7: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य न हो।
8: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
6: महारानी,
8: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
7: महारानी,
9: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी? हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा? किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया? क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
4: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
8: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
9: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
8: बोल, सत्य बोल।
4: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
9: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है? स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
4: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था। मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
8: महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
9: आप सत्य कहती हैं महारानी। आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखें महाराज, वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गया। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।

राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री।

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं। ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
0: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है? तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
1: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा? कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
0: सोचता हूँ दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे। और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या? प्रिये, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातःकाल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें। मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
1: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूं। उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए?
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़ देव। आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
4: जी।
3: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जामाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
3: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच अबू धाबी में हुए। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी माँ बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। मैं पुनः दोहराती हूँ कि हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम मात्र से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से और उसकी भाषा से होती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को देखते हैं, तो उनके बिना बताए ही उनके पहनावे से और उनकी भाषा शैली से उनके निवास स्थान का अंदाजा लगा लेते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व

हुआ है। हाँ, मौखिक भाषा तक पहुंचने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है। हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक है, एकता का सूत्र है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक दर्जे पर आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। यह भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। श्रोताओं, भारत की भाषाई विविधता हमारे देश सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हमारी भारतीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध भी है। आइए अपनी भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, संवैधानिक स्थिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया। इनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत एवं अन्य भाषाएं शामिल हैं। भाषाई परिवार। भारत की भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भाषा एवं पद्य भाषा। हमारी भाषा पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखित हैं। ये पुस्तकें NCERT, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत तैयार की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाना है और साथ ही व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने की कला सिखाती है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय भाषा की पुस्तक योजना के बारे में। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री और पुस्तकों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे विषय की समझ बेहतर हो। अनुवाद और मूल लेखन इसके तहत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय लेखकों को मूल सामग्री लिखने को प्रेरित किया जाता है। उच्च शिक्षा पर ध्यान। यह योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे तकनीकों पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं पर उपलब्ध कराने पर जोर देती है। डिजिटल उपलब्धता। पुस्तकों को न केवल प्रिंट रूप में बल्कि ईबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ उठा सके और अपनी भाषा का भी महत्व समझे। अपनी भाषा अपनी पहचान, यही है भारत की शान। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, उसके पहले सुनते हैं यह गीत, जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने। A daughter is a daughter.

0: तो इस गीत के बाद मैं स्मृति पुनः प्रस्तुत हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में। श्रोताओं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से आज तक आकाशवाणी जन जन तक देश विदेश की खबरों, संगीत, आवश्यक जानकारी व मनोरंजन करती आई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच हैं, पुष्पा सिंह जी, जो रीवा जिले के माँ गायत्री शक्तिपीठ की ट्रस्टी हैं, जिन्हें सुनते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम से। तो आइए सुने यह भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पा सिंह जी, जो कि रेडियो की बहुत अच्छी श्रोता हैं और आज भी रेडियो से इनका बहुत ही गहरा लगाव है। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते बहन स्मृति जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो के लिए मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है। और रेडियो रेडियो का तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेडियो की बात ही अलग थी। हम तो बचपन से रेडियो के इतने शौकीन थे कि कोई भी काम करते थे तो रेडियो ही चला के काम करते थे और काम का पता ही नहीं चलता था कि काम हमारा काम पूरा हो गया और हम बड़े प्रेम से सारे काम हमारे होते थे। और खासकर महिलाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए जो आते थे, और मैं गीतों की बहुत शौकीन थी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे भजन हो, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती थी और मैं बहुत शौक थी। हालांकि मुझे विविध भारती के तो सारे ही प्रोग्राम बहुत पसंद थे, चाहे बिना का गीत माला हो, चाहे हवा महल हो, हवा महल की कहानियाँ आज भी हम सुनते हैं, कभी भी मन हो जाता है। मैं टीवी के बजाय रेडियो को देख सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे काम भी होते हैं। टीवी तो हमको देखना पड़ता बैठ के, लेकिन रेडियो में हम काम भी करते रहते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं।
1: तो यानी कि इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं होती है।
2: हाँ, समय की हमारी बर्बादी नहीं होती है बहन, और जो है हमारी काम भी अच्छे से होते रहते हैं। और कई बार हवा महल का जो प्रोग्राम आता है, पुरानी जो छोटी छोटी सी कहानी, अपने पति पत्नी की आपसी वार्तालाप, इतना मेरे को पसंद आता है और हम लोग उसके लिए बड़े बेकरार रहते थे। और बिना का गीत माला, कौन सा गाना टॉप पे आएगा, ये कौन सा गाना, ये बड़ी उत्सुकता हमारे मन में रहती थी। और फौजियों के लिए कार्यक्रम में वो भी बहुत पसंद था। मैं रेडियो की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। हर प्रोग्राम ही उसके सब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे समाचार हो, चाहे बिना का गीत माला हो, और चाहे हवा महल हो, या छोटी छोटी कहानियाँ हो, या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाना भी बताते हैं, बहने तो बहुत पसंद आते हैं। कई बार हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि आज ये आया है, बना के देखते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में ये तो होता नहीं, गूगल तो होता नहीं था। तो हम रेडियो पर जो आती थी व्यंजन विधि, उसको सुनते थे और फिर बनाने का प्रयास करते थे।
1: जी जी,
2: तो बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत ही, मतलब कहाँ तक मैं उसकी तारीफ करूँ। आज भी हम उसी तरह से रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहे कितना ही भी आ गया है, जब यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई हैं,
1: आधुनिकीकरण आया है,
2: लेकिन उसका मुकाबला आज भी नहीं है। आपसी बहनों की जो चर्चा होती है, जब दो बहनें आपस में बात करती हैं, तो लगता है कितनी अपनत्व है कितना। और फरमाइशी प्रोग्राम में गांव-गांव से टीवी में कहाँ आता है, गांव से आज भी हम जब सुनते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम, तो जो बताते हैं ना, हम तो किसानी का काम करते हैं, हम तो सिलाई का काम करते हैं, हम तो खेत में बैठ कर रेडियो सुन रहे हैं, तो इतना अपनत्व लगता है कि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम जो है उसमें जो आता है, इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई ये सब अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही हैं, कहाँ कहाँ से कितना जाते हैं, अपने अपने पत्र भेजते हैं, कितनी खुशी होती है जब उनके पत्र, मतलब पढ़ते हैं,
1: पढ़े जाते हैं, हमारे नाम पढ़े जाते हैं, तब
2: बहुत खुशी होती है। मैं भी पहले बहुत पत्र लिखती थी, एक आध बार मेरा भी नंबर आया है, और मैं भी पहले रेडियो में प्रोग्राम देती थी, तो गीत में भी मैंने प्रोग्राम दिया है अपना, और चर्चा में वैदिक संस्कृति के ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि भारतीय नारी जब और अब, इसमें हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो रेडियो का तो कोई वो ही नहीं है, बिल्कुल तोड़ नहीं है, चाहे कितना भी आधुनिकता आ जाए और कितना ही हो जाए, लेकिन रेडियो हमारे लिए आज भी उतना ही आवश्यक है और बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात ये कि हमारे किसी काम पर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता,
3: बिल्कुल
2: नहीं पड़ता है, चाहे हमारे काम भी चलते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
3: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने अच्छे से जानकारी दी, आप वाकई में रेडियो की एक अच्छी श्रोता हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
2: मेरी तरफ से भी बहन स्मृति बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके उत्सुकता को व्यक्त कर सकूं और आपके लिए कुछ थोड़ा सा अपना समय दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो बहनों, अभी हमने सुनी है भेंटवार्ता जिसमें बात कर रही थी पुष्पा सिंह जी। श्रोताओं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है भारतीय भाषा के बारे में, तो हमारी भाषा का कोई तोड़ तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर प्रांत की, हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अलग पहचान होती है, एक रस होता है। और साथ ही भाषाओं में और अधिक रस कब पड़ता है, जब कोई लेखक या शायर अपने शब्दों में या भाषा को मिश्रित करता है तो लोग मंत्रमुग्ध होकर भाषा का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शायरा सकीला बानो भोपाली के बारे में, जो शायरा होने के साथ साथ कवियत्री और मंच संचालिका भी थी। उनका जन्म 1940 में भोपाल में हुआ था। वो खास तौर पर उर्दू शायरी और मुशायरों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुत के लिए जानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे उस दौर की पहली मशहूर महिला शायरों में से एक थी जिन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में मंच संभाला और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज, अंदाज और हास्य से भरी शायरी लोगों को बहुत पसंद आती थी। सकीला बानो भोपाली ने देश विदेश के कई मुशायरों में भाग लिया और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मुशायरों की मलिका भी कहा जाता है। उनकी शायरी में प्यार, समाज, महिलाओं की भावनाएं, जिंदगी के अनुभव झलकते थे। वे कई फिल्मों एवं रेडियो कार्यक्रमों से भी जुड़ी रहीं। आइए सकीला बानो के बारे में कुछ और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सकीला बानो को कम उम्र में ही संगीत और शायरी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कव्वाली को केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश का माध्यम भी बनाया। उनकी गायकी में उर्दू शायरी, सूफी अंदाज और हल्का भी शामिल होता था। वो अपनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और मंच संचालन के लिए मशहूर थी। चूंकि उस दौर में महिला का मंच तक पहुँच पाना एवरेस्ट चोटी तक पहुँचने से कम नहीं था, इसलिए उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन सकीला बानो हार न मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों का मन जीता और महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई, और इस तरह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ने के बाद सन 2002 में सकीला बानो की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी लोग सकीला बानो को बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आइए हम भी उनके सम्मान में सुनते हैं ये कव्वाली।

बहनों, गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप और चुभती गर्मी ने इंसान का हाल बेहाल किया है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को सफेद कपड़े से ढक कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, धूप से लौटने पर एक सांस में ज्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। साथ ही मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और ठंडक वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, नींबू, पुदीना, खिचड़ी या मूंग दाल, बेल का शरबत आदि। इसी कड़ी में हम आज जानेंगे मुनगे की कढ़ी बनाने की विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कढ़ी को बनाने की सामग्री। सामग्री है 1 कप खट्टा दही, 2-3 चम्मच बेसन, 2 साबुत लाल मिर्च, राई छोटा चम्मच, मुनगा 8-10, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी, करी पत्ता, लहसुन व नमक। अब आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मुनगे को छीलकर छोटे छोटे लगभग 2-2 इंच के टुकड़े कर लें और तेल में फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में दही, बेसन व पानी का मिश्रण तैयार करें। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें और राई, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, लहसुन तथा हल्दी का तड़का लगाएं। तड़का ठीक से सुनहरा हो जाने पर दही बेसन के मिश्रण को भी कढ़ाई में डालें और अंदाजे कि मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला, और बड़े चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने पर मुनगे के टुकड़े को डाल दें, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें और ठीक से पकाएं। अब इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यह दोनों में ही लाजवाब लगती है और सेहत से भरपूर होती है। खास करके गर्म के मौसम में मुनगे की कढ़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहनों, अंत में सुने एक और गीत, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

0: मणिमाला सिंह और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सुगम संगीत। कलाकार है मुकुल सूनी।

मुकुल सोनी की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बुद्धशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में बोधशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप 2020 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से

0: इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
0: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट ए आई आर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का पहला गीत आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म है एतबार।

एतबार फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश हमें सीतामणि बिहार से भेजी थी अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, आरिज, अरहान, हमजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की भी यही पसंद थी। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। इंदिवर की रचना है राजेश रोशन का संगीत और फिल्म है आखिर क्यों। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मनीष कुमार पाराशर, परी, आकांक्षा, राधिका, नीना, खुशी, प्रेम नारायण, हीराबाई, हेमंत, अभिषेक, मोहित, मयंक, अनीता, सविता, पूनम, रविशंकर, निरंजन, राकेश, मुकेश, तरुण, प्रवेश, नमन, पवित्र दुबे और उनके सभी साथी।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म राही के लिए इस गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने। संगीत जगजीत सिंह का है और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला खां, नसीम बेगम, आयशा खां, हादिया, अस्मा, सालेहा, शोएब और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से MM राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और राजावत परिवार के सभी सदस्य। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है एक नया रिश्ता। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। फरमाइशी पत्र प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से आया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत को सुनना चाहा है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की भी यही पसंद है।

एक नया रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 का समय रहेगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग। इस विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता।

7:21 का समय रहेगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब मीडियम वेव पर यह प्रसारण यहीं विराम पाता है। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत।

मुकुल सोनी की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। पेश है चित्रपट संगीत।

चिन्मय श्रीप्रदा और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का था और फिल्म थी टू स्टेट्स। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है दावते इश्क, आवाज़ सुनिधि चौहान और जावेद अली की है, संगीत साजिद वाजिद का।

अंकित तिवारी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे एक विलन फिल्म से लिया गया ये गीत। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत अंकित तिवारी का था। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया।

मोहिन साबरी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे शाहीन इकबाल का लिखा गीत। संगीत संजीव श्रीवास्तव का था और फिल्म थी रिवॉल्वर रानी। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी भोपाल है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अनमोल धरा।

0: नमस्कार साथियों, अनमोल धरा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज नागर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हमारा आज का विषय है पिघलते ग्लेशियर, खतरे में दुनिया। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इपको भोपाल के मुख्य वैज्ञानिक श्री लोकेन ठक्कर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं?
1: देखिए, जैसे सतपुड़ा के पहाड़ हैं, विंध्याचल है, ये पहाड़ पत्थर के हैं। लगभग ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के हैं और ये वहाँ बनते हैं जहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है और बर्फ़ गिरती है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल से बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ पिछले साल की बर्फ़ पिघल नहीं पाती और फिर नई बर्फ़ आ जाती है। इस तरह से एक किस्म का पहाड़ बनता जाता है और ये पहाड़ ग्लेशियर्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय में हैं, यूरोप में हैं, देश के दुनिया के कई जगह पर ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स हमारे पूरे जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसी भूमिका आप समझिए कि तटीय क्षेत्रों की है, जैसी भूमिका मरुस्थल की है, वैसी भूमिका इन ग्लेशियर्स की है, जिसको हम हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। हिम मतलब बर्फ़, बर्फ़ की नदियां हैं, ये जमी हुई नदियां, ऐसी समझ लीजिए आप कि जमा हुआ बर्फ़, हज़ारों करोड़ों साल का जमा हुआ बर्फ़ है और ये हमारे पूरे क्षेत्र को के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है।
0: सर, पर्यावरण संतुलन में इनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हमारी बहुत सारी जो मानसून की जब हवाएं चलती हैं तो ये हिमालय से टकरा करके बारिश ठंडी होती है और फिर बारिश होती है। तो आप समझिए कि अगर हमारे पर्यावरण का नियंत्रण करना है, अगर हमारे जलवायु को नियंत्रित करने का, इन सब में जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: तो नदियों के अस्तित्व के लिए ये कितने ज़रूरी हैं?
1: देखिए, भारत में जो नदियां हैं वो एक तो ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर से पिघलने से आती हैं
0: जी।
1: जैसे हमारी सबसे देश की सबसे पूज्यनीय, सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा
0: जी।
1: ये ग्लेशियर फैड रिवर है। ग्लेशियर्स के, क्योंकि बर्फ़ है तो पिघलती तो है
0: जी।
1: जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ग्लेशियर्स ऐसे बनते हैं कि साल भर में जब भी बर्फ़ गिरी तो वो जमती जाती है।
0: हाँ।
1: और कुछ समय से होता है जब बर्फ़ नहीं गिर रही है लेकिन फिर से बर्फ़ गिरना शुरू होती है, तो पिघलती कम है, जमती ज़्यादा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये ग्लेशियर्स बनते जाते हैं, लेकिन पिघलते हैं ग्लेशियर्स, क्योंकि जब कभी थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा तापमान बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही कई नदियों का जन्म होता है। कई नदियों में जो अविरलता है, उनमें जो प्रवाह है, वो ग्लेशियर से के पिघलने से आता है। तो ये बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया गंगा नदी, उसके दूसरी जो ऐसे हमारे प्रदेश की जो जीवन रेखा है नर्मदा नदी, वो ग्लेशियर फैड रिवर नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि वो तो निकलती है अमरकंटक से, वहाँ कोई ऐसी बर्फ़ नहीं जमती है। तो नदियाँ ग्लेशियर फैड भी हैं और बगैर ग्लेशियर के भी पहाड़ों से, सतपुड़ा की, विंध्याचल से कई नदियां हमारे प्रदेश में जो हैं, बेतवा है तो क्षिप्रा है तो चंबल है, महानदी है, सोन है, नर्मदा है, ये सारी नदियां ग्लेशियर फैड नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है जो हमारी पहाड़ों से निकलने वाली,
0: यमुना नदी है,
1: यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, यमुनोत्री भी, लेकिन फिर भी इसके अलावा आप देखें तो जो पंजाब में प्रांत से ऊपर नदियां हैं, चाहे वो रेवा हो, सतलज हो, ब्यास हो, सिंधु हो, ये सारी नदियां ग्लेशियर फैड रिवर्स हैं
0: जी। इनमें साल भर पानी रहता है,
1: इनमें साल भर पानी रहता है, अविरलता रहती है क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है, इसमें प्रवाह बना रहता है। इसलिए जीवन, नदियों के जीवन, देखिए नदियों की जो दो महत्वपूर्ण नदियों के गुण हैं, एक है अविरलता, दूसरी उसकी निर्मलता
0: जी।
1: मतलब पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो और पानी इतना हो कि उसमें बहाव हो, उसमें अविरल रहा है, धार टूटे ना
0: जी।
1: तो अगर ये दो चीज़ें तो नदी जिंदा है, वरना फिर नदी में प्राण की कमी, कहीं उसमें जीवन की कमी हो जाती है।
0: सर, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं?
1: देखिए, ग्लेशियर्स दो प्रकार के होते हैं, जिनको एक हम कहते हैं वैली ग्लेशियर्स और दूसरा कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं वो पहाड़ों में की घाटियों में बहते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में है या ग्रीनलैंड में है। अब आपने कहा कि कौन से कारण हैं जिनसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आप समझिए बर्फ़ पिघलने का कारण क्या होता है। सिंपल है कि बर्फ़ के तापमान से ज़्यादा तापमान कहीं होगा तो बर्फ़ पिघलेगी। फ्रिज में तो बर्फ़ नहीं पिघलती, लेकिन बर्फ़ को हम जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि तापमान में कहीं ना कहीं अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और तापमान में, जो पृथ्वी के तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल कारण है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि तपती वसुंधरा, तो ये वसुंधरा क्यों तप रही है, ये कैसे तप रही है, इसका मूल कारण है कि जितने हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्सल्फ्राइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये या बहुत सारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जिनको हम सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में जा कर के पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। और पृथ्वी के सतही तापमान में जब वृद्धि होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके साथ क्या हो रहा है कि समुद्र का जो पानी है उसका भी तापमान बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं ये समुद्र में हैं, तो क्या होगा कि जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स के बड़े बड़े पहाड़, अगर आप टेलीविजन पर या कहीं वीडियो में देखें तो आपको दिखाई देंगे कि आपको बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो टूट टूट करके समुद्र में आ रहे हैं। और समुद्र का तापमान बढ़ गया है
0: जी,
1: तो उससे क्या हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो समुद्र के तापमान के बढ़ जाने से ये बर्फ़ जल्दी से पिघल रही है, मतलब अगर बर्फ़ को हम गर्म पानी में डालेंगे तो जल्दी से पिघलेगा। तो समुद्र का तापमान बढ़ गया, उसमें ग्लेशियर्स गए तो बहुत जल्दी पिघलने लगे, उससे क्या हो गया कि और ग्लेशियर्स टूटने लगे। और समुद्र का एक्सपेंशन, जिसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, समुद्र भी पानी जब गर्म करते हैं, आप अपने घर में पानी गर्म करेंगे तो एक बर्तन में पानी गर्म करने से वो फैल जाता है, उसमें एक्सपेंशन होता है। तो समुद्र एक्सपैंड हो रहे हैं और समुद्र अपनी सीमा लांघ करके आसपास के इलाकों में घुस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, जो समुद्री आइलैंड्स हैं, वो डूब गए हैं, या उनके ज़मीन में समुद्र बहुत तेज़ी से इनग्रेस कर रहा है, घुस रहा है, उससे उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है।
0: जैसे सर आपने बताया, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और जो तटीय इलाके हैं वो डूब रहे हैं
1: जी,
0: इसके अलावा पर्यावरण और हमारे जीवन पर सर इसका क्या प्रभाव है?
1: देखिए, हम यहाँ मध्य प्रदेश में तो ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सीधे रूप से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन जो लोग, जैसे मैंने कहा, समुद्र के पास में रहते हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो लोग ग्लेशियर फेड रिवर्स पर, जिनका जीवन, जिनकी आजीविका निर्भर है, उन लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर समुद्र से ग्लेशियर्स, पहाड़ों से ग्लेशियर्स अगर पिघलने लगे तो नदियों में जल की मात्रा, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसको वहन, पानी को वहन करने की जो क्षमता है उनकी, उस क्षमता से अगर ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ आएगी और बहुत सारे लोग उसमें परेशान होंगे, एक आपदा आएगी। और कहने को तो लगेगा कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये मानव निर्मित आपदा है
0: जी। सर, अंत में यह जानना चाहेंगे कि हम इस संकट से कैसे निपट सकते हैं?
1: ग्लेशियर्स को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए हमको जलवायु परिवर्तन और अपनी पृथ्वी के तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। और उसका एकमात्र वही कारण है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाएं, हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारा पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़े। आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान अभी करीब 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि पिछले, जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है तब से लगभग 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। सारी दुनिया ने पेरिस समझौते के समय एक संकल्प लिया था कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान को दो डिग्री से ज़्यादा अब नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि ये तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े, मतलब 14 से 15.5 या अधिकतम 16 डिग्री हो। लेकिन जिस तरह का उत्सर्जन, मुझे कहने में ये संकोच भी है और दुख भी है कि जिस तरह का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सारी दुनिया में हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि हमने संकल्प जो लिया था पेरिस समझौते में हम उसको पूरा कर पाएंगे। आज ऑलरेडी दुनिया जो है 2 डिग्री से अधिक तापमान की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। हमको तत्काल कुछ ऐसे, सारी दुनिया को तत्काल ऐसे प्रयास करने होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको हम रोकें, और वो जब रुकेगा तभी ग्लेशियर्स के पिघलने की जो चुनौती है, जो समस्या है, जो एक बड़ी विशाल हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगा है, वो रुक पाएगा, तभी हम अपने अस्तित्व को, अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे।
0: सर, सरकार तो इस दिशा में कार्य कर ही रही है, आमजन क्या करे कि वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके?
1: देखिए, हर बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि पर्यावरण पर उसका होने वाला प्रभाव कम से कम हो, जिसको हम फुटप्रिंट कहते हैं कि मेरा अपना फुटप्रिंट कितना है, क्या मैं जितना मेरी आवश्यकता है क्या मैं उससे अधिक चीज़ों का उपभोग कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी, चाहे वो बिजली का उपयोग हो, पानी का उपयोग हो, ऊर्जा के साधनों का उपयोग हो, कोई भी चीज़ है, आवश्यकता से अधिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा के उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम इस पूरी चुनौती में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे।
0: सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अनमोल धरा। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेमंत कुमार के गाए कुछ गीत।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने हेमंत कुमार के गाए कुछ गीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे धारावाहिक पंचतंत्र की तीसरी कड़ी।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
2: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
3: पानी, पानी, पानी।
2: ये लो पानी, लो लो। हाँ, आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?

0: मित्र, स्वस्थ तो हूँ पर चैन नहीं है।
1: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
0: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
0: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
1: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
0: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
1: ओ,
0: मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
1: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
0: क्या क्या कह रहे हो रथकार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
1: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
2: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
1: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
2: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
3: कौन कौन है वहां झरोखे पर?
0: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
3: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, आप पवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
0: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहाँ चला आया।
3: यदि यही बात है तो भगवान चलिए, हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
0: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं। और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
3: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
2: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातः काल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर-पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
4: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
5: अरे अरे तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था। अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
4: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
5: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए। वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
4: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं। चलो, अब विलंब करना व्यर्थ है।
5: महारानी की जय हो।
6: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
5: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
6: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
4: बात ये है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है। आपकी आज्ञा क्या है?
6: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
5: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य न हो।
6: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
4: महारानी,
6: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
5: महारानी,
7: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा, किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया, क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
3: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
8: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
7: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
8: बोल, सत्य बोल।
3: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
7: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है, स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी, हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
3: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था, मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
6: महाराज, महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
7: आप सत्य कहती हैं महारानी। आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखे महाराज, वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गए। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।

राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री,

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं। ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
0: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है? तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
1: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा? कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
0: सोचता हूँ दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध करुण पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे। और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या? प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातःकाल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें। मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
1: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूँ। उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए?
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव। आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
4: जी।
3: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह आनंद ही आनंद है, के तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका, प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम, आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जमाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
3: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया।

0: ना शोर दिन रात, ना शोर दिन
1: रात,
0: ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इससे ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

दोस्तों, आजकल ड्रोन सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत जरूरी हो गए हैं। ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश में अच्छी कमाई और तेज तरक्की संभव है। कैसे, जानते हैं हमारी आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि में किसान ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। डिलीवरी कंपनियां भविष्य में ड्रोन से सामान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ या भूकंप के समय ड्रोन से बचाव कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिल्म निर्माण, रक्षा, निगरानी, मैपिंग और सोलर प्लांट जांच जैसे कामों में ड्रोन का बड़ा रोल है। तो इसमें क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, इसमें है ड्रोन पायलट, ड्रोन ट्रेनर, ड्रोन टेक्नीशियन और रिपेयरिंग, डेटा एनालिस्ट जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ड्रोन सर्विस कंपनी शुरू करने वाले उद्यमी। दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 बनाकर इस क्षेत्र को आसान बना दिया है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति DGCA से लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकता है। कई ITI, पॉलिटेक्निक और प्राइवेट संस्थान सस्ते कोर्स चला रहे हैं। इसमें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमाई की बात करें तो शुरुआत में 20,000 से 40,000 रुपए महीना आसानी से मिल सकता है। अनुभव के साथ 1,00,000 रुपए तक सैलरी या प्रति प्रोजेक्ट अच्छी कमाई संभव है। गांव कस्बों में भी कृषि ड्रोन सर्विस देकर आप अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, 2025 से 2030 के बीच ड्रोन इंडस्ट्री भारत में हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली है। इसलिए अगर आपको टेक्नोलॉजी, उड़ान और नई चीजें सीखना पसंद है तो ड्रोन क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज पढ़ाई के साथ साथ ड्रोन कोर्स करके आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेहनत और सही ट्रेनिंग के साथ ये क्षेत्र न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा भी बनाएगा। तो अब आप भी अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान के गाए हुए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित जीवन शैली मतलब बैलेंस्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो गई है। संतुलित जीवन का मतलब है काम, आराम, स्वास्थ्य, परिवार और खुशी के बीच सही तालमेल बैठाना। जब हम इन सब को संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखते हैं, तब हम स्वस्थ, खुश और सफल रहते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग हो, योगा हो या फिर जिम। साथ में अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा जंक फूड से बचें। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने सुना होगा, तन चंगा तो मन चंगा। इसके बाद आती है आपकी मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अब क्योंकि तनाव आजकल बहुत आम है, तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान मतलब मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुनें या अपना कोई शौक पूरा करें। और हाँ, निगेटिविटी से दूर रहें और छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें। अब है आपके काम और आराम के बीच का संतुलन मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, काम तो जरूरी है, लेकिन काम के अलावा परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से मिलें और छुट्टियां मनाएं। ऑफिस के बाद फोन बंद करके परिवार के साथ डिनर करें। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, वरना बर्नआउट हो जाता है। आपके रिश्ते और सामाजिक जीवन मतलब रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। माता पिता, लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताएं और जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और ये सब होगा समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट से। आप हर दिन का प्लान बनाएं, जरूरी काम पहले करें और नहीं बोलना सीखें। दोस्तों, हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने वाले लोग ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं और बीमारियों से दूर भी रहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो अपनी लाइफ को मजे से जीते हैं। तो जब वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जीते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। रोज एक नई अच्छी आदत डालें। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें, बस कोशिश करें कि जीवन के हर पहलू को थोड़ा थोड़ा समय मिले, क्योंकि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब हम बॉडी, माइंड, वर्क एंड रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखते हैं, तब लाइफ मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाती है। तो आइए आज से ही हम सब मिलकर संतुलित जीवन मतलब हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। और अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

0: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं शिवांजलि तिवारी से आकाशवाणी के 90 साल होने पर हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश।
1: मैं तो बचपन से ही इसके साथ बड़ी हूँ। पुराने जमाने में टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, तब गांव कस्बे में आकाशवाणी ही सबसे बड़ा साथी था। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आकाशवाणी झूठ नहीं बोलता। आज के फेक न्यूज वाले समय में तो एक कितनी बड़ी बात है। 1947 की आजादी, 1962 का चीन युद्ध, 1971 की जंग, सब कुछ आकाशवाणी ने ही बताया। अब तो स्मार्टफोन आ गए, रील्स ने सब बदल दिया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का अपना स्वाद है। लोकल भाषाओं में कार्यक्रम, क्षेत्रीय गाने, संस्कृति, बातें, ये सब मोबाइल वाले एप्स में कहाँ मिलेगा। मेरी माँ अभी भी दोपहर को महाभारत या पुरानी कहानियाँ सुनती है, शाम को युवावाणी, महिला सभा, चौपाल, गृहलक्ष्मी, यह सभी कार्यक्रम हमारा पूरा परिवार सुनता है। 90 साल में आकाशवाणी ने बहुत कुछ देखा है, ट्रांजिस्टर से लेकर अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक। लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है विश्वसनीयता और भारतीयपन। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां रेडियो आज भी राज करता है। 90 साल मुबारक हो आकाशवाणी। उम्मीद है अगले 90 साल भी आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आज इस तरह से आपसे बातें करके आपका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप शिवांजलि तिवारी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आकाशवाणी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोड़ते चित्रकला के बारे में। दोस्तों, मोड़ते चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना जीवित चीजों के चित्र बनाता है। इसमें फूल, फल, किताबें, बर्तन, बोतल, खिलौने या घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सजाकर उनका चित्र बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ पेंटिंग कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के आकार, रंग, प्रकाश और उनके छाया को सुंदर तरीके से दिखाना होता है। मोड़ते चित्रकला सीखने से बच्चों और कलाकारों की देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब कोई कलाकार किसी वस्तु को ध्यान से देखता है, तब उसे उसकी बनावट, रंग और आकार का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण है कि ये चित्रकला कला सीखने की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस कला में सबसे इम्पोर्टेंट बात है संतुलन और सजावट। कलाकार पहले वस्तुओं को अच्छे से सजाता है, फिर पेंसिल से हल्की रूपरेखा बनाता है। उसके बाद रंगों का उपयोग करके चित्र को आकर्षक बनाया जाता है। प्रकाश और छाया का सही उपयोग चित्र को जीवंत बना देता है। दोस्तों, मोड़ते चित्रकला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एकाग्रता भी सिखाती है। इस कला को बनाने में समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मन को शांत करने में भी ये मदद करती है। आज के समय में स्कूलों, आर्ट कंपटीशन और प्रदर्शनियों में मोड़ते चित्रकला का विशेष महत्व है। कई कलाकार इस कला के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाते हैं। कहा जा सकता है कि मोड़ते चित्रकला एक सरल, सुंदर और उपयोगी कला है। ये हमें साधारण वस्तुओं में भी सुंदरता देखने की प्रेरणा देती है और हमारी कला प्रतिभा को निखारती है। ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanirivaa@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां

0: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:33 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आदमी सड़क का फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है और संगीत दिया है रवि ने।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म दूसरा आदमी से, आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में कहा कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ वंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहाँ शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और चट और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 ईडन गार्डन्स के केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति, विशेष भेंट वार्ता, यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य। इस विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष और उसका स्वर्णिम सफर, ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का विषय है और जो इसके साक्षी बन रहे हैं, साक्षी रहे हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त खुशी का विषय हो जाता है। और उस अतिरिक्त खुशी में भी थोड़ी सी खुशी और ऐड कर रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अनिल श्रीवास्तव जी। आप यूं तो रिटायर्ड ADP रहे हैं, लेकिन इनका अनुभव आकाशवाणी के साथ लगभग 5 दशकों का है। और जब भी अनिल श्रीवास्तव जी को याद किया जाता है तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक बेहतरीन कमेंटेटर के रूप में सबसे पहली छवि बनती है। आप कवि हृदय भी रखते हैं और बढ़िया कविताएं करते हैं और कला के कई रंगों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया।
1: और आपका आना मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उन पुराने दिनों की तरफ ले जा रहा है जहां से हम लोगों ने अपने नौकरी की शुरुआत की और बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ आपसे जानकर चीजों को आगे बढ़ाया है। लेकिन हम उससे भी पहले समय की बात करना चाहेंगे कि रेडियो के साथ आपका जो साथ था और जो 5 दशक का एक लंबा समय है, इसकी शुरुआत क्या किसी खास घटना या किसी खास शौक से जुड़कर हुई या ये एक सहज प्रक्रिया थी?
2: जी हाँ, आपने बिल्कुल मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया, क्योंकि जब मैं छोटा था, छोटा मतलब बहुत बच्चा नहीं था, करीब 14-15 साल का था, तो मुझे रेडियो सुन के ऐसा लगता था जैसे कि मतलब मैं सामने से किसी को सुन रहा हूँ और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर बाद में जब ट्रांजिस्टर आ गया तो मेरे पिताजी ने एक ट्रांजिस्टर खरीद के मुझे दिया और उस ट्रांजिस्टर को मैं रजाई के अंदर रख कर रात में सुना करता था। जब BSc पास किया, मैंने ग्रेजुएट हो गया जी। तो मैं ऐसे ही मार्केट में अपने एक फ्रेंड की दुकान में बैठा था तो वहाँ एक अनाउंसमेंट आ रहा था रेडियो पर कि कैजुअल न्यूज़ रीडर, कैजुअल कॉम्पियर युववाणी के लिए चुने जा रहे हैं जी। तो मैंने एक कॉपी का पेज फाड़ के, तो उस पेज पर मैंने एक छोटा सा आवेदन लिख के स्टेशन डायरेक्टर को यहाँ पर भेज दिया।
1: अच्छा।
2: और मैं भूल भी गया, मुझे अचानक कॉल आया कि आप वॉइस टेस्ट के लिए आइए और मुझे खुशी है कि मेरा वॉइस टेस्ट और रिटर्न एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। पहले तो मैं कैजुअल कॉम्पियर बना युववाणी का, कैजुअल अनाउंसर भी रहा कुछ दिन, फिर कैजुअल न्यूज़ रीडर था। और उस समय शुरुआत हुई थी MSc की, MVM कॉलेज भोपाल में मैं पढ़ता था, तो मैं BHEL से साइकिल पर आया करता था MVM, और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो 2 बार प्रसारित होती थी, सुबह और शाम को, जैसे आज भी होती है। तो मैं दोनों बुलेटिन के लिए आता था और साइकिल से सुबह सुबह यहाँ पर, फिर कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से यहाँ आता था, फिर यहाँ से घर जाया करता था। तो वो एक जो अपने आप में एक चाहत थी ना, अपने आप में एक इच्छा थी, वो पूरी हो रही थी। इसलिए ना कहीं थकान होती थी, ना कहीं कुछ। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जो पहला कैजुअल कॉम्पियर में मुझे 10 रुपये रोज मिलते थे, 14 दिन की बुकिंग एक साथ होती थी। अच्छा, तो वो 140 रुपये जो है ना 1972 में, मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत थी। ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत अमीर हो गया। अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, मैं रोज उनको कुछ खिलाता पिलाता रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे पास अपने पैसे हैं। और धीरे धीरे वो करके जब मैं न्यूज रीडर बना तब 22 रुपये रोज था
1: जी जी।
2: तो ये समय जो है मैंने देखा और इसी से मेरी शुरुआत हुई।
1: यहाँ पे 2 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप भोपाल में ही रहे, यहीं से पढ़ाई की आपने
2: जी,
1: तो भोपाल और आकाशवाणी का सफर लगभग लगभग साथ चला

0: है
1: जी,
0: तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं?
1: देखिए अमिता जी, मैं आपको बताऊं कि मैं जुड़ा रेडियो से वो भोपाल से, और जो मैंने अवकाश प्राप्त किया वो भी भोपाल से
0: जी।
1: तो भोपाल का अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में रहा है। लेकिन इस बीच मैं पूरे भारत के 10 केंद्रों पर ट्रांसफर हुआ
0: जी।
1: 10 केंद्रों में शिमला भी था, जलगांव भी था, गोवा भी था, जबलपुर भी था, अंबिकापुर भी था। इस तरह से हर क्षेत्र के कई अच्छे अच्छे रेडियो स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स वाले स्टेशन वहाँ पे मैंने सर्व किया
0: जी।
1: और मुझे बड़ी खुशी है कि हर जगह अलग अलग जगह होने की वजह से अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, तो उससे मैं जुड़ता गया, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमेशा होता है। और वही कारण है कि आज भी घूमने की इच्छा मुझे हमेशा रहती है कि भारत के हर क्षेत्र को मैं घूमूं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र हो, जो भी क्षेत्र हो। तो आज भी वो भगवान की दया से वो बरकरार है और मैं लगातार घूमने में विश्वास करता हूँ।
0: वैसे भी शायद ऐसा कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि आप एक किताब के 20-22-50 पेज पढ़िए और 1 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए, आपका अनुभव लगभग बराबर का
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: सही आपने कहा है कि ये ऐसा ही है। और ख़ास तौर से जो गोवा का अनुभव था मेरा, और जहाँ मैं सबसे लंबे समय तक रहा, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 10 साल गोवा में रहा।
0: अच्छा,
1: 10 साल गोवा में रहने की वजह से कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी का जो वहाँ पे वर्चस्व है, उससे मैं जुड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई यहाँ की संस्कृति पूरे भारत से अलग है, लेकिन फिर भी सब में एकता का भाव जो है वही है। और जो चीज़ आज हम हर राज्य में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम UCC के नाम से जानते हैं
0: जी,
1: गोवा ऐसा प्रदेश है जहाँ की शुरू से UCC लागू है
0: जी।
1: तो ये एक ऐसा है कि जिसको कि देख के आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उनको भी पूरे देश में लागू करने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा लगता है।
0: ये फ़ायदा तो बहुत बार समय के साथ ज़्यादा मुखरित हो पाता है
1: जी।
0: लेकिन आपसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, या यूं कहिए कि ये फ़ायदा लेना चाहेंगे कि 72 से लेके 2026 तक का जो वक्त है
1: जी,
0: इसमें आपने 10 रेडियो स्टेशंस
1: जी
0: का अनुभव भी पाया है और अलग अलग पदों पर कार्य किया है, तो यदि हम क्रमिक बदलाव की बात करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें थीं जो समय के साथ बदलती गईं और उसमें हमारे लिए क्या कुछ और बेहतर हुआ, हमारे लिए यानी रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से?
1: देखिए, रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से यदि कहा जाए तो जिस समय मैं आया उस समय केवल पत्रों पर आधारित ही जो प्रतिक्रियाएं थीं वो हम लोग प्राप्त करते थे
0: जी।
1: और उस समय भी हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि पूरे पूरे कमरे के जो रैक्स होते थे वो पूरे पूरे पोस्टकार्ड से भरे रहते थे
0: जी।
1: तो हमें ये छांटना मुश्किल होता था कि ये कौन से पत्र हम शामिल करें, कौन से नहीं शामिल करें। लेकिन ये क्रम जो है काफ़ी सालों तक चला
0: जी।
1: और हर क्षेत्र में, चाहे वो जिस केंद्र में भी मैं रहा, ये करीब करीब 80s-90s तक ये क्रम चलता रहा।
0: हालांकि अभी भी अभी ये
1: भी
0: क्रम
1: है,
0: चल रहा
1: अभी
0: है,
1: भी है,
0: लेकिन पर एक अब, धार के रूप
1: जी
0: में।
1: हाँ, अब जी। सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि लोग ये सोचते हैं कि पत्र लिखने से अच्छा है कि हम अपनी बात तुरंत पहुंचा दें। तो इस कारण से ये एक बदलाव देखा। दूसरा, आज हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं
0: जी।
1: पहले हम लोग जिसको आउटसाइड ब्रॉडकास्ट कहते थे, ओबी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके जाया करते थे, जो आज आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो है ले जाना पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के लिए। किसी भी व्यक्ति की यदि बाहर रिकॉर्डिंग करनी है, वो आने में सक्षम नहीं है स्टूडियो, तो हमें वो मशीनें लेके जाना पड़ता था और उनकी रिकॉर्डिंग करते थे और फिर प्रसारित करते थे
0: जी।
1: मैं आपको ये बताऊं कि 72 से 76 तक तो मैं कैजुअल रहा, लेकिन 76 से मैं नियमित आकाशवाणी का एम्प्लॉय हो गया था और मेरी पहली पोस्टिंग अंबिकापुर में हुई थी, जो बिल्कुल ट्राइबल जगह थी और उस समय तो बिल्कुल ही ट्राइबल थी। मैं बल्कि मजाक में कहा करता था ये 250 सड़क का शहर है क्योंकि वहाँ 2 सड़क मेन थी और एक छोटी सी सड़क थी जिससे आकाशवाणी का रास्ता था। तो ये 250 सड़क का शहर जो है जहाँ मैं आया हूँ, और भोपाल से ही गया था, तो शुरू में तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, क्योंकि वहाँ लोग सोच नहीं सकते थे कि आकाशवाणी भी यहाँ आ
0: सकता है।
1: हम लोग जब सड़क पे आकाशवाणी के कुछ लोग जाया करते थे तो लोग दरवाजा खोल खोल के देखा करते थे, वो देखो आकाशवाणी के लोग जा रहे हैं। और जिस दुकान में भी घुसते थे उस दुकान में इतनी

0: खातिर होती थी कि यदि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं भी है तो भी खरीदनी पड़ती थी।
1: अच्छा,
0: तो ये जो है एक हम लोग को बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ पे मिला। और वहाँ जब 77 में मैं अंबिकापुर में था तो पहली प्रधानमंत्री की यात्रा वहाँ मोरारजी देसाई जी की थी।
1: अच्छा,
0: जशपुर एक जगह है अंबिकापुर के पास, तो जशपुर में वो आ रहे थे तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। मैं एक साल पुराना था तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक पैक्स इंचार्ज भी साथ में थे और 3 दिन पहले जशपुर की यात्रा शुरू कर दी थी हम लोगों ने वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, जंगलों से होके जाना पड़ता था। तो वहाँ जब पहुँचे हैं, फिर रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पर उनकी, तो वो मेरी पहली एक VIP रिकॉर्डिंग थी जो मुझे हमेशा याद रहती। उसके बाद तो मैंने लाल किला और राजपथ से जब कमेंट्री की तो सारे ही प्रधानमंत्रियों को देखा सामने से, लेकिन वो जो पहली हमने जो कवरेज किया था वो एक अपने आप में एक अलग अनुभव था।
1: अनुभवों की इस यात्रा में ऐसी ही कोई और घटना या कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपकी कार्य प्रणाली को नई दिशा देता हो या एक नए मोड़ से गुजरा हो, कुछ ऐसी याद है? और
0: देखिए, यादें बहुत हैं
1: जी,
0: लेकिन जब अंबिकापुर से मैं जबलपुर आया तो जबलपुर उस समय बहुत बड़ा शहर लगता था।
1: अच्छा,
0: और वहाँ की चकाचौंध, जब मैं अंबिकापुर जाया करता था तो स्टेशन से देखा करता था ट्रेन से कि कितना बड़ा शहर है। और जब वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई अंबिकापुर के बाद में, तब वहाँ का एक अनुभव अलग था। वहाँ पे लोग स्टूडियो में आराम से आया करते थे और बड़े बड़े हरिशंकर परसाई जैसे हास्य लेखक, उनकी रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता था और भवानी प्रसाद जी का रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता था। इस तरह जो भी लोग आते थे जबलपुर, वहाँ पे मेरे साथ में मेरे साथी लक्ष्मेंद्र चोपड़ा भी उस समय मेरे ही साथ थे, तो हम दोनों मिल के जो हैं वो बहुत प्रोग्राम बनाया करते थे। और बदलाव की दृष्टि से कहूँ तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था बोलता खत।
1: अच्छा,
0: बोलता खत में ये था कि हम रोज किसी भी एक रिश्ते के खत लेते थे, जैसे माँ बेटे को लिख रही है या बेटा पिता को लिख रहा है या बहन को भाई लिख रहा है या जीजा साली को लिख रहा है या पत्नी पति को लिख रही है। तो वो बोलता खत में पत्र जो है वो 2 मिनट का पत्र होता था।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल जैसे कोई उस समय चिट्ठी आया करती थी, जिस तरह आप धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ते हैं ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, इस तरह से जो पढ़ते हैं ना, उसी स्टाइल में वो प्रोग्राम मैं पेश करता था।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उससे संबंधित एक गाना, तो वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या महत्व था पत्रों का उस समय, कि उससे संबंधित हमें एक कार्यक्रम भी रखना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था लोगों के दिल में भी, और लोग उससे जुड़े बहुत ज्यादा।
1: श्रोताओं को प्रसारण से जोड़ना, श्रोताओं को आकाशवाणी से जोड़ना और जुड़े रखना। जुड़ते तो श्रोता बहुत तेजी से हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो चीज लगातार आपके घर तक पहुंच रही है, उसने अपनी पैठ बना ली है, वो जुड़ाव तो रहता है। लेकिन ये जुड़ाव बरकरार रहे, उन्हें नया कुछ मिलता रहे, उन्हें उनके आसपास का मिलता रहे और वो बदलाव के साथ भी चीज़ों को महसूस करते रहें, इस सारी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किस तरह की कार्य प्रणाली हो और किस तरह की एक सोच होनी चाहिए आज भी?
0: देखिए, उस समय जो एक नई प्रणाली शुरू की गई थी 2-वे ट्रांसमिशन, आज हम फोन इन प्रोग्राम बोलते हैं जैसे, या हम दूसरी तरह से लोगों से बात कर सकें, तो उस समय ये प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो लोगों को बहुत पसंद आया कि केवल ये नहीं है कि रेडियो अपनी बात कह रहा है। और किसी ने कहा भी है कि कम्युनिकेशन वो नहीं होता जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन वो होता है जो हम श्रोता को समझा पाते हैं या श्रोता समझ पाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब ये 2-वे ट्रांसमिशन का प्रचलन शुरू हुआ तब ये बहुत पसंद किया जाने लगा रेडियो में। लोग इंतजार करते थे कि हम अपनी बात जो है कैसे कहें, किसी एक विषय को भी कभी कभी रख देते थे, कभी कोई मनोरंजन की बात को विषय रख देते थे, कभी किसी की कोई भी समस्या हो उसकी बात हम करते थे और फिर उसका हम सेग्रीगेशन करते थे और बताते थे इस तरह की समस्या का समाधान आपको इस दिन हम बताएंगे, इस तरह की समस्या का समाधान हम आपको इस दिन बताएंगे, ताकि लोग हर दिन जुड़े रहें रेडियो से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। आज हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम था उस समय के हिसाब से, लेकिन उस समय चूंकि वही साधन थे, जैसे आज हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, उस समय हम पत्रों के बगैर नहीं रह सकते थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था जो आज भी कई जगह चल रहा है, बल्कि विविध भारतीयों में फोन इन प्रोग्राम आज भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था।
1: प्रोग्रामर की दृष्टि से वो क्या चीज़ आप महसूस करते हैं जो आज के समय में होनी चाहिए और जो हमारे इस गौरवशाली इतिहास को और ऊंचाइयां दे सकती है?
0: देखिए, डेविड विलियम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सोशल साइंटिस्ट
1: जी।
0: उन्होंने कहा था, यदि आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को हल्का रखना चाहते हैं, यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो रेडियो सुने।
1: अच्छा,
0: तो ये एक बात जो है वो 100 साल पहले कही गई है, मतलब रेडियो के आविष्कार के जस्ट बाद में तब उन्होंने कहा था, क्योंकि आपको पता है कि मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का आविष्कार किया
1: जी।
0: शुरुआत रेडियो तरंगों की तो 1887 से हो गई थी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो केवल समुद्र में संदेश पहुंचाने के लिए होता था। जब रेडियो का आविष्कार हुआ तब अमेरिका और फ्रांस ने इसका प्रसारण शुरू किया, खासतौर से सबसे पहले एफिल टावर से म्यूजिक प्रसारित किया गया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेडियो से जुड़ाव की इम्पोर्टेंस जो है वो कब समझी गई थी, और आज हम यदि उसी रेडियो को उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं तो आज तो हमारा मोटो भी यही है कि मनोरंजन भी होना चाहिए, सूचना भी होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें जो हैं उसको ही एक तरह से आगे बढ़ा रही हैं।
1: शिक्षा और सूचना की बात यदि हम करते हैं और मनोरंजन की भी कहिए, तो मनोरंजन थोड़ा सा व्यक्तिगत होता जा रहा है क्योंकि स्मार्टफोन सबके हाथ में है और साधन बहुत सारे हैं
0: जी।
1: और सोशल मीडिया के कारण सूचनाओं का भी एक विस्फोट है
0: जी।
1: तो इस दौर में वो क्या चीज़ हो सकती है जो प्रभावी मनोरंजन या स्वस्थ मनोरंजन दे और सटीक सूचनाएं समय तक पहुंचा सके?
0: देखिए, सबसे पहले हमें अपना विश्वास श्रोताओं के मस्तिष्क में बनाए रखना होगा या बनाना होगा
1: जी।
0: अगर कहीं लगता है कि कम हो रहा है,
1: यदि
0: वो विश्वास बना रहेगा तो वो जो हम सूचना प्रदान कर रहे हैं उसी पर विश्वास करेंगे। आज इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज देख रहे हैं कि यदि लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है तो आप खोलेंगे तो आपको घुटनों के दर्द की ही सारी दवाएं मिल जाएंगी। अब वो कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन यदि आकाशवाणी से कोई चीज़ प्रसारित होगी और उसमें जो चीज़ बताई जाएगी उस पर जो विश्वास लोग करेंगे, तो ये विश्वास बनाए रखने का जो काम है ये हमें अपना बनाए रखना चाहिए। और हमें किसी से एक होड़ लगा के कंपटीशन या प्रतियोगिता में नहीं शामिल होना है
1: जी।
0: लोग हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम जो हैं वो अपनी तरह से प्रसारण करें, उसी से हमारी पहचान बनेगी और वही पहचान हमें आगे ले जा सकती है।
1: आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका कमेंट्रेटर वाला एक पक्ष था, उस पक्ष की तरफ जुड़ने की कोई खास वजह रही या ये आपके शौक का ही विस्तार था और उस प्रक्रिया में आप शामिल हुए?
0: नहीं, ये एक नकल एक्चुअली मैं शुरू से नकल करने की सोचता था जब वो कोई बोलता था रेडियो पे, खासतौर से उस समय जसदेव सिंह वगैरह की आवाज़ सुनते थे तो वो ऐसा लगता था कि मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अकेले में बहुत बोलता था। लेकिन जब मैं शिमला में 1988 में गया, शिमला मेरी पोस्टिंग हुई जलगांव से, तो वहाँ एक स्टेशन डायरेक्टर थे प्रेम प्रकाश सेतिया
1: जी,
0: आज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमसे जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम बोल सकते हो। तो वहाँ का स्टेटहुड डे था हिमाचल प्रदेश का
1: जी जी,
0: कांगड़ा में, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ वहाँ बोलो और मैं देखता हूँ जो होगा मैं निपटूंगा। उन्होंने जो विश्वास दिलाया उससे मेरे मन में और विश्वास आया
1: जी।
0: और मैंने वो कमेंट्री की और बहुत अच्छी रही, और वो जब कमेंट्री रिकॉर्ड होके उन्होंने कहा मैं इसको दिल्ली भेज रहा हूँ, दिल्ली भेजा तो मैं नेशनल कमेंटेटर के रूप में ही पहली बार में ही अप्रूव हो गया।
1: अच्छा,
0: तो उसके बाद तो फिर मौकों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरा ये था कि मैं केवल नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री करता था और उसमें कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन नहीं है भारत का जिसकी की कमेंट्री मैंने ना की हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, फिल्म फेस्टिवल हो, टोटल सोलर एक्लिप्स हो, या मथुरा की जन्माष्टमी हो, आपने राम जन्म भूमि से कमेंट्री हो राम जन्म की, राजपथ से रिपब्लिक डे की कमेंट्री, रेड फोर्ट से स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री, तो हर तरह की कमेंट्री मैंने की। और प्लस कुंभ मेला जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे वो जैन में हुए हों इस पीरियड में, चाहे इलाहाबाद में, तो वो मैंने सबकी कमेंट्री लाइव की है, तो उससे एक बड़ा विश्वास रहा
1: जी। वास्तव में लाइव कमेंट्री का रोमांच आज भी अलग तरह का होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जितना लाइवली या जितना सजीव वर्णन अपन कर पाते हैं और लोगों तक उसका असर पड़ता है या वो प्रभावित होते हैं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो इतनी सारी लाइव प्रसारण के बीच में क्या कोई घटना या कोई ऐसी बात है जिसे आप सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे ज्यादा कमेंट्री मैंने रथ यात्रा की है।
1: जी।
0: और रथ यात्रा आपको पता है कि 1.5 किलोमीटर की एक सड़क है जिसको कि बड़ी सड़क बोलते हैं, ग्रैंड रोड बोलते हैं, और वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग उस 1.5 किलोमीटर की सड़क पे समा जाते हैं। अब आप टीवी में जब कमेंट्री कर रहे हैं तो वहाँ आप बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत लोग हैं, तो फ्रेम में जितने लोग दिखते हैं उतने ही लोग कल्पना नहीं कर पाते, उतनी जितना दिखता है उनको उतना ही देख पाते हैं। लेकिन जब हम रेडियो में बोलते हैं ना कि मैं देख रहा हूँ कि 1.5 किलोमीटर की इस सड़क पर 10 लाख दर्शनार्थी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कब रथ बाहर आए, कब भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आए। तो ये जब चीजें हम बोलते हैं ना तो लोगों की कल्पना अथाह कल्पना हो जाती है।
1: जी।
0: लोग समुद्र जैसी कल्पना करने लगते हैं कि क्या ह्यूमन सी बन गया है क्या वहां पर। हर तरह से जो कल्पना का एक विषय है वो जो रेडियो देता है ना वो कोई और माध्यम दे ही नहीं सकता।
1: आपके एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय कह लीजिए या एस्पेक्ट की बात हो सकती है, वो ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन वाला कार्य भी बहुत लंबे समय तक संभाला है।
0: जी।
1: तो एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्रामर के लिए कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो प्रोग्रामर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है?
0: देखिए, ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता।
1: जी।
0: आप अगर हैं एडमिनिस्ट्रेटर तो जब तक आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके साथी या आपके जो हायर बॉसेस आपका साथ नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई अच्छा कहला रहा है एडमिनिस्ट्रेटर तो वो लकी इसलिए है कि उस समय उसके साथ अच्छे लोग भी थे।
1: जी।
0: और वो अच्छे लोगों के कारण वो नाम उसका हो रहा है, लेकिन रियली क्रेडिट जो है उनको जाता है जो उनके साथ काम कर रहे थे या जो उनको ऊपर से सपोर्ट कर रहे थे।
1: जी।
0: तो इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अच्छी टीम के साथ मैंने काम किया है, ये मेरी किस्मत अच्छी थी।
1: जी।
0: और इस वजह से लोग अगर किसी चीज़ के लिए याद करते हैं, ख़ासतौर से मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो RTI में था।
1: जी जी।
0: जो RTI में मैं पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि दिल्ली तक में लोग मुझसे राय मांगा करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अगर अपील में गए हों तो हम जीते ना हों, मतलब एक भी केस ऐसा नहीं है मेरे कार्यकाल में कि हम लोग ना जीते हों। मतलब मैं समझता हूँ वो थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। कहते ना अगर आपको समय के साथ चलना है तो आपको अपडेट होते रहना पड़ता है। उस समय मेरी उम्र 60 हो चुकी थी करीब करीब, लेकिन अपडेट होने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चलता रहता है क्रम, और वही कारण है कि जो आज आप कह रही हैं उसका क्रेडिट सबको है।
1: तो ये माना जा सकता है या यूं कहिए कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक टीम वर्क है।
0: जी बिल्कुल।
1: और हमारी अच्छी टीम ही अच्छे प्रशासन की नींव रख सकती है या प्रशासन दे सकती है,
0: बिल्कुल
1: मान सकते हैं। इस समय मतलब वर्ष 2026 में जो रेडियो का एक 90 वर्षीय उत्सव मन रहा है, इसको लेके क्या विचार या क्या भावना आपके मन में आती है?
0: बहुत अच्छी बातें दिमाग में आती हैं, क्योंकि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो बना, प्रसारण तो उससे पहले शुरू हो गया था 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे में, जो IBC कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक, उसने शुरू किया था। लेकिन 1935 में BBC से एक व्यक्ति यहाँ भेजे गए थे जिनका नाम लॉयनल फील्डन था। लॉयनल फील्डन ने यहाँ पे जो पहले यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष थे, CEO जिसे कह सकते हैं आज की उसमें, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो बनाने में उनका श्रेय है। और 1936 में 8 जून को भारतीय रेडियो यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से प्रसारण शुरू हुआ। और उस समय केवल 9 रेडियो स्टेशन थे पूरे भारत में, आज़ादी के समय 3 चले गए पाकिस्तान में, 6 भारत में रह गए, और आज के लोकल रेडियो स्टेशन मिला के 500 से ऊपर रेडियो स्टेशन है, 23 भाषाएं, 146 बोलियां इनमें प्रसारण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट वाली बात है कि इतने पीरियड में इतना बढ़ जाना। आज हमें लगता है 90 वर्ष बहुत लंबे हैं, लेकिन जो हमारे अचीवमेंट्स आप देखेंगे वो उससे बहुत बड़े हैं। तो 90 वर्ष में आसान नहीं है इतना कुछ फैलाना जो हमने करके दिखाया है
1: जी।
0: और इसी कारण आज हम श्रोताओं के मन में रच बस गए हैं,
1: उनके घर का उनके परिवार का एक हिस्सा सा बन गए हैं
0: जी, क्योंकि रेडियो जो है वो ऐसा है कि यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी मुसीबत का समय आता है, चाहे वो भूकंप हो, तूफान हो, सुनामी हो, कुछ हो, उस समय कोई माध्यम काम नहीं आते हैं, लेकिन रेडियो अपना प्रसारण जारी रखता है
1: जी,
0: बल्कि रात दिन जारी रखता है ताकि लोगों को अपडेटेड सूचना मिल सके
1: जी।
0: तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके कारण रेडियो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता।
1: भोपाल के परिदृश्य में यदि बात करते हैं तो कई सारी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जैसे गैस ट्रेजेडी वाला समय गुजरा है या प्रधानमंत्री की मृत्यु के समय का दौर रहा है, तो इस समय में क्या आपका कार्यकाल आकाशवाणी भोपाल में रहा है?
0: नहीं, इत्तेफाक से मैं उस समय यहाँ नहीं था, मैं जलगांव में था, लेकिन मेरा मन जो है वो भोपाल में ही था उस समय भी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भोपाल में था।
1: अच्छा।
0: मैं अकेला जलगांव में था उस समय
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन उस समय भी रेडियो ने, जो आकाशवाणी भोपाल ने कार्य किया
1: जी,
0: रात दिन यहाँ से प्रसारण हुए हैं, तो
1: ये
0: अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वैसी मुसीबत तो भगवान ना करे कभी और आए, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसमें कि कितने लोग ने अपने प्राण दिए, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो आकाशवाणी ने करके दिखाया था।
1: एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो को आपदा नियंत्रण के लिए भी बहुत बेहतर उपयोग में लाया जाता है, या यूं कहिए कि वो एक उसका स्तंभ बन गया है, जिस तरह वो अच्छी खबरें, सही खबरें लोगों को पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह आपदा प्रबंधन भी रेडियो का एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है। तो उससे जुड़ी हुई कोई घटना आपके जहन में है क्या?
0: वही तो मैंने कहा ना कि आपदा के समय जो है वो रेडियो बहुत बड़ा, जैसे कि गुजरात में जब भूकंप आया था उस समय भी रेडियो ही केवल चल रहा था और रेडियो ने ही लोगों को सारी सूचनाएं दी। और सुनामी जब आया था दक्षिण में तो उस समय भी यही हाल था, मतलब रेडियो ही सुन रहे थे लोग, कि उसी पर विश्वास था लोगों को। तब सोशल मीडिया नहीं था इतना, ना इतने प्राइवेट चैनल थे
1: जी।
0: तो ऑल इंडिया रेडियो का जो उस समय योगदान था वो कभी भी कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसा विशेषकर मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समस्या मूलक जगह पर मैं रहा हूं और उस समय कुछ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन हमेशा रेडियो से जुड़े रहने के कारण जहां भी कोई समस्या आई है तो रेडियो के बारे में सब कुछ जानना जो है, उत्सुकता जो है वो हमेशा रही, इसलिए जानकारी हमेशा रही।
1: निश्चित रूप से चलते चलते हम ये ज़रूर आपसे जानना या लेना चाहेंगे कि वो क्या शुभकामनाएं आप हमें, आकाशवाणी को और सुनने वालों को देना चाहेंगे जो इस उत्सव की बेला में महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: देखिए, सबसे बड़ी बात वही है जो मैंने पहले कही
1: जी,
0: कि हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है और उस जुड़े रहने के बीच में हम जो भी नया से नया होगा वो हम श्रोताओं के बीच लाएंगे। एक चीज़ और है, अभी एक नई टेक्नोलॉजी है DRM टेक्नोलॉजी
1: जी,
0: DRM टेक्नोलॉजी के सेट्स भी आने लगे हैं और उससे भी आज डिजिटल प्रसारण हो रहे हैं। DRM का मतलब है डिजिटल रेडियो मुंडियाल, DRM जो टेक्नोलॉजी है ये एक आकाशवाणी ने अपनाई है। तो इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं इनको अपनाते रहेंगे हम, लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोता हमारे साथ बंधे रहेंगे। और ऐसा मैं सोचता हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी सभी श्रोताओं के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं जो आकाशवाणी में इस समय कार्य कर रहे हैं, कि वो अपने आप को श्रोताओं से जोड़े रखें।
1: श्रोताओं का जुड़ाव, श्रोताओं का विश्वास और श्रोताओं से संबंधों का ही आधार रेडियो है। लेकिन यहाँ पर न चाहते हुए भी एक प्रश्न और पैदा हो रहा है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या उसमें प्रोग्राम या कार्यक्रमों की संवेदनाएं और जगह कम होती जा रही है या उन्हें किसी नए रूप में, नए डिजाइन में सामने आना?
0: देखिए, हमेशा नए डिजाइन में आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप पुराने उसमें रहेंगे तब तक आप नहीं जुड़ पाएंगे। देखिए, समय आगे बढ़ता जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता
1: जी।
0: यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा, और इस चीज़ को हमें हमेशा समझना है और शायद हम अभी तक समझे भी हैं इसको, तो इसीलिए हम साथ रहे हैं और ऐसा ही हमें अपना संबंध बनाए रखना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को हमेशा परिमार्जित करते रहना पड़ेगा।
1: ये टेक्नोलॉजी चाहे तकनीकी हो या कार्यक्रमों के प्रसारण की।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: समय सीमित है और समय ही बार बार ये इशारा कर रहा है कि इस बातचीत को विराम दिया जाए, अन्यथा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी उपस्थिति में जहन में आ रही हैं कि जिन्हें जाना और पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपके इस कीमती वक्त का हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बीच बीच में यूं ही मार्गदर्शन और आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहेंगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, और हमें आपने श्रोताओं से एक बार

शो के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति, और इसमें आपने सुना यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य। इस विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक अनिल श्रीवास्तव जी से अमिता त्रिवेदी की बातचीत आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में हम आपको सबसे पहले आप सुनवा रहे हैं गंगा की सौगंध फिल्म का एक गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। अनजान ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अंजाम से, आवाजें हैं आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों की, विश्वेश्वर शर्मा का लिखा हुआ ये गाना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मेरे सनम से। आवाज़ें हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, ओपी नय्यर का संगीत है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेराग का एक गाना। आवाज़ें आयशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
2: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुँच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत चित्र भारती। ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। साथ ही आप सुनेंगे 10 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित केवल्य कुमार गौरव का गाया ख्याल गायन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा। और 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नज़र डालते हैं कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों पर। 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का। और 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की चौथी कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं दोपहर 2 बजे, 2:50 पर, शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30 पर। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। और 8:15 पर आप सुनेंगे डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। इसमें आप सुनेंगे पीएम श्री योजना, इस विषय पर जानकारी। वाचक हैं अमिता त्रिवेदी और प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये। रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। और रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी सभा। कलाकार होंगे विवेक सोनकर, इनका आप सुन सकते हैं बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और कल सुबह प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम इस तरह हैं। सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता है सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:15 पर। इसमें कलाकार हैं रहीमुद्दीन, इनसे आप सुनेंगे भोजपुरी गीत। और 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। 10 बजे आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। और 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आप सुनेंगे असमिया गीत, रचना सतीश दास की है।

10:30 पर फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं और कल शाम 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा और 7:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेगवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका है। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जाँच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
4: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है, जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
5: सीसीटीवी कैमरे
4: देखिए, जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नज़र बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
0: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगरमालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघट्टा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघट्टा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकासखंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजाति संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों अपन देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को गर्मी से बचवे के लाने सलाह देते रहते हैं। तो भैयारों जब गर्मी में अपनों अपने परिवार को और अपने जो पालतू पशु हैं बिनको ख्याल रखियो। गर्मी के समय में अपन कोशिश करें कि 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलें और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ही अपन बाहर जाएं। और बाहर जाते समय गमछा बांधें, धूप को चश्मा लगाएं और पानी साथ रखें और लगातार पानी पियत रहें। और जब अपन घरें वापस आएं तो अपने हाथ पांव अच्छे से धोएं और आँखन को अच्छे से धोएं। कहा है कि धूप में आँखन पे बुरा असर पड़ता है, तो अगर अपन ठंडे पानी से आँखन के छींटे डालेंगे, आँखें धोएंगे तो अपनी आँखन को आराम मिलेगा। जाके अलावा छाछ, दही, नींबू पानी इनको सेवन करें, जैसे कहा है कि अपने शरीर को ठंडक मिलेगी। जाके अलावा खीरा है, ककड़ी है, कैरी पना है, तरबूज है, खरबूजा है, तो इनको अपन सेवन करें, जैसे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और जाके अलावा अपने जो बच्चा बच्ची हैं बिना भी अपन धूप में बाहर न जाने दें, शाम को ही बाहर खेल भी जाने दें और बच्चों के साथ पानी रखें और इनसे कहें कि लगातार पानी पियत रहें। और जब बेबी घर वापस आए खेल कूद कर तो बिन से भी कहें कि अपने हाथ पांव और आंखें अच्छे से धोएं। और जाके अलावा अपने जो पालतू पशु हैं बिने अपन का करें कि छायादार जगह पे बांधें, तो जैसे कहा है कि बिने ठंडक मिलेगी और दिन में 2-3 बार जरूर नहलाएं, साथ ही साथ पीने के लाने साफ स्वच्छ पानी दें। और अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो गर्मी से हम अपनों अपने परिवार के साथ साथ अपने जो पालतू पशु हैं बिनको ख्याल रख सकते हैं। भैयारो जाके अलावा अपन देखते हैं कि अपने आसपास और भी पशु पक्षी हैं, तो बिन के लाने अपन का करें कि सकोरे में दाना और पानी जरूर रखें। कहा है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और बिने अगर दाना पानी अगर समय पर मिलत रहेगा तो बेबी सुरक्षित रह सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते तनक सो विराम।

0: भैयरों, आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैयरों, अपन सभी चाहते हैं कि अपनी खेती किसानी से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तो जाके लाने अपन अपने खेतों में क्या कराते हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग कराते हैं, जैसे अपनी खेती की माटी जो है, बाकी जो उर्वरा क्षमता है और जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। तो ऐसे में अपन को अपनी खेत की उर्वरता क्षमता और गुणवत्ता बनाए रखने के लाने नाडेप कंपोस्ट को उपयोग करनी चाहिए। नाडेप कंपोस्ट है जो खाद है वो बहुत ही कम लागत में बनने वाली जैविक खाद है और अपने खेत की मिट्टी उपजाऊ बनाने में सहायक है। नाडेप कंपोस्ट जो खाद है वो एक बाकी एक विशेष विधि है, जाकि विधि में क्या कराते हैं कि अपन ईंटों से बना एक टैंक बनाते हैं। बा में कहा है कि गोबर, सूखी घास, पत्तियां, फसल के अवशेष और मिट्टी की परतें लगाकर अपन इन्हें तैयार करते हैं और जा में बहुत कम मात्रा में गोबर को अपन उपयोग करते हैं और जा से कहा है एक बहुत अच्छी जैविक खाद तैयार हो जाती है। अपन जो टैंक बनाते हैं ना, वह टैंक में पत्तियाँ, फसल के अवशेष, घास, गोबर को घोल और उपजाऊ मिट्टी की परतें बार बार लगाते हैं और पानी छिड़क कर टैंक को अपन बंद कर देते हैं और लगभग 90 से 120 दिन में कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। जब खाद को उपयोग से मिट्टी की उर्वरा क्षमता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ अपनी जो खेत की जमीन है बाकी जल धारण क्षमता भी बढ़ाते हैं, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, मिट्टी में सहयोगी जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है और नाडेप कंपोस्ट लगभग सभी प्रकार की फसलों में अपन उपयोग कर सकते हैं और जैसे कहा है कि जब अपन फसलों में उपयोग करेंगे तो अच्छो गुणवत्ता वालों जैविक उत्पादन ले सकते हैं। अब जैसे गेहूँ ले लें, धान ले लें, दालें ले लें, सब्जियाँ ले लें, चाहे फलदार वृक्ष हो, गन्ना हो, कपास हो, सभी की फसलों में अपन ये उपयोग कर सकते हैं। यदि अपने किसान भैया जब तकनीक को अपनाएंगे तो अपन कहा है कि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और नाडेप कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लाने एक सरल और सस्ता उपाय है, जाके साथ साथ जैसे पर्यावरण संरक्षण भी होते हैं और अपनी खेती को ये टिकाऊ खेती बनाते हैं। और आजकल अपन देख ही रहे हैं कि जैविक उत्पादन की मांग बाजार में लगातार बढ़त जा रही है और जैविक उत्पाद के दाम भी बाजार में अच्छे मिलते हैं। तो अपन कोशिश करें कि कम लागत में अपन जैविक खाद तैयार करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते तनक सो विराम।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भैया आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैया अपन देख ही रहे हैं कि अपने देश भारत जो है बहुत बड़ो देश है और भारत को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनाने के लाने भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया था और जो अभियान को मुख्य उद्देश्य थो कि अपने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और जो खुले में शौच की समस्या है वह समाप्त करना और लोगों को साफ सफाई के प्रति प्रेरित करना। महात्मा गांधी को सपना था कि भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बने और अगर ये स्वच्छ भारत मिशन को अपन ने सरकार ने दो भागों में विभाजित किया, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खुले में शौच से मुक्ति करने के लिए घर घर शौचालय बनवाए गए, गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए और वहीं शहरी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन, सड़कों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, प्लास्टिक कचरे को कम करने का जोर दिया गया। और चाय अभियान को सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों की सोच में परिवर्तन लाना, लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करना। भैया रो अपन देखते ना कि अपने घर के आसपास कचरा इकट्ठा होता है तो बा कचड़े को क्या करें, अपन उचित निपटान करें और जब अपन पर कचड़े को उचित निपटान करेंगे तो निश्चित तौर पर अपन गंदगी से निजात पा सकते हैं। जाके अलावा अपने घर के आसपास की जो नालियाँ हैं बिन्हें भी अपन साफ़ सुथरा रखें। अब कहा है कि नालियों में अगर पानी जमा होगा तो बासे कहा है कि मक्खी मच्छर पनपेंगे, और जब मक्खी मच्छर पनपेंगे तो बासे बीमारियाँ फैलाते हैं। जाके अलावा अपनी जो कुआँ हैं, अपने जो हैंडपम्प हैं, अपने जो नल हैं, बिनके आसपास भी अपन साफ सफाई रखें। भैयारों जाके अलावा अपने घर में जो पालतू पशु होते हैं बिनके निकलने वाले गोबर बाको अपन उचित निपटान करें। अब अपन ने अपने कार्यक्रम में भी सुनो कि अपन नाडेप कंपोस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं, तो जब अपने घर में पालतू पशु हैं तो बासे अपन नाडेप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं और अपनी खेती किसानी से भी लाभ कमा सकते हैं। तो भैयारों हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से यही कहेंगे क्या साफ सफाई स्वच्छता रखें, और जाके अलावा अपने जो बच्चा बच्ची हैं बिन्हें भी अपन यही कहेंगे कि भी अपने स्कूल विद्यालय और अपनी जो पंचायतें हैं बिनको भी साफ सुथरा रखें। भैया चर्चा चलत रहेगी, और आज है शनिवार और

0: बच्चों, आप लोगों के अपने कार्यक्रम फुल बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की परीक्षाएं भी ख़त्म हो गई होंगी, गर्मियों की छुट्टियां भी लग गई हैं, तो इन गर्मियों की छुट्टियों में अपन पढ़ाई लिखाई भी जरूर करते रहें, साथ ही साथ खेलकूद के। अपन देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, तो जब गर्मी में अपन दोपहर में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बिल्कुल बाहर ना निकलें और शाम को ही अपन खेलकूद के लिए बाहर जाएं और साथ में पानी की बोतल रखें। जैसे कहा है कि अपन लगातार पानी पियत रहेंगे तो अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, और जब अपन खेल कर घर आएँ तो अपने हाथ पैर अच्छे से धोएं और आँखों को ठंडे पानी से धोएं। जैसे कहा है कि गर्मी में जब अपन खेलते हैं तो अपनी आँखें भी ख़राब होने की चांसेस रहते हैं, परेशानी रहते हैं, तो अपन आँखें जब अच्छे से धो लेंगे तो आँखों को ठंडक मिलेगी और आँखों को आराम भी मिलेगा। जाके अलावा बच्चों, अपन देखते ना कि गर्मी बहुत पड़ रही है और जो पशु पक्षी हैं बाहर, बिन के लाने अपन का करें कि सकोरे, मिट्टी के सकोरे ले लें तो बाँ में अपन उनके लिए दाना पानी रखें, जिससे उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था हो सके। गर्मी में बच्चों वो भी बहुत परेशान होते हैं। बच्चों, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बच्चों, आपकी गर्मियों की छुट्टियां हुई चुकी हैं, खेलकूद के साथ साथ अपन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहें, जिससे जब अपन अगली कक्षा की तैयारी करेंगे तो अपने ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा, ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और अपन अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों, अपने जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है और एक सच्चा मित्र ही हमें सही रास्ता दिखाता है, कठिन समय में हमारा साथ देता है और हमें आगे जीवन में पढ़ने की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार पुस्तकें भी हमारी सबसे सच्ची मित्र होती हैं, वो हमें ज्ञान देती हैं, अच्छे संस्कार देती हैं और हर परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। बच्चों, पुस्तकें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, इसलिए उनको हमारा सच्चा मित्र कहा जाता है। पुस्तकें ज्ञान का अनमोल भंडार हैं। जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, साहित्य हो, गणित हो, कला हो, इन विषयों का ज्ञान हमें पुस्तकों से प्राप्त होता है। और विद्यालय में जो पुस्तक जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उसे हमें अच्छी तरह समझने में पुस्तकें हमारी सहायता करती हैं। इस प्रकार जो पुस्तकें हैं वो हमारे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करती हैं। और बच्चों, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, चाहे वो महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों, इन व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तकें हमें अच्छे और बुरे का अंतर समझाती हैं, साथ ही सही मार्ग पर चलने की सीख देती हैं। बच्चों, चर्चा अपनी चलती रहेगी, आप थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बच्चों, अपन आजकल देखते हैं ना कि इंटरनेट, मोबाइल पर अपन इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अपन कई प्रकार का मनोरंजक चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से अपन अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं, और जब अपन अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनसे मनोरंजन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अपन को शिक्षा भी मिलती है। पुस्तकें अपनी भाषा और अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको सुधारने में भी सहायता करती है, और नियमित रूप से पुस्तक पढ़ने वाले बच्चों की शब्दावली बढ़ जाती है। जो ढंग से नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, वो अच्छे से बोलने और लिखने लगते हैं, क्योंकि पुस्तकें हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने सिखाती हैं। बच्चों, जिस प्रकार एक सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता ना, उसी प्रकार पुस्तकें भी कभी गलत मार्ग नहीं दिखाती, वो हमेशा अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। जब हम किसी की समस्या में उलझ जाते हैं तो पुस्तकें हमें समाधान खोजने में सहायता करती हैं। धार्मिक प्रेरणादायक पुस्तकें अपने को मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करती हैं, चाहे वो पंचतंत्र की कहानी हो, तेनाली राम हो, या अन्य रोचक कहानियाँ जो मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी देती हैं। इन कहानियों से हमें बुद्धिमानी, साहस और व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिलता है। कविता और बाल गीत हमारे मन को आनंदित करते हैं, उससे क्या है कि हमें भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है। बच्चों, चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब सुनते हैं एक वार्ता जिसका विषय है बाल जीवन और अनुशासन, और इसके बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर वीर प्रकाश सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: बच्चों, अनुशासन शब्द अनु और शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नियमों के अनुसार चलना। अनुशासन व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की दक्षता देता है। यह बाहरी दबाव से अधिक आंतरिक जागरूकता का विषय है। सच्चा अनुशासन वही है जो व्यक्ति स्वयं अपनाए। कई लोग समझते हैं कि बच्चों को डांटना या सजा देना ही अनुशासन है, जबकि वास्तविक अनुशासन प्रेम, समझदारी और मार्गदर्शन से विकसित होता है। अनुशासित व्यक्ति या बच्चा समय पर उठता है, पढ़ाई करता है, अपने कार्य स्वयं करता है और दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार रखता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, बाहरी अनुशासन जो परिवार, विद्यालय या समाज द्वारा बनाए गए नियमों से आता है, आत्म अनुशासन जो व्यक्ति स्वयं अपने अंदर विकसित करता है। इन दोनों में आत्मानुशासन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। मनुष्य का जीवन अनेक चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वह समय होता है जब बच्चे का मन कोमल मिट्टी की तरह होता है और उसमें जो संस्कार, आदतें तथा विचार डाले जाते हैं, वही आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। बाल जीवन केवल खेलने कूदने और पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल सीखने का स्वर्णिम काल भी होता है। इस अवस्था में यदि बच्चों का सही दिशा और अनुशासन मिले तो वे भविष्य में जिम्मेदार, सफल और आदर्श नागरिक बन सकते हैं। बाल जीवन में अनुशासन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसी समय बच्चे आदतें विकसित करते हैं। यदि बचपन में अनुशासन का बीज बोया जाए तो जीवन भर सफलता और सम्मान के फल प्राप्त होते हैं। बाल जीवन मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की नींव है। जिस प्रकार किसी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यक्ति का भविष्य उसके बचपन पर निर्भर करता है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, माता पिता, शिक्षक और समाज उनके पहले मार्गदर्शक होते हैं। इस अवस्था में बच्चों का मन जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक रहता है। वे हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखते और अपनाते हैं। बाल्यावस्था में सीखी गई बातें जीवन भर याद रहती हैं। यदि बच्चा सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, समय का महत्व समझना और जिम्मेदारियों को निभाना सीख ले तो आगे चलकर वह समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनता है। आज के आधुनिक युग में बच्चों का जीवन पहले की तुलना में अधिक चुनौती

महत्वपूर्ण हो गया है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बच्चों को नई जानकारी तो दी है, लेकिन साथ ही उनका ध्यान भटकाने वाले अनेक साधन भी बढ़ गए हैं। ऐसे समय में अनुशासन बच्चों के लिए मार्गदर्शक दीपक की तरह कार्य करता है। बिना अनुशासन के जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए यह समय बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वे जल्दी सीखते हैं और जल्दी प्रभावित भी होते हैं। यदि उन्हें अच्छे संस्कार, नियमित दिनचर्या और सही मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाता है, यह उन्हें ईमानदारी, जिम्मेदारी और धैर्य सिखाता है। अनुशासित बच्चे गलत रास्तों से दूर रहते हैं और अच्छे संस्कार अपनाते हैं। जो बच्चा समय का महत्व समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। पढ़ाई में सफलता केवल बुद्धिमत्ता से नहीं मिलती बल्कि नियमित मेहनत और अनुशासन से मिलती है। जो विद्यार्थी समय पर पढ़ाई करते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं वे अधिक सफल होते हैं। बच्चों के जीवन में परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। यदि माता पिता स्वयं अनुशासित होंगे तो बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेंगे। परिवार में अनुशासन स्थापित करने के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव: प्रेम पूर्वक सही गलत समझाना, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना, बच्चों के साथ समय बिताना। कई बार माता पिता अत्यधिक कठोरता अपनाते हैं जिससे बच्चे डरने लगते हैं। डर से पैदा हुआ अनुशासन स्थायी नहीं होता है। बच्चों को समझ और सहयोग के माध्यम से अनुशासन सिखाना अधिक प्रभावी होता है। विद्यालय बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ बच्चे केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्य भी सीखते हैं। विद्यालय में प्रार्थना सभा, समय पालन, यूनिफार्म, गृहकार और खेलकूद जैसी गतिविधियाँ बच्चों में अनुशासन विकसित करती हैं। शिक्षकों का व्यवहार बच्चों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि शिक्षक प्रेम पूर्वक और प्रेरणादायक होंगे तो बच्चे अनुशासन को बोझ नहीं समझेंगे बल्कि अच्छी आदत के रूप में अपनाएंगे। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, सकारात्मक शिक्षा पद्धति हो, खेल और रचनात्मक गतिविधियों को महत्व दें, नैतिक शिक्षा का समावेश हो। बच्चों की समस्याओं को समझना विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आत्म अनुशासन व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आत्म अनुशासन बच्चों को सिखाता है आलस्य से बचना, लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित अभ्यास करना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना। महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, लेखक और नेता सभी आत्म अनुशासन के कारण सफल हुए। बिना आत्म अनुशासन की प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करना, खेलकूद को बढ़ावा देना और सकारात्मक वातावरण देना आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती है बल्कि निरंतर प्रयास और नियमितता से मिलती है। नैतिक अनुशासन से बच्चे दूसरों की सहायता करना सीखते हैं, गलत कार्यों से दूर रहते हैं, समाज में अच्छे संबंध बनाते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। खेल बच्चों को अनुशासन सिखाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खेलों के माध्यम से बच्चे टीम वर्क, नियमों का पालन, धैर्य और नेतृत्व क्षमता सीखते हैं। खेल बच्चों को समझाते हैं कि जीत और हार दोनों जीवन का हिस्सा है, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, नियमों का पालन जरूरी है, सहयोग से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कारण विद्यालय में खेलकूद को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बच्चों, अनुशासन वह शक्ति है जो बच्चों को सही दिशा प्रदान करती है और उन्हें सफल, जिम्मेदार तथा आदर्श नागरिक बनाती है। परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों के अच्छे संस्कार और अनुशासन को विकसित करें। आधुनिक युग की चुनौतियों के बीच अनुशासन ही वह साधन है जो बच्चों को भटकने से बचा सकता है। यदि बच्चों को बचपन से ही समय का महत्व, आत्मसंयम, मेहनत और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो वे न केवल अपने जीवन में सफल होंगे बल्कि देश और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि अनुशासन ही सफल और सुखी जीवन की कुंजी है। एक विद्यार्थी प्रतिदिन

0: नियमित पढ़ाई करे तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। एक खिलाड़ी यदि रोज अभ्यास करे तो वह महान खिलाड़ी बन सकता है। अनुशासित व्यक्ति अधिक एकाग्र होते हैं, वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुशासन बच्चों को संतुलित जीवन जीना सिखाता है, जिससे उसका मानसिक विकास स्वस्थ रूप से होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कहावत बच्चों के जीवन में पूरी तरह लागू होती है। यदि बच्चे अनुशासित दिनचर्या अपनाते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को समय पर सोना और उठना, पौष्टिक भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, मोबाइल और टीवी से दूरी रखना, स्वच्छता बनाए रखना जैसी आदतें अपनानी चाहिए। अनुशासन बच्चों को केवल सफल ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाता है। महान व्यक्तियों के जीवन में अनुशासन की बात करें तो इतिहास गवाह है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता के पीछे अनुशासन का बड़ा योगदान रहा है। तो आज का युग इंटरनेट और तकनीकी का युग है। तकनीकी ज्ञान का अच्छा साधन है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग नुकसानदायक भी हो सकता है। माता पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम का ध्यान देना चाहिए और उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करना चाहिए। बाल जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण चरण है। यह वह समय है जब बच्चों के सामने उनके सपने, आदतों और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अनुशासन इन सपनों को सही दिशा देने का कार्य करता है। अनुशासन स्कूल या घर के नियमों तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, क्योंकि अनुशासित बालक ही भविष्य का आदर्श नागरिक और देश का उज्ज्वल भविष्य बनता है।
1: बच्चों, अब ये अपन सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था बाल जीवन और अनुशासन, और जिसके बारे में आपको बता रहे थे डॉक्टर वीर प्रकाश सिंह। बच्चों, इस वार्ता के माध्यम से अपन ने समझा ना कि अगर अपन अनुशासन का पालन करेंगे तो अपन अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उन्हें अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छी किताबें भी पढ़ेंगे, क्योंकि किताबें जब हम अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी पढ़ाई का समय हम निश्चित करेंगे, जिससे हम अपनी पढ़ाई को उचित समय दे सकते हैं। हमें पुस्तकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का खजाना होती हैं और इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। बच्चों, पुस्तकें हमें ज्ञान, प्रेरणा, आनंद और सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पुस्तकें जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती हैं और सफलता की राह दिखाती हैं। और जो बच्चे पुस्तकों से मित्रता करते हैं उन्हें जीवन में ज्ञान और खुशियाँ खूब मिलती हैं और अपने लक्ष्य को वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए बच्चों, पुस्तकों को हमें अपना सबसे अच्छा मित्र मानकर उनका आदर करना चाहिए और नियमित रूप से अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और जब बच्चों अपन अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो अपने को ज्ञान भी मिलेगा। अब अपन अपने विषय को ले लें, अपन जो दिनचर्या है अपनी उसमें अपन एक अनुशासन बना लें कि अपना खेलने का समय निश्चित करें, एक पढ़ने का समय निश्चित करें, और जब पढ़ाई करें तो विषयवार पढ़ाई करें। और जब अपन विषयवार पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर अपन परीक्षा में भी अच्छे अंक ला सकते हैं। बच्चों, पढ़ाई ही नहीं, अपन चाहे खेल कूद में हों या किसी कला की, अगर अपन कला को अगर ध्यान कर रहे हैं तो उसमें भी अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, चर्चा अपनी चलती रही, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा गीत, और बच्चों अब हो गया चलने का समय, तो सभी बच्चों को सुधांशु भैया का ढेर सारा प्यार।

भैया हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से ये जरूर कहेंगे कि अपने आसपास साफ सफाई बना के रखें, स्वच्छता बना के रखें और जो अपनी नालियां हैं बिन्हें भी साफ रखें और पानी जमा ना रहने दें। और अगर पानी जमा रहेगा तो मक्खी मच्छर फैलने से अपने को कई बीमारियां हो सकते हैं। और अगर पानी अपने जो कूलर हैं बिन की अपन नियमित साफ़ सफाई करते रहें, साथ ही साथ अपनी जो टंकी हैं बिन की भी अपन साफ़ सफाई करें। जैसे कहा है कि मच्छर के लार्वा नहीं पनपेंगे और अपन मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। भैया अब हो गई चलवे की बेला, तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधान

0: प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
0: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
2: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है, और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
0: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं?
1: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ही आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई, और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर की वो आज है, और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर की उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है, और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
0: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
1: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया, आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा, बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन्स ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हों, जो कि स्टेबल हों, जो कि ट्रांसपेरेंट हों, और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाइज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
0: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
1: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है, और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नीदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है, और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ, तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता
0: है। अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी, तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
1: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है, मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहां पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी, तो जो हमारा इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, 5 देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है, इनके पास ये छोटे देश हो, इनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है, और स्वीडन स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा तो इसमें पांच देश मैंने गिनाए हैं उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
0: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है।
1: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है जो कि उनके नॉर्थ सी से वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था, तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को ये सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं। और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
0: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
1: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है, और भारत और इटली के बीच में चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड है, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
0: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत। इसमें बहुत सारी आवाजें हैं, इसमें आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की ये आवाजें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना है। आर डी बर्मन का संगीत है और ये फिल्म का नाम है कालिया। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले, और दूसरी आवाज़ है इसमें आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी, नहीं शब्बीर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है आग ही आग, फिल्म का नाम आग ही आग, और अनजान ने इस गाने को लिखा है। बप्पी लहरी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नागिन से। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फरमा मलिक ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं यह खूबसूरत गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं नीरज का लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीत, फिल्म का नाम नई उम्र की नई फसल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

और अगला गाना लिया है हमने, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको आखिरी ख़त से हमने लिया है। गीत लिखा है कैफ़ी आज़मी ने, खय्याम ने इसको संगीत से सजाया है। आखिरी ख़त फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

ये गाना था आए दिन बहार के, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटी बेटे का एक गाना, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: भारत के संविधान की प्रस्तावना।
1: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान की प्रस्तावना।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारत

0: उत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य

राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद, शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें कोविड-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुरबत में चला जाएगा। इक्तसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी ASML ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। ASML लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ASML के सदर और CEO क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जुनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया, गोटा, चांद लोदिया, थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के से 9 मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों

0: का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिन उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्या नगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में 3री जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिली होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिब इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खास तौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्कूली तालीम और ख्वानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 बारहवीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरे दस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निज़ाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाज़ाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इक्तसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक अभी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताज़ा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की उमूमी तशरीह के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मअतली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तदार आला के हुकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम माहे लक्षद्वीप जनूबी अंदरूनी कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते बीजिंग के अपने दो दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने के 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जिफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम PB कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए CBI तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।

तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक।

दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रिमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कूचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्क।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: ओ शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहा

0: कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर मां के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के सैफाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी पहचान

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में मां बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में मां पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।

ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एल बी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मैंने खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं। और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतु गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा
3: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर पॉइंट पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाजत दीजिए जावेद खान को। जय हिंद।